मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म श्री 420 से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, दिल में पहली बार जागे

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म हाथी मेरे साथी से आप ये गीत सुन रहे हैं। इसी के साथ ही भोर सुहानी से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 9वीं तिथि तदनुसार 30 मई 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

जी आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण। 6:44 पर सुनिएगा कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान।

गोल्ड सुप्रभात इस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:10 पर। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज सवेरे।

10:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम विश्व दर्पण। 10:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स।

तस्वीर वाल्मीकि नगर बिहार। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 11:10 पर। 12:10 का समय रहेगा आकाशवाणी FM गोल्ड वुमेन एंड फैमिली शो घर आंगन का।

दोपहर 1:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुप्रभात। भक्ति केवल ईश्वर की आराधना नहीं, बल्कि मन में विश्वास, विनम्रता और आशा का दीप जलाए रखने का नाम है। आज अर्पण में स्वीकार करें निधि का नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनके ये शब्द हमें सिखाते हैं कि विश्वास और आत्मबल से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।
1: एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है। कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। वक्त हो चला है 6:26 और आज अर्पण में साथ हूं मैं निधि। दोस्तों, महात्मा गांधी कहा करते थे, जहां प्रेम है वहां जीवन है। जब मन में प्रेम और करुणा होती है, तब भक्ति अपने आप जीवन का हिस्सा बन जाती है। ईश्वर पर विश्वास हमें भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति भी देते।

दोस्तों, मदर टेरेसा ने कहा था कि हम सभी बड़े कार्य नहीं कर सकते, लेकिन छोटे कार्यों को बड़े प्रेम से कर सकते हैं। यही भावना भक्ति का सच्चा रूप है, निस्वार्थ प्रेम, सेवा और मानवता। जब हम दूसरों के जीवन में मुस्कान लाते हैं, तभी हमारे जीवन में भी प्रकाश आ जाता है।

श्रोताओं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनकी ये बात हमें प्रेरित करती है कि यदि मन में सकारात्मक सोच हो, ईश्वर पर भरोसा हो, तो हर सपना साकार हो सकता है।

श्रीराम की बाल लीलाओं से आनंदित अयोध्या निवासी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। उन्हीं दिनों महामुनि विश्वामित्र अपने आश्रम में जप तप यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारिच तथा सुबाहु जैसे राक्षस उनकी साधना में विघ्न डालते। मुनिवर के मन में ऐसा विचार आया कि इन पापी राक्षसों का संहार केवल भगवान के हाथों ही हो सकता है। अतः एक दिन वह राजा दशरथ की राजसभा में पहुंचे।

0: ह्यः गुजरातस्य भुजनगरे भारत पाकिस्तान सीमायां सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णानां G7 तथा G13 बॉर्डर आउटपोस्ट इत्येतेषाम् उद्घाटनानन्तरं सैनिकान् जनसमूहं च सम्बोधयन् आसीत्।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः अद्य प्रातः पञ्चदिवसीय भारत यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्स्यति। तेन सह नैके मन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणः व्यापारनेतारः उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं च भविष्यति। राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य एषा प्रथमा भारतयात्रा भविष्यति। अद्य अपराह्ने राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः नवदिल्ल्यां प्राप्स्यति। सः सायंकाले विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। श्वः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः म्यांमार भारत व्यापार मञ्चे भागं ग्रहीष्यति इत्यपेक्षास्ति। सोमवासरे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकं सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यति। सर्वकारः अवदत् यत् देशे पेट्रोल डीजल एलपीजी इत्येतेषां पर्याप्तः भण्डारः अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इष्टतमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय मन्त्रिमण्डलस्य विवरणं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक गैस इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतमस्तरे अस्ति यत् प्रतिदिनं एलपीजी इत्यस्य 290,000 टनपरिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि एलपीजी वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधिप्रसारणस्य तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता। यस्याः लक्ष्यं समग्र शिक्षा 3.0 अधिकं दक्षं पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम् उल्लासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुखयोजनानां एकीकृतपद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीयशिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानाम् उपलब्धता सुनिश्चेतुं 74,000 क्विंटल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृतास्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयनासीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चण्डीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 7 स्तोभैः पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटन्स दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है।

0: उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृहमंत्री ने ड्रोन रडार निगरानी टावर अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुप्रभात श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात। वक्त हो रहा है 7:11 और मैं हूं आपकी अपनी साथी निधि। और आज की इस नई सुबह में आपका हार्दिक स्वागत है। सुबह का समय केवल एक नए दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि अपने तन मन और विचारों को ऊर्जा से भरने का सबसे सुंदर अवसर होता है।

संभालो मुझे। यदि दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच, योग और हल्के व्यायाम से की जाए ना तो पूरा दिन उत्साह से भरा रहता है। प्रतिदिन कुछ मिनट प्राणायाम, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार करने से शरीर में ऊर्जा आ जाती है। तो दीजिए अपने को 20 से 30 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए निकालें तो कई बीमारियों से आप बच सकते हैं और सभी जरूर यही कहेंगे आपके लिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।

0: माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: गोल्ड सुप्रभात में वक्त हो चला है 7:26 और आज साथ हूं मैं निधि।

किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। नमस्कार, आदाब और एक बहुत ही खूबसूरत सुबह आप सभी को। आप सुन रहे

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे। श्रोताओं, आज तारीख है 30 मई, बेहद खास, बेहद ऐतिहासिक, कैलेंडर का एक ऐसा पन्ना जो भारत में कलम के सिपाहियों के नाम दर्ज है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। जी हाँ, आज ही के दिन साल 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल जी ने कोलकाता से भारत का पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड शुरू किया था, जिसका अर्थ है उगता हुआ सूर्य। और सच में इस अखबार ने सूरज की तरह समाज को जगाने, सच को सामने लाने और हमारी प्यारी हिंदी भाषा को घर घर पहुंचाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। और कहते हैं ना कि भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं होती, हमारी पहचान होती है, और हिंदी पत्रकारिता ने हमारी इस पहचान को जिंदा रखा है। आज का दिन सभी जाबाज पत्रकारों, लेखकों और कलम के प्रहरियों के नाम। इसी जज्बे के साथ शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की, जहां हमेशा की तरह शामिल होंगे देश और दुनिया के मुख्य समाचार, मौसम का हाल, आज का इतिहास और कुछ बेहद खास हस्तियों से जुड़ी जानकारियां, जिनका आपसे है सरोकार। कार्यक्रम आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट तन्वी खुराना। हेलो तन्वी।
1: Hello Jaya, good morning and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 megahertz and the entire Akashwani network. Well, Jaya has already introduced you to our daily news magazine program at Savere, and this is going to be a very special program because we have a lot of updates for all of you, be it national or international news, metro city updates, some historical information related to this particular day, that is 30th of May, and today is Saturday. So just want to wish you all a very happy Saturday. The weekend is here. I'm sure you have plans and you are going to enjoy it to its fullest. So let's begin with our program and especially the news headlines. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, will arrive at Gaya in Bihar this morning on a 5-day visit to India. He will be accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. This will be the first visit of President U Min Aung Hlaing to India in his current capacity. At Gaya, the President of Myanmar will offer prayers at the Mahabodhi Temple and also at Sujata Temple. President U Min Aung Hlaing will arrive in New Delhi later in the day. He will meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar this evening. And tomorrow, the Myanmar President is expected to participate in Myanmar-India Business Forum. On Monday, President U Min Aung Hlaing will hold discussions with the Prime Minister Narendra Modi on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that all the issues that form part of the gamut of relations between Myanmar and India will come up for discussions during the meeting between the two leaders. He further stated that India looks forward to welcoming the President of Myanmar.
0: और प्रमुख खबरों में बात करते हैं स्वास्थ्य की, जहां स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6वें चरण के आंकड़े कल जारी किए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत की तीव्र प्रगति हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। बच्चों को लगे टीके राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण में महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है।
1: The government has asked public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as West Asia conflict persists disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to the reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. Outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms. Sharma said, India was also working to increase crude

0: oil storage capacity. Additional Secretary Gulf in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said that the government is closely monitoring developments in the Gulf and West Asia region. He said Indian embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals. Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, informed that the merchant vessel Nissos Keros, a crude oil tanker, has safely transited the Strait of Hormuz and is expected to arrive in Vishakhapatnam on 3rd of June. He said the vessel is carrying around 2,70,000 metric tons of crude oil.
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इसे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। बोर्ड ने कहा है कि विद्यार्थी किसी भी जानकारी के लिए CBSE की टेली परामर्श हेल्पलाइन 1800 11 8004 और रिजल्ट CBSE2026@cbseshiksha.in पर संपर्क कर सकते हैं।
0: And over to sports, India continued its impressive performance at the Asian Under 20 Athletics Championships in Hong Kong, taking its medal tally to 8, including 4 gold, 2 silver and 2 bronze, and climbing to second place in the standings behind China. On the second day of the competition yesterday, Indian athletes won 7 medals, including 4 golds. The standout performance came from 19-year-old Pooja Singh, who clinched gold in the women's high jump with a leap of 1.93 meters. India's 3 other gold medals came from Nitin Gupta, who won the men's 5,000-meter race walk, while Amanat Kamboj topped the women's discus throw and Rahul Jakhar bagged the yellow medal in the men's decathlon.
1: और जब खेलों की बात कर रहे हैं तो बात करते हैं IPL क्रिकेट की, जहां न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरा क्वालिफायर मुकाबला खेला गया और गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए थे। राजस्थान रॉयल्स द्वारा दिए गए 215 रन के लक्ष्य के जवाब में गुजरात टाइटंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 219 रन बना लिया और मैच जीत लिया। कप्तान शुभमन गिल ने 53 गेंदों पर 104 रन की पारी खेली। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब रुक करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं वहां का हाल। तो शुरुआत चेन्नई से करें तन्वी।
0: Sure. The Tamil Nadu government has intensified its crackdown on illegal mining and quarrying activities across the state, leading to the temporary suspension of 67 stone quarries. A total of 469 vehicles involved in unauthorized mineral transportation have been seized and illegal mining at 78 locations has been detected. The action follows directions issued by the Minister for Natural Resources, Minerals and Mines, T.K. Prabhu, based on the complaints on illegal quarries. The state has more than 2,000 licensed stone quarries. The minister directed officials to conduct inspections to verify whether quarry operators were adhering to approved mining plans, extraction limits, lease conditions and transportation regulations. And we have some more news from Chennai itself. Tamil Selvan, Loki and Medusa are 3 massive anacondas bred at the Madras Crocodile Bank. They form the facility's largest snake exhibit and all 3 were born at the bank. Green anacondas were among the heaviest and most powerful reptiles. Fully grown adults can weigh up to 80 kilograms and stretch to nearly 20 feet. Their olive green skin, patterned with black blotches, provides ideal camouflage in the murky water bodies they favor. Madras Crocodile Bank Education Officer Vaibhavi Bharat Dwaj said that anacondas are built for aquatic life. And what do we have from Delhi, Jaya?
1: दिल्ली से सबसे पहले हम बात करेंगे जिस पर हमेशा चर्चा होती है, प्रदूषण पर। तो अच्छी खबर है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु

गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना ग्रैप के चरण प्रथम के सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं, यानी कि ग्रैप वन के प्रतिबंध हटा लिए गए हैं और यह निर्णय क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार के बाद लिया गया है। दिल्ली का दैनिक वायु गुणवत्ता सूचकांक कल 123 हो गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में बने रहने की संभावना

0: परीक्षा यानी कि नीट की पुनर्परीक्षा होने वाली है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया है कि अब जो जितने भी विद्यार्थी होंगे, परीक्षार्थी होंगे, तो उससे डीटीसी की जो बसें हैं उसमें निःशुल्क यात्रा करने की उन्हें अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड बस कंडक्टर को दिखाना होगा। और दिल्ली से एक और खबर है हमारे पास कि यातायात पुलिस ने चालान और यातायात प्रबंधन प्रणाली को अपग्रेड किया है। इसके अंतर्गत ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले नागरिक अब मौके पर ही डिजिटल पेमेंट तरीकों जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए आसानी से चालान भर सकेंगे। इसके अलावा मौके पर मौजूद चालान अधिकारी के पास उपलब्ध हैंड हेल्ड डिवाइस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: And moving towards Bangalore, Bangalore City Police have prohibited public screenings and celebrations during Sunday's IPL final involving RCB, citing last year's tragedy outside M. Chinnaswamy Stadium in which 11 people died. Police Commissioner Simanth Kumar Singh said live telecast on LED screens in public places, road celebrations, bike rallies, overspeeding, stunts, misuse of horns and road blockages are strictly prohibited. Screens should not be installed outside malls, pubs or other public places without prior permission. Police have also urged the public to avoid bursting crackers, creating disturbances or engaging in fights after the IPL final. Citizens have been advised to maintain law and order and strictly follow police instructions. And the Bangalore Traffic Police have imposed temporary restrictions on heavy goods vehicles on Varthur Main Road near Marathahalli Bridge from 11 PM on 30th of May to 6 AM on 31st of May due to metro construction work. Alternative routes have been suggested through the outer ring road and also service roads.
0: और अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में मॉनसून आते ही ना बहुत अजीब सी स्थिति बन जाती है, लोग परेशान होते हैं कि कैसे ऑफिस जाएं, स्कूल जाएं, बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है। तो मॉनसून की तैयारियों और शहर में बाढ़ को रोकने के प्रयासों के अंतर्गत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री और भारतीय गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और कुर्ला में मीठी नदी की गाद निकालने और सफाई के कार्यों का निरीक्षण किया और उन्होंने कहा है कि शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी उपाय लागू किए जाने चाहिए। अठावले ने यह विश्वास भी व्यक्त किया कि यदि नगर निगम मुंबई में आधुनिक जल निकासी प्रणाली का प्रस्ताव तैयार किया जाता है तो केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान कर सकती है जिससे बारिश के पानी की निकासी में तेजी आएगी। और उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को भी यह निर्देश दिया है कि नालों की सफाई का काम समय पर पूरा हो, गुणवत्ता मानकों का पालन किया जाए और पूरी क्षमता से काम किया जाए।
1: And Civil Supplies Minister N. Uttam Kumar Reddy said, Telangana has procured 60 lakh metric tons of paddy till date. He declared that this is the most successful paddy procurement operation in the country. The minister said Telangana accounts for nearly 60% of all the paddy procured in India during the current season. He stated that by the end of the season, Telangana is expected to account for nearly 75% of the country's total Yasangi paddy procurement. The minister announced that 11,050 crore rupees have already been paid directly to the farmers, and he said the state government established 8,575 procurement centres and deployed nearly 13,000 transport vehicles.
0: और अब चलते हैं देश की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध कोलकाता की ओर। तो पश्चिम बंगाल में आज से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज सुबह 10:30 बजे विधाननगर उपमंडल अस्पताल में इस अभियान की आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इससे पहले 28 फरवरी को एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया था। हालांकि राज्य में एचपीवी वैक्सीन की 7 लाख से अधिक खुराकें भेजी जा चुकी थी लेकिन पिछली सरकार ने टीकाकरण अभियान शुरू नहीं किया था। तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर जया और तन्वी के साथ। कार्यक्रम का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। तो देश के कई हिस्सों में बारिश ने अभी दस्तक दे दी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है तो लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। और इसी बीच राजधानी दिल्ली में भी

0: आज आंधी के साथ बारिश की संभावना है। शहर में आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुंबई की बात करें तो वहां आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास का अनुमान है। कोलकाता में भी आज आंधी और बारिश के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
1: And Chennai is expected to have partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 26 degrees and the maximum will be around 38 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with the possibility of rain or thunderstorm or even dust storm. The temperature will hover somewhere between a minimum of 30 degrees and a maximum of 40 degrees Celsius.
0: और श्रोताओं, अब वक्त आ गया है अतीत के पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि आज का दिन और किन मायनों में खास है।
1: And today is 30th of May. We celebrate a crop that may seem ordinary but plays an extraordinary role in feeding the world. We are talking about the humble potato. So Jaya, let me ask you, do you like having potatoes?
0: बिल्कुल, समोसा हो या फिर पराठे हो, आलू की तो जरूरत हर जगह है और बहुत ही क्या भरपूर पोषक वाला खाना है ये।
1: That's true. I think I don't know anyone who doesn't like potato, and be it mashed, baked, roasted, fried, or added to your favorite curry, this versatile crop has found a place on dinner tables across the globe. But potatoes are much more than a comfort food. They are a vital source of nutrition and income for millions of farming families. And this is known as Solanum tuberosum. This is the scientific name of potato. It's enjoyed by billions of people every day, not just in India but across the world. International Potato Day also reminds us of the potato's important role in tackling hunger, reducing poverty, and helping communities adapt to environmental challenges. The day builds on the legacy of the International Year of the Potato, celebrated in 2008, firstly highlighting how this simple crop contributes to more sustainable and resilient फूड सिस्टम्स।
0: और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इस वर्ष आलू दिवस की थीम है, विश्व आलू दिवस, उसे रखा गया है कि जहां आलू उगते हैं वहां आजीविका फलती फूलती है। तो बिल्कुल, रसोई का एक ऐसा राजा जिसके बिना हर सब्जी अधूरी है, तो इस पर हमें बात करना ही चाहिए। सब्जियों का राजा स्वाद में सबसे ताजा, और आज है विश्व आलू दिवस, तो आलू का मजा लीजिए ज्यादा से ज्यादा।
1: दैट्स ट्रू। सो व्हाट आर यू हैविंग टुडे जया?
0: Let's see. घर जाने के बाद देखा जाएगा।
1: All right, and let's talk about the particular day. How is this 30th of May important? In 1539, on this particular day, Hernando de Soto, a Spanish explorer, landed on the west coast of Florida, marking a significant event in the history of European exploration of the southeastern United States.
0: और हमने जैसा कि शुरुआत में ही बात की थी कि आज का इतिहास केवल तारीखों का पुलिंदा नहीं है बल्कि एक बदलाव की गवाही है। जहां देश को पहला हिंदी अखबार मिला, वहीं 1919 में इसी तारीख को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश दमन के खिलाफ अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर राष्ट्रीय अस्मिता को सर्वोपरि रखा था।
1: In the year 1631, Gazette de France, the weekly first magazine of France, was published.
0: और इसके कुछ दिन बाद अगर हम जाएं तो 1966 में पहला अमरीकी अंतरिक्ष यान सर्वेयर एक प्रक्षेपित किया गया था, और नासा का यह ऐतिहासिक मानव रहित मिशन पूरी तरह सफल रहा था, जिसने विज्ञान की एक नई इबारत लिखी थी।
1: इन द ईयर 1975 द यूरोपियन स्पेस एजेंसी वॉज फॉर्म्ड।
0: और आज ही के दिन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और यह बना भारत का 25वां राज्य।
1: And moving on to our next segment, here we are going to talk about some special personalities. So let me begin with the first person, and he is Gopi Sundar. Today is his birthday, an Indian music director, programmer, playback singer, songwriter, actor and performer who works in the Malayalam, Telugu and Tamil film industries. He began his career composing.

0: और श्रोताओं, आज जहां पूरा देश हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहा है, वहीं हिंदी साहित्य जगत के लिए आज का दिन एक और बड़ी याद लेकर आता है। आज हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर रामविलास शर्मा एक ऐसा नाम जिन्होंने भाषा, साहित्य और समाज को एक सूत्र में पिरोकर देखना सिखाया। साहित्य जगत के एक और बड़े स्तंभ का नाम कैलेंडर में आज के दिन दर्ज है। हम बात कर रहे हैं कन्नड़ साहित्य के प्रख्यात लेखक, शोधकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित देवेगौड़ा जवरेगौड़ा जी की, जिन्हें दुनिया आदर से देजव गौ से भी जानती है। आज के ही दिन साल 2016 में 100 वर्ष का गौरवशाली जीवन जीने के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। उन्होंने कन्नड़ भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई बड़े आंदोलन किए, बच्चों के लिए बहुत सारी प्रेरणादायक कहानियां लिखी और 34 से अधिक जीवनियां भी देश को समर्पित की।
1: And today is the death anniversary of Paul Desmond, an American jazz alto saxophonist and composer and proponent of cool jazz. He was a member of Dave Brubeck Quartet and composed the group's biggest hit titled Take Five. And the song remains the best-selling jazz song of all time. And in addition to his work with Brubeck, he led several groups and collaborated with many, many more artists. So let's hear this amazing track, Take Five.

और जब कला और सिनेमा के उस गलियारे की तरफ हम मुड़ ही गए हैं तो उन हस्ती का भी जिक्र करते हैं जो भारतीय सिनेमा के कैनवास पर जज्बातों को बेहद खूबसूरत रंग से बिखेरे हैं। आज भारतीय सिनेमा के दिग्गज निर्देशक और लेखक ऋतुपर्णो घोष जी की पुण्यतिथि है। घोष एक ऐसे संवेदनशील फिल्मकार थे जिन्होंने इंसानी रिश्तों की परतों को कैमरों के जरिए बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा। ऐश्वर्या राय और अजय देवगन अभिनीत उनकी फिल्म रेनकोट के खूबसूरत गानों और कहानियों को भला कौन भूल सकता है।

0: ऋतु घोष ऋतु पर्ण घोष को अपने जीवन काल में 12 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से नवाजा गया। फिल्मों के साथ साथ समाज की रूढ़िवादी सोच को बदलने और जेंडर इक्वलिटी पर खुलकर बात करने वाले एक बेहद साहसी इंसान थे।
1: And the next personality in our list is an Indian actor who is known for his comic timing. He is considered as one of the finest actors of Hindi cinema. He has appeared in over 240 films and is the recipient of various accolades, be it National Film Awards, 3 Filmfare Awards, and he was also honored with Padma Shri from the Government of India in 2014. So before I take his name, let's just play a dialogue and maybe you can recognize him.
2: अरे तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? चला हट।
3: मालिक वो बोला।
2: कौन बोला? तू क्या बोला?
4: वो क्या थी बोलियो?
2: ये तो बोलता कुछ नहीं बोला, तो तू क्यों बोला कि वो बोला?
3: मैंने नहीं बोला कि वो बोला।
2: तो तूने क्या बोला?
3: मैंने बोला कि वो बोला।
2: लेकिन मैंने जब उससे पूछा कि वो बोला तो तू बोलता कि वो नहीं बोला।
3: हाँ वो नहीं बोला।
2: और तूने मुझे बोला कि वो बोला।
3: मैंने नहीं बोला कि वो बोला, मैंने बोला कि वो बोला।
1: So this was a comedy dialogue from the film Chup Chup Ke, and this is between Paresh Rawal and Rajpal Yadav. Yes, today is the birthday of Paresh Rawal, and before I talk about him more, let's just play another dialogue by him.
2: कहा है रे हीरो, फिल्मी कलिया खिला रहा है?
3: हाँ।
2: ये दाल चावल का भी खिलाएगा? ये पेट के अंदर चूहा दौड़ रहा है।
3: बोलो ना अपने उस नए रिश्तेदार को, वो बैठ के बनाएगा ना।
2: अशोक का? हाँ, ये आइडिया अच्छा रहने का। भाड़ा भी वही दे, झाड़ू पोछा बर्तन भी सब वही करे, और खाना भी वही पकाए, और कल से मैं उसको कपड़ा धोने को भी बोलता है। और तो पूरा दिन आराम से सेठ के जैसा मजे मारने का। कल कौन सा दिन रहने का?
3: शुक्रवार।
2: शुक्रवार बहुत अच्छा दिन रहने का। तू क्या कर, अपना सब कपड़ा इकट्ठा कर, पेटी में डाल और इधर से खोली खाली कर। अरे बाबा तू अभी रात को किधर चोर की तरह भटकेगा, सुबह में जा।
3: मैं सिर्फ चावल बनाऊंगा
2: तो अभी जा।
3: और सिर्फ दाल बनाऊंगा लेकिन तड़का मैं नहीं लगाऊंगा।
2: अरे बिना तड़के के दाल खा लूंगा।
3: अब आए ना लाइन पे।
5: कैरी सारा कौवा है रे।
1: I'm sure you know Babu Rao Ganpat Rao Aapte from Hera Feri, and this movie became a cult classic, and even its sequel Fir Hera Feri also became a cult classic. So the number of films he has done is 240, like I mentioned, but the speciality that he has done is the films The Storyteller, which came in 2025, in which he portrayed Satyajit Ray's famous character Tarini Khuro, and he also played he also played the role of freedom fighter Vallabhai Patel from the film Ketan Mehta's Sardar, a role that got him national and international acclaim. So this was Paresh Rawal.
0: आज हम एक ऐसी ही महान हस्ती को याद कर रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड को शब्दों की ताकत सिखाई। हम बात कर रहे हैं सिनेमा के पहले स्टार लेखक पंडित मुखराम शर्मा जी को, जिनकी आज जयंती है। साल 1955 में जब फिल्म फेयर पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी तो उन्हें फिल्म औलाद के लिए दुनिया का पहला सर्वश्रेष्ठ कहानी का फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और जब पंडित जी की फिल्म दो कलियां आई तो लता मंगेशकर जी की आवाज में सजा ये गीत बच्चों से लेकर बड़ों तक हर भारतीय दिल में उतर गया।

0: Today is the death anniversary of Alexander Pope, an English poet, translator and satirist of the Enlightenment era who is considered one of the most prominent English poets of the early 18th century.
1: आज का दिन हमें एक और महान विभूति की याद दिलाता है जिन्होंने अपने सुरों से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। हम बात कर रहे हैं सेनिया घराने के मशहूर सितार वादक पंडित देवव्रत चौधरी जी की, जिन्हें दुनिया पंडित देबू चौधरी के नाम से जानती है और आज उनकी भी जयंती है।

0: श्रोताओं, और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया भारती और तन्वी खुरानो को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
1: Stay tuned for coming up next is समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन followed by मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश at 8:15 AM. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ वंडरफुल डे, नमस्कार।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के,
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनक लता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22

0: एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि एलपीजी का जो रिजर्व है that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also we are working.
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
3: He'll be meeting a prime minister and where both leaders.
4: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता

0: इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
2: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वह भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
4: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में द कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
2: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई।

0: है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्यभर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under 20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as the West Asia conflict persists, disrupting global energy.

0: को यकीनी बना दिया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने सरकारी शोबे की तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो एलपीजी के जखीरे कम से कम 30 दिन के लिए कायम करें, क्योंकि मगरबी एशिया में महाजराई से तवानाई की आलमी सप्लाई में बार बार रुकावट आ रही है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने यह बात मगरबी एशिया महाजराई के बारे में बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल नामानिगारों से बात करते हुए कही। सप्लाई में रुकावट की रोकथाम से मुतालिक एहतियाती इकदाम का जिक्र करते हुए मोहतरमा शर्मा ने कहा कि भारत खाम तेल को जखीरा करने की गुंजाइश में इजाफे के लिए भी काम कर रहा है। मोहतरमा शर्मा ने कहा कि हुकूमत अहम जखीरों और बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाकर ईंधन की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम बनाने पर भी काम कर रही है। इसके अलावा जखीरांदोजी की रोकथाम के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने खानदानी सेहत का छठा कौमी जायजा जारी किया है, जिसमें आदाद शुमार से मां और बच्चे की सेहत, तगजिये और माली तहफ्फुज़ के मैदान में भारत की खातिर खा तरक्की का पता चलता है। ये जायजा कल जारी किया गया, जिससे ये बात खासतौर पर पता चली है कि इदारों में की गई जचगी में जो पहले 88.6% थी, इजाफा होकर 90.6% हो गई है। एक तफसीली रिपोर्ट।
1: आदाद शुमार से पता चला है कि 95.9% हामला खवातीन को जच्ची के बाद की निगहदाश्त मिलती है, जबकि माओं को पहली सेमाही में मिलने वाली जच्ची के बाद की निगहदाश्त में भी इजाफा हुआ है। पहले यह 70% थी, जबकि अब यह 76.2% हो गई है। जायजे में कहा गया है कि भारत में खवातीन के हामला होने की मजमू शरह TFR 2% बरकरार है और बच्चों की टीकाकारी से खानदानी मनसूबाबंदी के कौमी प्रोग्रामों के असरात की अहमियत जाहिर होती है, जिसमें मिशन परिवार विकास भी शामिल है। जायजे में ख्वातीन की डिजिटल शमूलियत और माली तफवीज अख्तियारात के मैदान में लगातार पेशरफ भी जाहिर की गई है। यह भी कहा गया है कि जिन ख्वातीन ने कभी न कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया है, उनकी तादाद तकरीबन 2 गुना हो गई है। पहले यह 33.3% थी, जबकि अब यह तादाद 64.3% हो गई है। सर्वे में बताया गया है कि आयुष्मान भारत, PMJAY और हिफ्जान सेहत के तौसीशुदा इकदाम से हिफ्जान सेहत में सबके लिए पैसे की यकीनी फराहमी का इस्तेहकाम पैदा हुआ है। वजारत ने बताया कि इस दरियाफ्त से तरक्याती मकासद हासिल करने की राह में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। स्वाति रखेजा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: म्यांमार के सदर मिन होंग ह्यांग भारत के 5 रोजा दौरे पर आज सुबह बिहार के बोधगया पहुंचेंगे। उनके हमरा एक आला सतह का वफद भी होगा, जो बहुत से काबीना वजीरों, सीनियर अफसरों और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल होगा। सदर मिन का उनकी मौजूदा हैसियत से भारत का यह पहला दौरा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग ह्यांग बोधगया में महात्मा बोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आज बाद में वो नई दिल्ली पहुंचेंगे, यहां वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि कल वो म्यांमार भारत तिहाती फोरम में शिरकत करेंगे। पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए दाते खारजा के तर्जमान रणजीत जायसवाल ने कहा कि उन सभी मामलात पर जो म्यांमार और भारत के दरमियान बहुत से पहलुओं पर मबनी ताल्लुकात का हिस्सा है, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल किया जाएगा।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
3: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
1: दौरे के हिस्से के तौर पर म्यांमार के सदर 2 जून को मुंबई जाएंगे, जिसका मकसद ताजिरों और सनअतकारों से बातचीत करना और मौकों का दौरा करना है। हमारे नामनिगार ने बताया कि म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम मशरक पर खसूसी तवज्जो और महासागर पॉलिसियों का कायल है। म्यांमार के सदर के भारत के सरकारी दौरे से उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: कर्नाटक के सुबुकदोश हो रहे वजीर आला सिद्धारमैया ने नया रहनुमा मुंतखब करने के लिए आज सपहर 4 बजे कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग तलब की है। इस दौरान डीके शिवकुमार वजीर आला सिद्धारमैया की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने जनाब

क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ अब कल अहमदाबाद में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियंस राजस्थान रॉयल्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। राजस्थान रॉयल्स की जानिब से जीत के लिए मुकर्रा 215 रन के निशाने को गुजरात टाइटंस ने 8 गेंद बाकी रहते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाकर

0: खवातीन क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में दूसरे टी20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच में भारतीय टीम 3 मैचों की सीरीज को जीतने के मकसद से मैदान में उतरेगी। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जुमेरात के रोज चेम्सफोर्ड में खेले गए इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड को 38 रन से शिकस्त देने के बाद भारत ने सरदस्त सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शासुर्खी बनाया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर वाकई चौकी पर जवानों से बातचीत की और 14 निगरानी चौकियों का इफ्तिताह किया और कहा कि सरहदी इलाकों के लिए 4 रुखी सिक्योरिटी ग्रिड बनेगी। इस खबर को रोजाना प्रताप ने जरी सुर्खी के साथ शाया किया है। रोजाना प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हाथों ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले बहादुर फौजियों के तजर्बात पर मबनी किताब के रस्मिजरा की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किताब ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश करती है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल मईशत बनकर उभरा। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 की रिपोर्ट में ये बात कही गई। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोजाना इंकलाब ने अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान को बड़ी अहमियत दी है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुतअद्दिद निकात पर इत्तेफाक राय में पेशरफ्त हुई है, नीज आबनाए हुरमुज में बहरी ट्रैफिक की बिला तातुल बहाली यकीनी बनाई जाएगी। आज के बेशतर अखबारात ने उर्दू के नाम और शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र के इंतकाल पर उर्दू दुनिया और उनके मद्दाहों की तरफ से जबरदस्त राज अकीदत पेश किए जाने और तादियती नशिस्तों के अहतमाम की खबर पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज की है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वह मगरबी एशिया महाजराई जारी रहने के पेश नजर LPG के जखीरे 30 दिन तक बरकरार रखें। खानदानी सेहत के कौमी सर्वे से मां और बच्ची की सेहत के मैदान में बड़े फायदों का पता चला है। इदारा जाती जचगी में इजाफा होकर ये 90.6% हो गई है और बच्चों की टीकाकारी 96% हो गई है। म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लैंग भारत के 5 रोजा दौरे के पहले मरहले में आज सुबह बिहार के बोधगया पहुंचेंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मुल्क की बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का बोलबाला रहा। उन्होंने दूसरे दिन सोने के 2 तमगों समेत 7 तमगे जीते हैं। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल मैच खेलने को यकीनी बना दिया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, वक्त हो चला है 8:46 और म्यूजिकल दिल्ली में साथ हूं मैं निधि। दोस्तों, किसी का साथ ये सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि ये सोचकर उसका साथ निभाएं कि उसके पास कुछ नहीं है आपके सिवा खोने के लिए।

मनोरंजन की। सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: नमस्कार, मैं जयश्री अरोरा आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो की लत मुझे बिल्कुल बचपन से पड़ी थी। मेरी माता जी रेडियो प्ले सुनने की बहुत शौकीन थी। उसके बाद इत्तेफाक से मैं रेडियो आर्टिस्ट भी बन गई और प्रोग्राम किए, इतना कुछ सीखा, बड़े बड़े स्टॉलवर्स निर्मला अग्रवाल, दीनानाथ जी, सत्येंद्र, शरद, शैलेंद्र जी, सुशील बैनर्जी, कमल दत्त, सुदर्शन जी, दानिश इकबाल, इन सबके साथ काम करके इतना कुछ सीखा। और जब टेलीविजन के लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, तो मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ ये आकाशवाणी की देन है। तो आज इस उपलक्ष्य पर हम सब इतने खुश हैं और तरक्की करें आकाशवाणी, और इस शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामना।

क्लासिकल दिल्ली में आज साथ हूं मैं निधि। वक्त हो चला है 8:55। दोस्तों, बहुत बार हम लोग रास्ते में चलते हुए अगर चॉकलेट या पानी की बोतल के रैपर्स जो हैं वो सड़क पर फेंक देते हैं तो वही कचरा नालियों को जाम कर सकता है और आने वाली बारिश में पानी भरने या बदबू फैलने की समस्या भी हो सकती है। लेकिन अगर हम वही कचरा पास के डस्टबिन में डाल दें, थोड़ी सी कोशिश कर लें तो हमारा शहर साफ सुथरा और स्वस्थ बना रहता है। छोटी छोटी सावधानियां ही एक सुरक्षित सड़क और एक स्वच्छ समाज की सही पहचान है। म्यूजिकल दिल्ली में निधि का साथ यहीं तक था। आप पूरे दिन मुस्कुराहट बनाए रखें ताकि चाहे कितनी भी व्यस्त हों आपके विचार हल्के रहें, मन शांत रहे और हर परिस्थिति को आप एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ देख सकें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: रिगार्डिंग द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप द प्राइस स्टेबल, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, सो दीज ऑल एफर्ट्स हैव बीन डन टू कीप द प्राइस स्टेबल। वी आर वर्किंग ऑन द स्ट्रैटेजिक रिजर्व ऑल्सो। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि एलपीजी का जो रिजर्व है दैट शुड बी मिनिमम 30 डेज विद देम, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड सिमिलरली फॉर क्रूड ऑल्सो वी आर वर्किंग।
0: सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया गया है। सभी 136 कांग्रेस विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में नवीनतम परिवर्तन करना है और अपात्र नामों को हटाकर सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करना है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कल आंध्र प्रदेश के वस्त्र, हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादन क्षेत्रों की विभिन्न पहलों और विकास पहलुओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में वस्त्र मंत्रालय, आंध्र प्रदेश सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड और संबद्ध विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री सिंह ने वस्त्र और रेशम उत्पादन क्षेत्रों की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउंग लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार में गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। म्यांमा के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गोवा संस्कृति और विरासत का भव्य संगम है जो दुनिया को भारतीय आतिथ्य सत्कार का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Tanvi Khurana. The government has asked public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to the reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. Outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms. Sharma said India was also working to increase crude oil storage capacity.
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
2: Additional Secretary Gulf in the Ministry of External Affairs, Aseem Mahajan, said that the government is closely monitoring developments in the Gulf and West Asia region. He said Indian embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals.
3: Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines. We are also in close touch with the local governments. Advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. We are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns.
2: Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, informed that the

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम म्यूजिकल दिल्ली की और मैं हूं आपके साथ भावना।

बहुत ही खूबसूरत ये गीत। और इस फिल्म में एक और गीत था सागर फिल्म में, वो गाना था ओ मारिया, है ना, जिसको सुनकर हमें गोवा की याद आती है और मतलब उसकी झलक हमारी आंखों के सामने आ जाती है। खूबसूरत गोवा, खूबसूरत वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति। आज गोवा राज्य स्थापना दिवस है, हर साल 30 मई को ये दिन मनाया जाता है और 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और ये भारत का 25वां राज्य बना था। बहुत ही खास दिन है आज का। ये दिन जो है ना गोवा के लोगों के लिए बहुत खास है क्योंकि ये गोवा की अनूठी संस्कृति, उनका जो बलिदान स्वतंत्रता संग्राम में गोवा के निवासियों का, और एक अलग राजनीतिक पहचान, उसका जश्न मनाने का आज दिन है। और आज के दिन बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं गोवा में, सरकारी समारोह भी होते हैं और लोग उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि आज है गोवा का दिन, आज है हमारे प्यारे गोवा के

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और ये प्रोग्राम म्यूजिकल दिल्लगी में आपके साथ मैं हूँ भावना।

कहते हैं कि दिल की जो सुनते हैं वो कभी हारते नहीं है, चाहे जिंदगी हो या खेल हो, मतलब हमेशा वो जीतते हैं, क्योंकि दिल की आवाज़ हमें बहुत कुछ बताती है। हमारे अंदर के जो ख्वाब है ना, उनको बाहर निकाल के लाती है, और दिल की आवाज़ ही है जो हमें आगे बढ़ने पर मजबूर करती है, और आगे बढ़कर हम जिंदगी के खेल को खूब अच्छे से खेल सकते हैं। खेलो इंडिया भारत सरकार द्वारा ये शुरू किया गया एक राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम है। इसमें क्या है ना, जो मेन मोटिव है, उद्देश्य है, वो है जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को फिर से जिंदा करना, दिल से लोगों के अंदर से खेल को बाहर लेकर आना, और भारत को एक प्रमुख खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। इसका उद्देश्य जो मेन है वो आप ये कह सकते हैं कि प्रतिभाओं की खोज करना, कितने खिलाड़ी हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता, जो बहुत अच्छे हैं, जो आगे आ ही नहीं पाते, उनको पहचानना, उनको देखना, वित्तीय सहायता देना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसों की कमी की वजह से खेलों में अपनी किस्मत को आजमा नहीं पाते, उनको वित्तीय सहायता देना पहचानने के बाद, और ढांचागत विकास करना, मतलब खेलने के लिए जो हमको स्टेडियम चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए, जो कोचेस चाहिए होते हैं, या अलग अलग खेल के जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स या जो खेल की चीजें हैं वो हमें चाहिए, उन सबको अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध कराना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं कि उसको बढ़ाना, और सभी के लिए खेल, यानी ये खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य, हमारे राष्ट्रीय गौरव और सामुदायिक विकास का साधन है। इन्हें उस साधन को बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना, उनके दिल में ये भाव जगाना कि खेल हम सब के लिए है और हम सब के लिए जरूरी है, यानी खेल कर भी हम नवाब बन सकते हैं और अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर सकते हैं। तो हमारे माता पिता कहेंगे कि अगर खेल रहा है हमारा बच्चा तो हमारा नाम कर रहा है।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: सचमुच प्यार है हम सबको आकाशवाणी से। बहुत सारे संदेश हमारे पास आ रहे हैं। आज का प्रश्न, आकाशवाणी से राजनीतिक दलों का चुनाव प्रसारण कब शुरू किया गया? आकाशवाणी से राजनीतिक दलों का चुनाव प्रसारण कब शुरू किया गया? और लीजिए, एक श्रोता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार,
0: अपना नाम सबको बताइए पहले तो।
1: मैं शैलेश संजीवा बोल रहा हूँ।
0: जी जी जी, तो शैलेश जी, आप कितने सालों से आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं? कब से आप सुनते आ रहे हैं इसको?
1: ये तो तब से इसके पहले जो है कभी बने, यही एक माध्यम था कम्युनिकेशन का
0: जी।
1: अब इसके और कुछ था ही नहीं, से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। और देखिए, मैंने इसका आज भी लोगों का लगाव अट्रैक्शन रेडियो के प्रति बहुत ज्यादा है
0: जी, जी।
1: इसका एक जीता जाता है
0: जी।
1: मन की बात देख लिया, आज ही मन की बात जो है अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, जो चल रहा है
0: जी।
1: ये लोगों का जो लगाव है उसके कारण ये प्रोग्राम थी और इंडिया रेडियो आज भी हमेशा जीवित रहेगी
0: जी।
1: और उसका जो एक लिंक है वो चारों तरफ फैलता ही रहेगा
0: जी जी जी। तो आपको हमारे आज के प्रश्न का उत्तर पता है?
1: क्या है प्रश्न
0: जी? प्रश्न, अच्छा आपने पहले ही कॉल मिला दिया। आकाशवाणी से राजनीतिक दलों का चुनाव प्रसारण कब शुरू किया गया? जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 1977। तो आप बता रहे थे कि आपको प्रोग्राम्स कुछ बहुत अच्छे लगते हैं आकाशवाणी के।
1: बहुत अच्छे लगते हैं, ये एक दिल को छू लेने वाले प्रोग्राम्स हैं जो बहुत मिलते हैं आजकल। जैसे आपके पुराने से जो सॉन्ग्स हैं रेयरली जो है विलुप्त हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, ये जिंदा करता है, उसकी याद दिलाता है, हमारी संस्कृति हमारी कल्चर को जीवित करता है
0: जी जी।
1: ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है माने ऑल इंडिया का, यही एक अट्रैक्शन का कारण भी है, कारण
0: जी जी। तो हम आपको एक गीत सुनवाएं, आपने अपनी पसंद भी हमको SMS में लिखकर भेजी है, जहां तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है, आपकी पसंद का ये
1: जी,
0: गीत
1: जी, जी,
0: तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीवा जी हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके, थैंक यू वेरी मच,
0: थैंक यू।

कृतिका का हिमाचल प्रदेश से हमारे पास संदेश आया और वो कहती है कि आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस भी है। तो जी हाँ, बिल्कुल आलू दिवस है। विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स की भरपूर मात्रा इसमें पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाइए और आप आज के दिन आलू खाइए। 1977 जो है वो हमारे आज के प्रश्न का सही उत्तर है। ये सही उत्तर मनोहर लाल गांधी जी ने विजयनगर चाणक्य चौक से हमें लिखकर भेजा है। इसके अलावा अंशिका और माही जो है इनका भी हमें उत्तर मिला है और 1977 बिल्कुल सही उत्तर है आपका आज के हमारे प्रश्न का। आकाशवाणी ने हमेशा हमारा साथ निभाया है, हमेशा हमें अपने गले से लगाया है। हम आकाशवाणी से प्यार करते हैं और 90 नहीं, आकाशवाणी अपने हजारों साल यूं ही मनाता जाए ऐसी कामना कर रहे हैं विजय, सरिता, कामना और अनीता। इनका हमें संदेश मिला है लक्ष्मी नगर दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। अभी म्यूजिकल दिल्लगी में आप स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। मैं कहीं नहीं जा रही, 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम लेकर मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी, लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउन लयान 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। राष्ट्रपति के रूप में ओमिन आउन लयान की यह पहली भारत यात्रा है। म्यांमा के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमा के राष्ट्रपति कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
0: सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव वसीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पोत पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस कोरोस हुरमुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामना

0: शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और सतत विकास में उल्लेखनीय प्रगति के लिए भी जाना जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के लिए समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना जगाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने जन जागरूकता को बढ़ावा देने, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय एकता मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है, उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। नए नेता के चुने जाने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया गया है। सभी 136 कांग्रेस विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है। ओडिशा में आज मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी। और खेलों में हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वहीं IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंच गया है। न्यू चंडीगढ़ में कल उसने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, began his 5-day visit to India today. He is accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. This is the first visit of President U Min Aung Hlaing to India in his current capacity. He arrived at Bodh Gaya in Bihar this morning, where he will offer prayers at the Mahabodhi Temple and also at Sujata Temple. President U Min Aung Hlaing will arrive in New Delhi later in the day. He will meet External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar this evening. On Monday, President U Min Aung Hlaing will hold discussions with Prime Minister Narendra Modi on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The government has asked public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas (LPG) reserves for at least 30 days as West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to the reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. Outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms. Sharma said India was also working to increase crude oil storage capacity.
2: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
1: Additional Secretary Gulf in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said that the government is closely monitoring developments in the Gulf and West Asia region. He said Indian embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals. The Ministry of Health and Family Welfare has released the National Family Health Survey 6 with the data reflecting India's accelerated progress in maternal and child health, nutrition

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउंग लाइन 5 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन में युद्ध समाप्ति के करीब। अमेरिका में चल रही वार्ता के बीच इसराइल लेबनान संघर्ष और तेज। संयुक्त राष्ट्र ने देशों और टेक कंपनियों से बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने हेतु अधिक ठोस उपाय करने को कहा। और हांगकांग में आयोजित एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउंग लाइन 5 दिन की भारत यात्रा के पहले चरण में आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। राष्ट्रपति के रूप में ओ मिन आउंग लाइन की पहली भारत यात्रा है। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन से चल रहा

0: संघर्ष अब खत्म होने के करीब है। रूस की समाचार एजेंसी के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि किसी निश्चित समय सीमा का उल्लेख करना लापरवाही होगी क्योंकि युद्ध के दौरान समय सीमा तय करना संभव नहीं होता। श्री पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन मुद्दे पर वार्ता जारी रखने के लिए तैयार है लेकिन औपचारिक बातचीत जैसी स्थिति नहीं है। श्री पुतिन ने कहा कि रूस के लिए सीधे सैन्य खतरा पैदा करने वाले सभी स्थान वैध सैन्य लक्ष्य हैं। रूस के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि नेटो ने रूस को यह कहकर धोखा दिया कि वह पूर्व की ओर एक भी कदम नहीं बढ़ाएगा। इस बीच रूस की आधिकारिक मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि लंदन में यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि यूक्रेन संघर्ष के समाधान को लेकर अनौपचारिक परामर्श कर रहे हैं। इसराइल की सेना दक्षिणी लेबनान के मरजयून इलाके में मौजूद दिब्बिन गांव में दाखिल हो गई। ये कदम इसराइल के ताजा हवाई हमलों के बीच उठाया गया जिसमें 6 लोग मारे गए। एक रिपोर्ट।
1: लेबनान की सरकारी मीडिया ने बताया कि दीर कानून अल नहर और एबा सेही पर हुए हमले में 5 लोग मारे गए। एबा गांव पर हुए हमले में नगर पुलिसकर्मी की मौत हो गई। वहीं लेबनान के 6 सदस्यों के सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के पेंटागन में इसराइल के सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। दशकों में दोनों देशों के बीच ये पहली प्रत्यक्ष वार्ता थी। पेंटागन ने चर्चाओं को सार्थक बताया और कहा कि इनका ध्यान क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए व्यावहारिक रूपरेखा तैयार करने पर केंद्रित था। उसने ये भी कहा कि वार्ताओं के परिणाम अगले सप्ताह होने वाली राजनीतिक नेताओं के बीच आगे की बातचीत को दिशा देने में सहायक होंगे। इसराइल और लेबनान के अधिकारियों के बीच पिछले महीने से वार्ता जारी है लेकिन व्यापक सहमति तक पहुंचने के प्रयास जटिल बने हुए हैं। इस वार्ता में हिजबुल्ला भाग नहीं ले रहा है और उसने वार्ता के निष्कर्षों को अस्वीकार कर दिया है। पक्षों के बीच 17 अप्रैल से युद्ध विराम लागू है लेकिन सीमा पर तनाव जारी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: ट्रंप प्रशासन ने अमरीका में रह रहे लगभग लेबनान के 11,000 नागरिकों के लिए निर्वासन से सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी है। इससे उन्हें अगले 6 महीनों तक देश में रहने और काम करने की अनुमति मिल गई है। इस निर्णय की घोषणा गृह सुरक्षा विभाग ने की। ये विस्तार दक्षिणी लेबनान में इसराइल की सेना और ईरान समर्थित लेबनान स्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्षों के बीच हुआ है। ये विस्तार संघर्ष या असाधारण परिस्थितियों का सामना कर रहे देशों के लोगों को अमरीका में अस्थायी रूप से रहने की अनुमति देता है। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला, हैती, निकारागुआ और सीरिया सहित कई देशों के लोगों के लिए इसी तरह की सुरक्षा को समाप्त करने की दिशा में बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने बच्चों के लिए ऑनलाइन मंचों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से देशों और टेक कंपनियों से अधिक सख्त कदम उठाने की अपील की है।
2: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रभावी नियमन, निगरानी और जवाबदेही पर बल दिया। श्री तुर्क ने कहा कि डिजिटल दुनिया बच्चों को शिक्षा, समुदाय और रचनात्मकता से जोड़ती है लेकिन साथ ही उनकी सुरक्षा, निजता और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरे भी पैदा करती है। श्री तुर्क ने कहा कि सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध इस समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारों और कंपनियों को मिलकर प्लेटफॉर्म को डिजाइन के स्तर पर ही सुरक्षित बनाना होगा, डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और नुकसान पहुंचाने वालों की जवाबदेही तय करनी होगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के दिशा निर्देशों में आयु सत्यापन प्रक्रिया के लिए सुरक्षा उपाय, बाल अधिकार प्रभाव आकलन और नियामक नीतियों के निर्माण में बच्चों की भागीदारी जैसे सुझाव दिए गए हैं। साथ ही कंपनियों के लिए पारदर्शिता, कड़ी निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से लवलीन निगम।
0: दक्षिणी कैलिफोर्निया की पूर्व मेयर ने चीन के एक अवैध एजेंट के रूप में काम करने का अपराध स्वीकार कर लिया है। एलिन वांग ने इस महीने की शुरुआत में मेयर पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने चीनी अधिकारियों की तरफ से चीन के पक्ष में लेख लिखे थे और ऐसा करते समय उन्होंने अमरीकी सरकार को कानून के अनुसार आवश्यक जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने लॉस एंजलिस की एक संघीय अदालत में अपना अपराध स्वीकार किया। वांग को 10 साल की कैद और 3 साल तक निगरानी में रहने की सजा हो सकती है। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव

0: सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: रिगार्डिंग द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप द प्राइस स्टेबल, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, सो दीज ऑल एफर्ट्स हैव बीन डन टू कीप द प्राइस स्टेबल। वी आर वर्किंग ऑन द स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑल्सो, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि एलपीजी का जो रिजर्व है दैट शुड बी मिनिमम 30 डेज विद देम एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड सिमिलरली फॉर क्रूड ऑल्सो वी आर वर्किंग।
0: हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल भारतीय खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। पूजा सिंह ने महिलाओं की ऊंची कूद में 1.93 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। भारत के नितिन गुप्ता ने पुरुषों की 5000 मीटर रेस वॉक का स्वर्ण पदक जीता। अमानत कंबोज ने महिलाओं की डिस्कस थ्रो में शीर्ष स्थान हासिल किया। राहुल जाखड़ ने पुरुषों की डेकाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। बृहस्पतिवार को चेम्सफोर्ड में पहले मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 38 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन 5 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन में युद्ध समाप्ति के करीब। अमेरिका में चल रही वार्ता के बीच इसराइल लेबनान संघर्ष और तेज। संयुक्त राष्ट्र ने देशों और टेक कंपनियों से बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने हेतु अधिक ठोस उपाय करने का आह्वान किया। और हांगकांग में आयोजित एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आपके मेल्स आते हैं, आपके मैसेजेस आते हैं और हम उन्हें शामिल करते हैं। आपकी पसंद के गीत हम भी सुनते हैं और सबको सुनवाते हैं और रेडियो तरंगों के माध्यम से, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप पे मैसेज के जरिए आप हमारे दिल तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहला जो संदेश आज आया है, पढ़ दूं, कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु ये गाना सुनना चाहते हैं फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से। बहुत ही खूबसूरत सा गीत और मुझे कह रहे हैं नमस्कार भावना जी, तो नमस्कार आपको भी। ये शुरुआत आपकी पसंद के गीत के साथ।

सतीश अनेजा जी और विमला अनेजा जी ना बिमला हैं, बिमला अनेजा जी चंडीगढ़ सिटी से इनका संदेश आया है और इनकी सबसे खूबसूरत सी बात यह है ये नमस्कार जी लिख के प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, मतलब ये मेरा स्वागत इस प्रोग्राम में करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरा स्वागत किया। इसके अलावा डीकेपी परिहार हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा जी, कमल छीपा जी, ईशान छीपा, पूजा परिहार, मैसेज जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए आपके धन्यवाद की हमने रख ली लाज और मैसेज आपका कर लिया हमने शामिल। इसके अलावा सीताराम कांगड़ा जी हैं, बबीता बोट है, निखिल कांगड़ा है, तन्वी बोट है, एकता कॉलोनी रोहतक से इनका संदेश हमें मिला है। हरजिंदर छिंदा हैं, जसवीर जस्सी हैं, सीता गीता हैं, गांव नथाना पंजाब से इनका संदेश हमारे पास आया है। कितनी दूर दूर से संदेश आते हैं ना, कभी कभी मैं सोचती हूँ, मैंने शायद पहले ही बोला होगा कि अगर हम एक फोटोग्राफ बनाएं कि यहाँ स्टूडियो है, स्टूडियो में हम बैठे हैं और अलग अलग राज्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं, एक चित्र बनाएं यहां से कितना खूबसूरत चित्र होगा ना, एक पूरा परिवार है हमारा जो इस वक्त जुड़ा हुआ है। क्या बात है आप सबकी, ये

फारूक अली खान साहब हैं और इनके साथ फैजी फराज हैं, फरहीन हैं, फरहान हैं, फारिया हैं, ताहिरा हैं, कस्बा गुन्नौर यूपी से इनका संदेश हमारे पास आया। उन्होंने बहुत सारे शायद हमें गीत लिखकर भेजे हैं, ये या ये या ये या ये, कोशिश करेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब जो सबसे पहले हमने मैसेज लिया था ना सतीश जी का और बिमला जी का, उनकी पसंद का गीत ये रहा।

हमें भी आपके दिल का तराना सुनना है, आप क्या सुनना और सुनवाना चाहते हैं ये जानना है। एक मैसेज जब हम सेलेक्ट करते हैं और अगर वो पीछे छूटे तो बीच में कई सौ मैसेज आ जाते हैं, इसलिए अगर एक बार एक मैसेज खो गया ना तो फिर उसका मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्किन वीना।

इनका नाम बहुत ही अच्छा है। तो आप सबका संदेश हमारे पास आया और नवी हसन साहब हैं, नवी हसन अब्बासी हैं, शहनाज अब्बासी हैं, नवेद हसन अब्बासी हैं, सुहेल हसन हैं, अनम हैं, यशफ हैं, रसीद हैं, तहे दिल से ये हमारा शुक्रिया कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारा शुक्रिया करने के लिए आपका भी शुक्रिया। सुनील पाठक जी हैं, कमल पाठक हैं, दीपिका मल्होत्रा हैं, गाव्या मल्होत्रा हैं, भाई सुच्चा सिंह पाठक हैं, अनारकली बाजार जगराव से इनका संदेश हमें मिला है। बहुत ही खूबसूरत है आपका संदेश और बहुत ही खूबसूरत है जगह का नाम अनारकली। भारत भूषण जी हैं, इनके साथ अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण हैं, संस्कृति हैं, पौरुष हैं, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से इनका संदेश हमें मिला है। राजी शर्मा हैं, राजी शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से इनका संदेश हमें मिला है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे संदेश हैं जो आ रहे हैं। राधे श्याम देवंगन जी हैं, इंदिरा नगर भवरपुर से इनका संदेश हमें मिला है। इनके साथ चंपा देवंगन भी हैं, राजू, नेहा, जगदीश देवंगन भी हैं। तो इन सब का संदेश हमें मिला है। अपनी अपनी पसंद के गीत सब सुनना चाहते हैं, समय कम है इसलिए हमें कुछ चूज करना पड़ता है, कभी किसी का कभी किसी का, लेकिन दिल हम सबका रखना चाहते हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी साहब हैं, निगत परवीन अब्बासी हैं, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरा अब्बासी परिवार है। ईद मुबारक आपको भी, बहुत बहुत ईद मुबारक। निर्माता दिग्दर्शक नारायण राव जी की स्मृति दिन है आज 30 मई 2017 को, ये लिखा है इन्होंने। और प्यासा सावन फिल्म का जो है वो गीत ये सुनना चाहते हैं, तो ये लीजिए आपकी फरमाइश का ये गीत जो है वो हम सुनवा देते हैं। ये रहा आपकी पसंद का गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

101.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये। मैं हूँ भावना और आप बहुत सारे हमारे श्रोता हैं हमारे साथ। इस वक्त जो है मेरी स्क्रीन पर वो है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी, धन्यवाद लिखकर भेजा है। कहाँ से? जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका भी। इसके अलावा अनिल मोहन जी हैं, उषा मोहन है, टिल्लू नायक है, मधु नायक है, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से इनका संदेश हमारे पास आया है। ताज मोहम्मद साहब हैं, मेहराज जहां हैं, गुलाम साबिर हैं, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से इनका संदेश हमारे पास आया है। संजय ढींगिया जी हैं, एक मिनट, हाँ अब आइए, संजय ढींगिया जी हैं, नमन ढींगिया हैं, अपार ढींगिया हैं और बागपत उत्तर प्रदेश से इनका संदेश हमारे पास आया है। एक और नाम पढ़ देती हूँ, है ना, ये कौन है? कभी पुरानी यादों के हसीन गीत सुनाता है तो कभी देश दुनिया की सच्ची खबर लाता है। बिना कुछ मांगे तू सदा अपना फर्ज निभाता है। थके हुए इस मन को पल भर में बहलाता है। नाराज नहीं होता कभी न कभी तू रूठता है। तेरा और मेरा ये नाता कभी नहीं टूटता है। तू ही है साथी सुख दुख का, तू ही सच्चा मीत है। ए मेरे प्यारे आकाशवाणी रेडियो, तुझसे ही मेरी प्रीत है। क्या बात है। गांधी चौक बाड़मेर राज से बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार का ये संदेश हमारे पास आया है। दिल खुश कर देता जी पवार साहब आपने, और ये लीजिए पसंद का गाना, तो ये किसी और का है लेकिन आपके इसके साथ यानी आपके मैसेज के साथ बजा रही हूँ। ये अनिल कुमार रस्तोगी जी हैं, राजस्थान से इनका भी संदेश आया है और इन्होंने ये गाना सुनने की फरमाइश की है। ये रहा हमारा गीत।

इसी के साथ दिल का मेल बॉक्स से मैं भावना लेती हूँ आपसे विदा, लेकिन आप कहीं मत जाइए। 11:10 पर प्रोग्राम तस्वीर में मैं भावना एक बार फिर आपके साथ जुड़ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी समय है समाचारों का। बहुत बहुत शुक्रिया अपने संदेश हम तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात हमें बताने के लिए। अब समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: रिगार्डिंग द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप द प्राइस स्टेबल, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, सो दीज ऑल एफर्ट्स हैव बीन डन टू कीप द प्राइस स्टेबल। वी आर वर्किंग ऑन द स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स ऑल्सो। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि एलपीजी का जो रिजर्व है दैट शुड बी मिनिमम 30 डेज विद देम, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड सिमिलरली फॉर क्रूड ऑल्सो वी आर वर्किंग।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा है कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोम कैरोस हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है। फैसले में कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया

0: ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है, उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह अत्यंत सम्मान की बात है। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। गुजरात टाइटन्स IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, तेलंगाना में लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as the West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. Outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms. Sharma said India was also working to increase crude oil storage capacity.
2: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
1: Myanmar President U Min Aung Hlaing arrived in Bodh Gaya, Bihar today as part of his 5-day official visit to India. He is accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. He will offer prayers at the world-renowned Mahabodhi Temple and the historic Sujata Temple at Bakraur. The Myanmar President will also visit several Myanmarese Buddhist monasteries in the region. President Hlaing will arrive in New Delhi later in the day. He will meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar this evening. Tomorrow, the Myanmar President will be expected to participate in Myanmar-India Business Forum. On Monday, President Hlaing will hold discussions with Prime Minister Narendra Modi on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan today bade farewell to military service after receiving a ceremonial Tri-Services Guard of Honour at the National War Memorial in New Delhi. The ceremony marked the culmination of his distinguished tenure as the country's top military officer. After laying a wreath at the war memorial, General Chauhan said it was a matter of great honour for him to superannuate with the Tri-Services Guard of Honour. Marking his transition to civilian life after over 4 decades of service, General Chauhan described his tenure as satisfying and excellent. In Punjab civic body elections, the ruling Aam Aadmi Party won 958 of the 1,977 wards across 8 municipal corporations, 75 municipal councils and 19 Nagar Panchayats. The Congress won 397 wards, while the Shiromani Akali Dal won 192 and the BJP secured 172 wards. The BSP managed

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है प्रोग्राम तस्वीर, मैं हूं आपके साथ भावना। और आज रेडियो तस्वीर बनाएंगे बिहार के वाल्मीकि नगर की।

वाल्मीकि नगर बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये हिमालय की शिवालिक पर्वतमालाओं से घिरे गंगा के मैदानी इलाकों में बसा है। बहुत खूबसूरत सा वाल्मीकि नगर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी जाना जाता है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये। बिहार के उत्तर पश्चिमी छोर पर ये चंपारण जिले में बाघ अभयारण्य है, यहाँ पर उसको भी आप देख सकते हैं। और ये जो चंपारण जिला है ना, इसका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, चंपा और अरण्य, यानी चंपा के वृक्षों का वन। बहुत ही खूबसूरत है वाल्मीकि नगर। इसी के बारे में रेडियो तस्वीर बना रहे हैं आज हम।

0: बात कहाँ।
1: बिहार के वाल्मीकि नगर का टाइगर रिजर्व बहुत ही खास जगह है ये। जब आप इस बाघ अभयारण्य में प्रवेश करते हैं तो यहाँ की अछूती प्राकृतिक सुंदरता उसमें बस खो जाते हैं। और विशाल क्षेत्र में फैला है ये जो अभयारण्य है। यहाँ के घने जंगल, घास के मैदान, घुमावदार नदियाँ बहुत बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ की वनस्पति, यहाँ के जीव जंतु, इनका तो क्या ही हम वर्णन कर सकते हैं शब्दों में, बहुत ही खूबसूरत। और जितने भी वन्य जीव प्रेमी है ना, वो यहाँ पे प्रकृति की फोटोग्राफी करना कभी नहीं भूलते, अपना कैमरा साथ लाना कभी नहीं भूलते। और क्योंकि ये बाघ अभयारण्य है तो बाघ यहाँ का जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ की खासियत है। तो आप प्रशिक्षित प्रकृतिवादी होते हैं, उनके साथ वन गाइड्स हैं, उनके साथ घने जंगल में ये रोमांचकारी अनुभव करें और बाघों को पेड़ों के पीछे, घास के पीछे से निकलते हुए सरसराती हुई आवाज के साथ देखें, पूरे शरीर में एक रोमांच सा दौड़ जाता है ना। प्राकृतिक आवास में इस प्राकृतिक शिकारी को देखना बड़ा मजा आता है। यहाँ पे ऐसा माहौल है इस अभयारण्य में जिसको देखकर बस मन खो जाता है, मन बहक जाता है।

सच में मन दौड़ता है, पंख लगा के उड़ता है। जब इस अभ्यारण्य में हम देखते हैं पक्षी अलग अलग तरह के, इस अभयारण्य में 250 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं। सर्दियों में यहाँ आते हैं और पक्षी प्रेमियों को बंगाल फ्लोरिकन, सफेद पूंछ वाला गिद्ध, ग्रेट हॉर्नबिल, किंगफिशर और भी कई अन्य दुर्लभ और सुंदर पक्षियों को देखने का अवसर यहाँ पर मिलता है। इन पक्षियों की मधुर आवाज, रंग बिरंगे पंख प्रकृति के बीच एक संगीत की धुन छेड़ देते हैं, ऐसा लगता है। आप हमारे साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम तस्वीर, बिहार के वाल्मीकि नगर की रेडियो तस्वीर बना रहे हैं आज हम आपके साथ ही हैं, बस थोड़ी सी मशहूरियों के बाद लौट के आते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम है विभा रानी। मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूं और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो आकाशवाणी दरभंगा में मैंने कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। मैथिली ड्रामे किए, हिंदी ड्रामे किए और कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं वहाँ अनाउंसमेंट करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में आकाशवाणी और रेडियो ने मुझे जो दिया वो आज तक मेरे लिए

एक नेमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।

वाल्मीकि नगर जिसकी आज हम रेडियो तस्वीर बना रहे हैं, यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम है जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि ये रामायण महाकाव्य के रचयिता ऋषि वाल्मीकि का जन्म स्थान है। ये आश्रम उन श्रद्धालुओं और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है जो वाल्मीकि के जीवन और शिक्षाओं के बारे में जानना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक केसरिया स्तूप भी है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से ना लगभग 70 किलोमीटर दूर होगा। ये केसरिया स्तूप विश्व के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूपों में से एक है। ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है और बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। स्तूप की जो स्थापत्य कला है और ऐतिहासिक महत्व है, वो यहाँ पर लोगों को अपनी ओर खींचता है और लोग आते हैं इस नगर को, खूबसूरत वाल्मीकि नगर को देखने, पास से खूबसूरती से जानने, यहाँ के इतिहास को, यहाँ के धार्मिक महत्व को समझने। बहुत बहुत खास है ये पूरा का पूरा नगर, बहुत ही प्यारा वाल्मीकि नगर।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

100.1 MHz आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम है तस्वीर, रेडियो तस्वीर बना रहे हैं हम। बिहार के वाल्मीकि नगर की लौरिया नंद नगर, ये जो हमने बात की थी ना, यहाँ का जो बाघ रिजर्व है वहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर है ये लौरिया नंद नगर भी कहते हैं और नंदनगढ़ भी इसको कहा जाता है। ये एक पुरातात्विक स्थल है, यानी कि प्राचीन मौर्य कालीन जो स्मारक हैं उनके लिए इसे जाना जाता है। यहाँ पर कई स्तूप हैं, जटिल खूबसूरत नक्काशी और इतने खूबसूरत स्तंभ हैं, स्तंभ पिलर्स जिन पर बहुत सी नक्काशी होती है पुराने जमाने के, मौर्य कालीन जमाने के, उनको देखने, उस युग को महसूस करने, फील करने लोग दूर दूर से बिहार की इस नगरी में खींचे चले आते हैं।

वाल्मीकि नगर अगर आप बिहार के जा रहे हैं, वहां पे तो बहुत कुछ खास देखने को है ही जो आपने देख लिया, लेकिन उसके आसपास क्या है जो आप छोड़ना नहीं चाहेंगे, वो है रक्सौल। ये बहुत ही जीवंत शहर है, अनूठा यहाँ का सांस्कृतिक अनुभव आपको बहुत अच्छा लगेगा। और खास बात यह है ना, यहाँ घूमते हुए आप यहाँ के पारंपरिक बिहारी व्यंजनों का जब लुत्फ उठाएंगे तो अपने आप यहाँ खींचे चले आएंगे। बिहार की जो राजधानी पटना है, वाल्मीकि नगर बाघ अभ्यारण्य जिसकी हमने अभी इतने समय तक चर्चा की, उससे लगभग 230 किलोमीटर दूर होगा। तो वो भी बहुत खास जगह है, जो लोग वाल्मीकि नगर आते हैं, पटना घूमने जाते हैं, यहाँ का संग्रहालय, यहाँ का महावीर मंदिर, यहाँ की प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के जो खंडर हैं उनको देखना, यहाँ का गोल घर जो है वो सबको बहुत पसंद आता है। वैशाली, ये भी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से लगभग 270 किलोमीटर होगा। तो यहाँ के ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों को देखना

भी लोग पसंद करते हैं। बोध गया, इसको कैसे भूल सकते हैं हम। बोध गया भी जो टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नगर का, उससे लगभग 280 किलोमीटर दूर है। और ये तो वो जगह है जहां गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। तो यहां पर भी लोग आते हैं। आप वैसे ना यहां बिहार के वाल्मीकि नगर में सर्दी गर्मी मानसून किसी भी मौसम में आ सकते हैं, क्योंकि सर्दी में तो बहुत सारे पक्षी यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं अभयारण्य में, जिनको आप देख सकते हैं। बस हल्के हल्के गर्म कपड़े साथ में ले जाने पड़ते हैं, तो वो तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में जो बाघ अभयारण्य है उसमें आपके जो बाघ देखने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में पानी पीने बाघ आते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। तो इसलिए गर्मी में आना भी यहां पर खासा लोग पसंद करते हैं। मानसून में इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहां हरियाली बढ़ जाती है, यहाँ की नदियों में जल भर जाता है, झरने जो हैं वो जल से परिपूर्ण हो जाते हैं, भर जाते हैं, और आपको और आपके साथ जो भी आए हैं उन सबको बहुत बहुत भाते हैं। तो जब भी आप आना चाहें आप आ सकते हैं बिहार के वाल्मीकि नगर। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस मन बनाइए और यहाँ पहुंच जाइए।

इसी के साथ अब स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। मैं आपसे मिलूंगी अगले शनिवार 12:10 पर घर आंगन प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। लेकिन पहले समय है समाचारों का, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।

0: लंदन।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं घर आंगन, जहां बातें होती हैं हौसलों की, सपनों की, रिश्तों की, और मैं हूं आज आपके साथ मंजुला। अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर। और दोस्तों, जब भी कोई महिला अपने लिए आवाज उठाती है, वो सिर्फ अपनी नहीं, हर उस महिला की आवाज बन जाती है जो अब तक चुप थी। एक महिला का बस और नहीं कहना दूसरी महिला के लिए हिम्मत बन जाता है। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, सौंदर्य की, घर परिवार और जीवन जीने की कला की, और होंगे गीत संगीत। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है, और शायद वो आवाज कभी आपकी हो।

अभी हम सुन रहे थे आशा भोंसले और मोहम्मद रफी को फिल्म सगाई से और आकाशवाणी को युवाओं से जोड़ने का प्रयास। दोस्तों, आकाशवाणी ने बीते 9 दशकों में देश की आवाज को हर घर तक पहुंचाया है। कभी यह सिर्फ समाचार और संगीत का माध्यम था, लेकिन समय के साथ इसने खुद को बदला, निखारा और नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाया। इसी बदलाव की एक बहुत बड़ी कड़ी रही FM का विस्तार। इस अभिनव पहल की शुरुआत मुंबई से हुई और जल्द ही इसका विस्तार चेन्नई, कोलकाता और गोवा जैसे प्रमुख शहरों तक हो गया। FM के आगमन के साथ ही जो प्रोग्राम्स थे उनकी शैली में भी नया रंग देखने को मिला। अब रेडियो पर पश्चिमी संगीत की धुनें गूंजने लगी, प्रायोजित कार्यक्रमों ने अपनी जगह बनाई और काउंटडाउन और चैट शो जैसे फॉर्मेट शहरी श्रोताओं के बीच बहुत ही लोकप्रिय हो गए। FM रेनबो जैसे चैनल ने युवाओं के लिए एक अलग पहचान बनाई, जहां म्यूजिक, मस्ती और मॉडर्न कंटेंट का बेहतरीन मेल देखने को मिला। साथ ही साथ फोन इन प्रोग्राम्स ने रेडियो को एक तरफा माध्यम से आगे बढ़ाकर इंटरैक्टिव बना दिया। अब श्रोता सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अपनी बात भी रखते हैं, अपने सवाल, अपने अनुभव और अपनी आवाज के साथ। आकाशवाणी ने करियर, हेल्थ, मोटिवेशन और सामाजिक मुद्दों पर भी ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जो युवाओं को न सिर्फ जानकारी देते हैं बल्कि उन्हें सोचने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो दोस्तों, 90 वर्षों का ये सफर हमें यही सिखाता है कि समय बदलता है, तकनीक बदलती है, लेकिन जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है वही हमेशा प्रासंगिक बना रहता है।

0: अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म काला पत्थर से।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: और अब बात एक ऐसी डॉक्टर की जिन्होंने भारत में नवजात शिशुओं की देखभाल को नई दिशा दी। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री से सम्मानित शिशु रोग विशेषज्ञ अर्मिडा फर्नांडिस की। डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस भारत में नियोनेटल केयर यानी नवजात शिशु देखभाल की अग्रणी विशेषज्ञों में से एक मानी जाती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समय से पहले जन्मे और कमजोर नवजात शिशुओं की जान बचाने के लिए समर्पित किया। उनकी सबसे बड़ी पहल थी एशिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक, जो मुंबई के लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल जनरल हॉस्पिटल में स्थापित किया गया। यह एक ऐसी सुरक्षित व्यवस्था थी जहां माताओं द्वारा दान किए गए स्तन दूध को इकट्ठा किया जाता था, फिर मेडिकल जांच, पाश्चराइजेशन और सुरक्षित स्टोरेज जैसी सख्त प्रक्रियाओं से उनको गुजरने के बाद उन नवजात शिशुओं तक पहुंचाया जाता था जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। खासतौर पर NICU यानी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती उन बच्चों के लिए जो बहुत ही कमजोर होते हैं।

या समय से पहले जन्म लेने की वजह से खुद दूध नहीं पी पाते। आज ह्यूमन मिल्क बैंक नवजात शिशुओं के लिए जीवन रक्षक सहायता माने जाते हैं और डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस की इस पहल से प्रेरित होकर आज भारत भर में दर्जनों ह्यूमन मिल्क बैंक काम कर रहे हैं, जो हर साल हजारों बच्चों को नई जिंदगी दे रहे हैं। उन्होंने हेल्थ केयर और महिला सशक्तिकरण को एक साथ जोड़ा, माताओं को जागरूक किया और हजारों नन्ही जिंदगियों को नई उम्मीद दी। उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया और यह सम्मान सिर्फ एक डॉक्टर को नहीं बल्कि उस सोच को मिला जिसने ममता को चिकित्सा का हिस्सा बना दिया। डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस की कहानी हमें ये सिखाती है कि चिकित्सा सिर्फ इलाज नहीं, संवेदना, जागरूकता और सही पहल भी जीवन बचा सकती है।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म थी मिली।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: और दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। बात करेंगे उस साधारण सी सब्जी की जो हर रसोई की शान है। आलू सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत का भी खजाना है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, विटामिन सी और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह शरीर को ऊर्जा देता है, पेट भरता है और सबसे खास बात, यह हर मसाले और हर स्वाद में आसानी से ढल जाता है। शायद यही वजह है कि भारत के हर राज्य ने आलू को अपना अलग अंदाज दिया है। छोटे आलूओं को डीप फ्राई करके काजू के पेस्ट और मसालों में पकाया जाए तो बनता है कश्मीर का दम आलू। उबले आलू को खसखस के पेस्ट और सरसों के तेल में हल्का मसाला देकर पकाया जाए तो बनता है बंगाल का आलू पोस्तो। उबले आलू को लाल मिर्च, जाखिया और धनिये के साथ भुना जाए तो बनते हैं उत्तराखंड के आलू के गुटके। मसालेदार आलू के मिश्रण को बेसन में लपेट कर तला जाए तो बनता है महाराष्ट्र का बटाटा वड़ा। नारियल के दूध, करी पत्ते और हल्के मसालों में आलू को पकाया जाए तो बनता है केरला का स्टू। उबले आलू को सरसों के कच्चे तेल, प्याज और हरी मिर्च के साथ उसको मसल दिया जाए तो बनता है असम का पिटिका। और वैसे ही भारत के अलग अलग हिस्सों में आलू के कई और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। आलू को मसालों और मक्खन के साथ आटे में भरकर तवे पर सेका जाए तो बनता है आलू पराठा। आलू और मसालों को मैदे की परत में भरकर तला जाए तो बनता है समोसा। मसालेदार आलू को कटे हुए प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, कच्चे सरसों के तेल और धनिये के साथ मिलाया जाए तो बनता है बिहार के आलू का चोखा। सच ही तो है, एक साधारण सा आलू लेकिन हर राज्य में अलग स्वाद, अलग संस्कृति और अलग कहानी। तो दोस्तों, आपका पसंदीदा आलू व्यंजन कौन सा है? क्योंकि भारत में आलू सिर्फ सब्जी नहीं, स्वादों का उत्सव है। हमें ईमेल भेजिए और बताइए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldg@gmail.com। हमें आपके संदेश का इंतजार रहेगा।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी खानदान। और अब हम बात करेंगे भारत की उस अद्भुत धरोहर की जिसे देखकर लगता है मानो पत्थरों में सूरज की रोशनी कैद हो गई है। ओडिशा का प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर, 13वीं शताब्दी में बने इस भव्य मंदिर को राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और इसकी सबसे खास बात है इसका अनोखा आकार। पूरा मंदिर एक विशाल रथ की तरह बनाया गया है जिसमें 24 विशाल पत्थर के पहिए, 7 घोड़े बने हैं। ये सूर्य देव के रथ का प्रतीक है जो समय और जीवन की निरंतर गति को दर्शाते हैं। कोणार्क मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। इसकी वास्तुकला, नक्काशी और वैज्ञानिक सोच आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। अब बात उस रहस्यमय विशाल चुंबक की, मैग्नेट की, जिसकी कहानी आज भी लोगों को रोमांचित करती है। कहा जाता है कि मंदिर के शीर्ष पर एक बहुत बड़ा मैग्नेट लगा था। लोक कथाओं के अनुसार उसी चुंबक की ताकत से मंदिर के गर्भगृह में सूर्यदेव की मूर्ति हवा में संतुलित रहती थी। कुछ कहानियां ये भी कहती है कि समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपास इस चुंबक से प्रभावित हो जाते थे, इसी वजह से बाद में उस विशाल चुंबक को निकाल दिया गया। माना जाता है कि चुंबक हटने के बाद मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और धीरे धीरे मंदिर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। फिर भी सदियों बाद आज भी कोणार्क सूर्य मंदिर उसी शान से खड़ा है। अपनी अद्भुत खूबसूरती, अनोखी वास्तुकला और समृद्ध इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए। तो अगली बार जब आपके हाथ में 10 रुपए का नोट आए तो उस पे बना हुआ सन टेम्पल जरा ध्यान से देखिए। वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं, भारत की अद्भुत कला, विज्ञान और इतिहास की पहचान है कोणार्क सूर्य मंदिर।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोंसले को, फिल्म थी जमीर। गर्मियों में मौसम अपने साथ धूप छुट्टियों की मस्ती तो लाता है, लेकिन साथ ही लाता है टैनिंग, सनबर्न और त्वचा से जुड़ी कई परेशानियां भी। ऐसे में जरूरी है कि इस मौसम में हम अपनी त्वचा को थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं बल्कि सही तरीके से ख्याल रखें। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात सनस्क्रीन। घर से बाहर निकलने से लगभग 20 मिनट पहले SPF 30 या उससे अधिक वाला सनस्क्रीन जरूर लगाएं, और अगर लंबे समय तक धूप में रहना हो तो 2-3 घंटे में इसे दोबारा लगाना न भूलें। गर्मियों में शरीर को जितनी जरूरत पानी की होती है उतनी ही आपकी त्वचा को भी, इसलिए दिन भर खूब पानी पिए। नारियल पानी, नींबू पानी और मौसमी फलों को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें, क्योंकि स्वस्थ त्वचा की शुरुआत अंदर से होती है। धूप से बचने के लिए सिर्फ सनस्क्रीन नहीं बल्कि छाता, धूप का चश्मा और सूती कपड़े भी बहुत मदद करते हैं। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक की तेज धूप से हो सके तो बचें। अब सनबर्न और टैनिंग के लिए ठंडक देने वाला फेस पैक भी फायदेमंद हो सकता है। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 1/4 चम्मच चंदन पाउडर और 1/2 चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर मिलाएं। इसमें खीरे का रस डालकर इसका एक मुलायम सा पेस्ट रेडी करें। इसे चेहरे पर लगभग 10 से 15 मिनट तक लगाकर रखें और फिर ठंडे पानी से धो लीजिए। ये जो मास्क है त्वचा को ठंडक देता है, सनबर्न के असर को कम करने में मदद करता है। लेकिन अगर त्वचा पर ज्यादा जलन, खुजली या रेडनेस हो गया हो तो घरेलू उपायों के बजाय डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है। तो इस गर्मी अपनी त्वचा का ख्याल रखना बिल्कुल मत भूलिए।

अभी हम सुन रहे थे महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को, फिल्म थी गीत। और दोस्तों, गर्मी शुरू होते ही सिर्फ तापमान नहीं बढ़ता है, हमारे घर का माहौल भी बदलने लगता है। तो क्यों ना इस बार घर को ऐसा गर्मियों वाला नया रूप दिया जाए जो आकर्षक भी हो, ठंडक भी दे और धरती माँ को भी पसंद आए। सोचिए, दरवाजा खुलते ही हल्की सी मिट्टी की खुशबू, खिड़की पर हिलती हुई बांस की घंटियां और कमरे के कोने में छोटा सा हरियाली का कोना, वाह, यही तो है रियल समर वाइब। तो सबसे पहले एक मजेदार और काम की तरकीब, पुरानी सूती साड़ियों या दुपट्टों को फेंकिए मत, उसे कुशन कवर, मेज पर बिछाने वाले कपड़े या पर्दे बनाइए। घर भी कलरफुल लगेगा और रिसाइकल का शानदार उदाहरण भी बन जाएगा। और दोस्तों, अगर घर बहुत गर्म हो जाता है तो बालकनी या खिड़की के पास वर्टिकल गार्डन लगाइए। छोटी छोटी बोतलों में पौधे टांग दीजिए, ये सिर्फ खूबसूरत नहीं लगते बल्कि आसपास की गर्मी को थोड़ा सा कम करते हैं। एक और शानदार उपाय, मिट्टी के घड़ों और मिट्टी की सजावट को घर में जगह दीजिए, यह घर को प्राकृतिक ठंडक भी देते हैं, देखने में भी बहुत ही देसी और सुरुचिपूर्ण लगते हैं। अब बात खुशबू की, कमरे को खुशबूदार बनाने वाला स्प्रे खरीदने की बजाय एक कटोरे में पानी भरिए, उसमें नींबू के टुकड़े, पुदीना और गुलाब की पंखुड़ियां डाल दीजिए, पूरा घर प्राकृतिक ताजगी से भर जाएगा। और हाँ, दिन के समय भारी कालीन हटाकर बांस या जूट की चटाई बिछाइए, पैरों को ठंडक मिलेगी और घर तुरंत गर्मियों के लिए तैयार महसूस होगा। तो दोस्तों, इस गर्मी

अभी हम सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को फिल्म थी साथ साथ। और दोस्तों, डिग्री जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ डिग्री ही काफी है? जरा सोचिए, हम सालों पढ़ाई करते हैं अच्छे कॉलेज, अच्छे मार्क्स, अच्छी डिग्री के लिए, लेकिन असली जिंदगी की परीक्षा में क्या ये सब अकेले हमें आगे बढ़ा पाते हैं? सच ये है कि डिग्री के साथ कुछ जरूरी लाइफ स्किल्स सीखना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन। आप क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, यही तय करता है मौके आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे या नहीं। सार्वजनिक बोलने की कला यानी पब्लिक स्पीकिंग, भीड़ के सामने आप कॉन्फिडेंस से बोलना आपको हर जगह एक अलग पहचान देता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने जज्बातों को समझना और दूसरों को महसूस करना, यही रिश्तों को मजबूत बनाता है। नेटवर्किंग, सही लोग सही समय पर आपकी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। मोल भाव की कला यानी नेगोशिएशन, जो आप डिजर्व करते हैं उसे पाने की कला सीखिए। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज अपने आज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मुश्किलों में घबराना नहीं है, समाधान ढूंढने हैं उसके लिए सीखिए, बहाने नहीं। आलोचनात्मक सोच, हर बात पर

यकीन मत कीजिए, सोचिए, समझिए और फिर फैसला कीजिए। अनुकूलन क्षमता, जो समय के साथ बदलना सीखते हैं वही आगे निकलते हैं। सिर्फ पीछे चलना नहीं, आगे बढ़कर राह दिखाना सीखिए। वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, अगर आप पैसे को मैनेज नहीं करेंगे तो पैसा भी आपको ज्यादा दिन साथ नहीं देगा। तो डिग्री आपको एक दरवाजा खोल कर दे सकती है, लेकिन इन लाइफ स्किल्स के बिना उस दरवाजे के आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए, क्योंकि असली कामयाबी सिर्फ किताबों से नहीं, जिंदगी को समझने से मिलती है।

अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर को, फिल्म है प्रेम पर्वत। तो दोस्तों, आज की इस प्यारी सी मुलाकात को यहीं देते हैं विराम। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलेंगे कुछ नई बातों और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स के साथ। दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री डिलेन येसिलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटन्स IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi today said that Indian Armed Forces remain on high operational alert and are prepared for Operation Sindhu 2.0 if the situation warrants further military action. Addressing the passing out parade of the 150th Corps at the National Defence Academy in Kharagwasla, Pune, General Dwivedi said that Operation Sindhu demonstrated India's ability to respond to provocation with precision and resolve, setting a benchmark for the country's response to emerging security challenges.
4: As far as Operation Sindhu is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindhu 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
3: Myanmar President U Min Aung Hlaing arrived in Bodh Gaya today as part of his five-day visit to India. During the visit, he offered prayers at the world-renowned Mahabodhi Temple and the historic Sujata Temple. The president is also scheduled to visit various Myanmar Buddhist monasteries in Bodh Gaya. Earlier, Bihar Agriculture Minister Vijay Kumar Sinha accorded a warm welcome to President U Min Aung Hlaing at Gaya Airport. The Karnataka Congress Legislature Party is scheduled to meet in Bangalore at 4 p.m. today to elect its new leader to succeed the outgoing Chief Minister, Mr. Siddaramaiah. Governor Thavarchand Gehlot has already accepted the resignation of Mr. Siddaramaiah, asking him to act as a caretaker until a new incumbent is chosen. The 136 Congress MLAs have been asked to attend the CLP meeting. AICC General Secretary and Karnataka in charge, Randeep Singh Surjewala, will be the observer. Seven people have died in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning strikes across Bihar. Three fatalities were reported in Gaya, while Aurangabad recorded two deaths. Two deaths have been reported from Saran and Khagaria districts. Expressing grief over the tragic incidents, Chief Minister Samraj Chaudhary has announced an ex gratia grant of 4 lakh rupees each for the next of kin of the deceased. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan today bid farewell to military service after receiving a ceremonial Tri-Services Guard of Honour at the National War Memorial in New Delhi. The ceremony marked the culmination of his distinguished tenure as the country's top military officer. After laying wreath at the war memorial, General Chauhan said it was a matter of great honour for him to superannuate with the Tri-Services Guard of Honour. Marking his transition to civilian life after over 4 decades of service, General Chauhan described his tenure satisfying and excellent. Minority Affairs Minister Kiran Rijiju today informed that for the first time, Indian Hajj Mission has received two prestigious Labetum Awards from the Saudi Ministry of Hajj and Umrah for excellence in Hajj coordination and communication. The Ministry of Health and Family Welfare has released the National Family Health Survey 6 with the data reflecting India's accelerated progress in maternal and child health, nutrition and financial protection. The survey highlighted that institutional deliveries in India increased from 88.6% in 2019-2021 to 90.6% in 2023-24. The survey said India's total fertility rate remains at 2 and vaccines received by children aged from 12 to 23 months remains consistently high above 96%. The India Meteorological Department IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over West Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands today. The IMD has

0: 101.1 MHz पर ये है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। 1:11 हुए हैं। ये है कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम जिसे हाजिर हूँ लेकर मैं नईम अख्तर। आज हम कलाकार बेमिसाल में बात करने वाले हैं एक अभिनेता और फिल्म निर्माता की जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माने जाने वाले ये कलाकार 240 से ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुके हैं और उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार तो हैं ही। 2014 का भारत सरकार की तरफ से 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री भी शामिल है। बता दें 30 मई 1955 को उनका जन्म हुआ था। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है और आज इसीलिए हम कलाकार बेमिसाल में उनके बारे में बात करेंगे, उनकी फिल्मों के गीत सुनाएंगे और कुछ संवाद भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या अभी तक उनका नाम कैसे नहीं कर पाए हैं? तो सुनिए, फिल्म माला माल वीकली में उनकी ये गुदगुदा देने वाली आवाज और पहचानिए तो भला किन के बारे में आज हम बात कर रहे हैं।
1: हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपकी शादी हुई है?
2: नहीं।
1: नहीं, आपके कितने बच्चे हैं?
2: बेशरम।
3: अरे बेवकूफ, बच्चे कितने पहले पूछना था ना।
1: नमस्कार, हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपके बच्चे हैं?
2: जी हाँ।
1: कितने हैं?
2: 6।
1: 6 है। आपकी शादी हुई है?
2: बेशरम।
0: तो यूं होता है कई बार कि पासा उल्टा पड़ जाता है और ये पासा उल्टा पड़ना जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया जाता है। तो आज अगर अभी तक आपको उनकी पहचान नहीं हुई थी जिनका जिक्र आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम करने वाले हैं, तो अब आप जरूर समझ गए होंगे। आज हम बात कर रहे हैं परेश रावल की। परेश रावल जिनका जन्म और पालन पोषण मुंबई में एक गुजराती परिवार में हुआ था। उन्होंने मुंबई के विले पार्ले स्थित नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की और जब वो फिल्मों में आए तो छा गए। तो चलिए एक गीत सुनते हैं 2007 में आई फिल्म वेलकम से। इस गीत में आप अगर याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि गीत बेशक खूबसूरत था, मधुर था, पिक्चराइजेशन अच्छी थी, लेकिन गीत में कटरीना कैफ और अक्षय कुमार के अलावा जो गीत की जान थे फिरोज खान के साथ साथ, वो थे परेश रावल।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूँ?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DLD ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DLD ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 1:20:37 हुए हैं। कलाकार बेमिसाल में हम बात कर रहे हैं आज परेश रावल की। परेश रावल जिनके बारे में हमने बताया कि आज उनका जन्मदिन है और उनकी पर्सनल जिंदगी, निजी जीवन के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें आपसे शेयर की। फिल्मों के बारे में उनकी शुरुआत कहां से हुई ये बता देते हैं। 1985 में आई फिल्म अर्जुन में एक सहायक भूमिका के साथ परेश रावल ने अपने करियर की शुरुआत की थी। वो दूरदर्शन के टीवी सीरियल बनते बिगड़ते की कास्ट का भी हिस्सा थे। 1986 की ब्लॉकबस्टर फिल्म नाम ने उन्हें एक बेहतरीन अभिनेता के तौर पर स्थापित किया। इसके बाद 1980 और 90 के दशक में वो 100 से ज्यादा फिल्मों में नजर आए, जिसमें से ज्यादातर में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई। ऐसी फिल्मों में रूप की रानी, चोरों का राजा, कब्जा, किंग अंकल, रामलखन, दौड़, बाजी जैसी फिल्में शामिल हैं। 1990 के दशक में उन्होंने कल्ट कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना में भी काम किया, जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी। याद आई वो दोहरी भूमिका वाली उनकी कहानी? नहीं याद आई तो चलिए आपको उसी फिल्म का एक संवाद सुनवाते हैं खुद परेश रावल की ही आवाज में, जिसमें दोनों परेश रावल यानी फिल्म में जो दो भूमिकाएं उन्होंने निभाई थी, दोनों ही पर्दे पर आमने सामने दिखाई देते हैं।
6: बरसों से पाला हुआ, दिल के कोने में छुपाया हुआ मेरा सपना पूरा करूंगा। मुर्गियों का फार्म खोलूंगा, पोल्ट्री फार्म, हजारों मुर्गियां पालूंगा जो लाखों अंडे देंगी, लाखों अंडों से करोड़ों मुर्गियां और उनके कई करोड़ अंडे और अरबों आमलेट, वो खाने के लिए ब्रेड भी मैं ही दूंगा। मैं बेकरी भी खोलूंगा, ब्रेड का बादशाह और आमलेट का राजा।
5: जी हाँ, ये था परेश रावल की उस वक्त का सीन जब दोनों परेश रावल आमने सामने आ जाते हैं, जिनमें एक फिल्म में विलेन के रोल में होते हैं और एक सचमुच में रवीना करीना करिश्मा के अंकल के किरदार निभा रहे होते हैं। खैर, ये भी अपने आप में एक बड़ा मजेदार सीन था। 1994 में परेश रावल को फिल्म वो छोकरी और सर में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। फिल्म सर के ही लिए उन्हें नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। केतन मेहता की फिल्म सरदार में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका निभाई। इस भूमिका ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उन्हें तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्मों में खलनायक की भूमिकाओं के लिए भी पहचान मिली है और फिल्म मोहरा में उनका निभाया करप्ट सब इंस्पेक्टर काशीनाथ साहू का जो किरदार था वो भला कौन निभा सकता है, इतना कॉमिक कैरेक्टर। सुनते हैं उसी फिल्म का एक गीत जिसमें आलाप और सरगम परेश रावल पर ही फिल्माया गया है। जी हाँ, फिल्म का ये गीत सबसे, वैसे तो सभी गीत बहुत हिट थे लेकिन फिल्म का ये गीत सबसे ज्यादा हिट गीतों में शामिल होता है और इस गीत में परेश रावल का भी एक अहम किरदार था। पूरे गीत में जहां जहां आलाप और सरगम है वहां

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 1:31:47 आपके साथ मैं हूं नईम अख्तर। हमारे साथ है कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं परेश रावल की। परेश रावल अभिनेता और फिल्म निर्माता सभी कुछ हैं। खैर हम उनके बारे में क्या बताएं, उनका नाम ही अपने आप में अपना परिचय देने के लिए काफी है। लेकिन कुछ थोड़ी सी चीजें हैं जब एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं तो हमें सभी को अच्छा लगता है। तो चलिए कुछ बातें उनके साथ उनकी आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। सन 2000 तक परेश रावल को ज्यादातर या तो खलनायक के रूप में या कैरेक्टर एक्टर यानी चरित्र अभिनेता के रूप में ही आपने और हमने देखा था। लेकिन सन 2000 में आई फिल्म हेरा फेरी, जिसने दर्शकों और समीक्षकों सभी को उनकी तरफ ध्यान देने पर ऐसा मजबूर किया कि उनका किरदार आज तक भी जहन से नहीं निकलता है। हालांकि इस फिल्म को रिलीज हुए 26 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस फिल्म के बाद उन्होंने कई मुख्यधारा की हिंदी फिल्मों में मुख्य अभिनेता या नायक की भूमिका निभाई। फिल्म हेरा फेरी में परेश रावल ने एक सीधे साधे जोर शोर वाले और दयालु स्वभाव के मराठी मकान मालिक बाबूराव गणपतराव आपटे का किरदार निभाया था। याद आया बाबू भैया, बाबूराव गणपतराव आपटे उनका पूरा नाम था और फिल्म में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी उन्हें बाबू भैया ही कहकर के पुकारते थे। अपने इस शानदार अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार मिला। लेकिन खुद परेश रावल का इस बारे में ख्याल जरा सा हटके है, उनका क्या ख्याल है पहले हम उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद फिल्म हेरा फेरी का भी एक गीत हम सुनेंगे। सुनते हैं परेश रावल क्या कहते हैं।
2: अर्जुन ने कहा मैं विलन का
3: चुपावन
4: जमाला लगते मेरे को गाना गाना पड़ेगा
5: देने वाला जब भी देता।
1: पहले गीत सुन लेते हैं फिर दोबारा आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का वो बातें जो खुद परेश रावल ने शेयर की हैं।

0: आकाशवाणी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर बात कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम परेश रावल की। और हमने आपको बताया था कि फिल्म हेरा फेरी जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है, सबसे अच्छा सबसे प्रसिद्ध हास्य भूमिका जिसको माना जाता है, उस फिल्म के बारे में परेश रावल ने खुद ने जो अपने व्यूज दिए वो जरा से हटके थे। हालांकि वो अपनी इस फिल्म की कामयाबी से, अपने किरदार की कामयाबी से बहुत खुश जरूर हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अलग तरह की बात भी कही।
1: आपको एक बात में बोलूंगा, बड़ा आपको ताज्जुब हो गया, मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं। मैं 2007 में विशाल भारद्वाज जी के पास गया था, विशाल भाई 2006 में पार्ट टू रिलीज हुई थी, और विशाल भाई मेरे पास एक फिल्म है, मुझे इसकी जो इमेज है मुझे इससे छुटकारा चाहिए। सेम गेटअप के अंदर अलग किस्म का रोल वो आप करके दे सकते हैं मुझे। तो क्या बात, क्यों छुट, मतलब नहीं मुझे अभी क्या हो गया, जो भी आता है उसके दिमाग में हेरा फेरी है, जो भी आता है। तो मुझे तो, मैं एक्टर हूँ यार, मुझे फंसना नहीं है इस दलदल में। तो यार परेश भाई मैं रीमेक नहीं करता हूँ ना, ओके फाइन अंडरस्टैंड। तो एक खुशी तो होती है यार, बड़े फिर बहुत ही बांधने वाली चीज है, आपको इससे मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए यार।
0: तो ये परेश रावल के व्यूज खुद अपने इस रोल के, इस फिल्म के बारे में थे। परेश रावल ने फिर इस फिल्म के सीक्वल फिर हेरा फेरी में भी 2006 में काम किया, और उसमें भी बाबू राव की अपनी भूमिका को दोहराया, जो कि फिर से बहुत बहुत कामयाब रही। तो चलिए फिर हेरा फेरी का एक वो वाला गीत सुनते हैं जिसमें पर्दे पर गीत गाते हुए अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी को लगातार परेशान करते हुए, और जॉनी लीवर को भी लगातार परेशान करते हुए इस गीत में दिखाई देते हैं परेश रावल।

गुजराती नाटकों में भी परेश रावल का अभिनय करियर बहुत कामयाब रहा। टेलीविजन के लिए भी उन्होंने कई हिंदी सीरियल प्रोड्यूस किए, जिनमें तीन बहुरानियां, मैं ऐसी क्यों हूं और लागी तुझसे लगन शामिल है। 2018 में उनकी सबसे चर्चित रिलीज राजकुमार हिरानी की फिल्म संजू थी, जिसमें उन्होंने अभिनेता सुनील दत्त का शानदार किरदार निभाया था।

10 सितंबर 2020 को भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया। 2025 में उन्होंने द स्टोरी टेलर नाम की फिल्म की, जिसमें उन्होंने सत्यजीत रे के प्रसिद्ध चरित्र तारिणी खुरो को चित्रित किया था। और अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो सभी जानते हैं और बेहद खुशनसीब हैं कि 1987 में परेश रावल ने बेहद खूबसूरत अभिनेत्री और 1979 की मिस इंडिया प्रतियोगिता की विजेता स्वरूप संपत से शादी की और आज तक उनके साथ एक सुखी दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं। ये गीत है फिल्म हंगामा का, जिसमें परेश रावल पर्दे पर गाते हुए भी दिखाए गए हैं। कलाकार बेमिसाल से नेम को भी इजाजत दीजिए, सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। ला ला ला ला। कुछ ही पलों में सुनेंगे उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउं लाइन ने बोधगया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपना 5 दिन का भारत का दौरा शुरू कर दिया है। कर्नाटक कांग्रेस कानून साज पार्टी अपना नया लीडर मुंतखब करने के लिए आज मीटिंग करेगी। बिहार में तूफानी हवाओं, शदीद बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए हैं। और अमरीका के वजीर दिफा पीट हेक्सेट ने कहा है कि ईरान के साथ कोई मुआहदा न होने की सूरत में अमरीका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। अब खबरें तफसील से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा है कि अगर हालात का तकाजा हुआ तो भारतीय फौज कार्रवाई के लिए हाई अलर्ट पर और ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला नेशनल डिफेंस एकेडमी में 150वें कोर के पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुरुस्तगी और अजम के साथ इश्तआल अंगेजी का जवाब देने में भारत की सलाहियतों का मुजाहरा किया है और उभरती हुई सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने में मुल्क के लिए एक मेयार कायम किया है। जनरल द्विवेदी ने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने मुल्क के मुस्तहकम अज़्म और मुसल्ला अफवाज के दरमियान हम आहंगी की अहमियत का मुजाहरा किया है। जनरल द्विवेदी ने ग्रेजुएट कैडेट से अपील की कि वो प्रोफेशनलिज्म के आला मेयार, क्यादत और मुल्क की खिदमत के जज्बे को कायम रखें। उन्होंने उभरती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल में मुस्बत नुक्ता नजर अपनाने और सीखने के अमल को जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि जवानों के एतमाद और भरोसे पर मुअसर क्यादत की तामीर होती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली के कौमी जंगी यादगार में तीनों फौजों का यादगार गार्ड ऑफ ऑनर हासिल करने के बाद कौमी खिदमात को अलविदा कहा। इस तकरीब में मुल्क में आला फौजी अफसर के तौर पर उनकी मुमताज खिदमात को याद किया गया। जंगी यादगार में गुलदायरा पेश करने के बाद जनरल चौहान ने कहा कि तीनों फौजों का गार्ड ऑफ ऑनर हासिल करना उनके लिए बड़े फख्र की बात है। 4 दहाइयों से ज्यादा मुश्तमिल खिदमात के बाद एक आम शहरी के तौर पर तब्दीली को बयान करते हुए जनाब चौहान ने अपनी खिदमात को इत्मीनान बख्श बताया। 1981 में भारतीय फौज में शामिल होने के बाद जनाब चौहान ने मुल्क की 40 साल से ज्यादा खिदमत की और अपने पुरकशिश फौजी करियर के दौरान कई अहम ओहदों पर फायज रहे। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी जनरल चौहान की जगह लेंगे। पनाजी की कला एकेडमी में आज गोवा का 40वां योम तासीस मनाया गया। तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने गोवा को एक मिसाली रियासत बताया जहां तरक्की के साथ साथ उसकी मालामाल सकाफती विरसे में तवाजुन बरकरार रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि गोवा इस बात की एक अच्छी मिसाल है कि किस तरह अपनी पहचान और तरक्की एक साथ चल सकती है। उन्होंने कहा कि गोवा ने जदीद तरक्की हासिल करते हुए अपनी सकाफती बुनियादों को भी कायम रखा है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि गोवा एक सियाहती मकाम से कहीं बढ़कर जगह है। उन्होंने गोवा को एक जिंदा तहजीब बताया जहां सकाफती तबादला, समाजी हम आहंगी और खुला जहन पाया जाता है। उन्होंने खानदगी, सेहत, खिदमात और माहौल के बारे में बेदारी और इंसानी तरक्की के शोबों में रियासत की हौसूलयाबी की तारीफ की। पनाजी से महेश की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: इम्तहानात से मुताल्लिक कौमी एजेंसी एनटीए ने कहा है कि उसकी तकनीकी शरीककार टीसीएस की फनी खराबी की वजह से आज उसके कुछ इम्तहानी मराकज में कॉमन यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट सीयूईटी यूजी 2026 के शुरू होने में ताखीर हुई। एनटीए ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस मसले को हल कर लिया गया है और इम्तहानात जारी हैं और उम्मीदवारों को पूरा वक्त दिया जाएगा ताकि उन्हें कोई नुकसान न उठाना पड़े। एजेंसी ने यह भी बताया है कि बाद दोपहर शुरू होने वाले इम्तहानात के वक्त में रद्दोबदल किया गया है। उम्मीदवारों को 2:30 बजे से दाखिले की इजाजत दी जाएगी जबकि इम्तहान 3 बजे के बजाय 4 बजे शुरू होगा। एनटीए ने मजीद कहा है कि सुबह के इम्तहान में बैठने वाले उम्मीदवारों को पूरा वक्त दिया जाएगा और उन्हें पेपर मुकम्मल होने के बाद ही जाने की इजाजत दी जाएगी।

0: एजेंसी ने तलबा और वालिदैन को परेशानी होने के लिए अफसोस का इजहार किया है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने खानदानी सेहत का छठा कौमी जायजा जारी किया है, जिसमें आदाद शुमार से माँ और बच्चे की सेहत, तगजिए और माली सेहत तहफ्फुज के मैदान में भारत की खातिर खा तरक्की का पता चलता है। यह छठा कौमी जायजा सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के जरिए 2023-24 के दौरान किया गया था। इस जायजे में 715 अजला पर मुश्तमिल 6,79,000 घरानों को शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर में बैन अल-अक़वामी सरहद के पास रह रहे लोगों ने मरकज के उस फैसले का खैर मकदम किया है, जिसमें सरहद से 15 किलोमीटर के अंदर गैर कानूनी तामीरात और गैर कानूनी कार्रवाइयां हटाए जाने की बात कही गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हाल ही में एक आला सतह की सिक्योरिटी जायजा मीटिंग के दौरान यह फैसला किया था। अरनिया, आरएसपुरा और सुचेतगढ़ समेत सरहदी इलाके के लोगों ने इस अमल में अपनी हिमायत का इजहार किया और कहा है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई जो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। म्यांमा के सदर ऊ मिन आउ लाइन आज बोधगया में महाबोधि मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। उन्होंने उस बोधि पेड़ के नीचे मराकबा किया, जिस पेड़ के बारे में मशहूर है कि भगवान बुद्ध ने निर्वाण हासिल किया था। अपने दौरे के दौरान म्यांमा के सदर तारीखी बकरोर के सुजाता मंदिर गए और बोधगया की बर्मी मोनेस्ट्री का भी दौरा किया। उनके हमराह एक आला सतह का वफद भी है, जो बहुत से काबीना वजीरों, सीनियर अफसरों और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल है। सदर ऊ मिन का उनकी मौजूदा हैसियत से भारत का यह पहला दौरा है। कर्नाटक कांग्रेस कानूनसाज पार्टी की आज से पहर 4 बजे मीटिंग होना मुतवक्के है, जिसमें सुबुकदोश होने वाले वजीर आला जनाब सिद्धरमैया के बाद नए लीडर का इंतखाब किया जाएगा। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने जनाब सिद्धरमैया का इस्तीफा पहले ही कबूल कर लिया है और उनसे नए लीडर के इंतखाब तक कारगुजार वजीर आला के तौर पर काम करने को कहा है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि जनाब डी के शिव कुमार को बाजाब्ता तौर पर कांग्रेस कानूनसाज पार्टी का नया लीडर बनाए जाने की तवक्को है। कांग्रेस के 136 मेंबरान असेंबली से सीएलपी मीटिंग में शिरकत करने को कहा गया है। बिहार में गरज चमक, शदीद बारिश और बिजली गिरने के कई वाकयात में कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए हैं। हमारे नामानिगार से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक बिजली गिरने के वाकयात में गया में 3 अमवात हुई हैं, जबकि औरंगाबाद से 2 अमवात की खबर मौसूल हुई है। दरियासना, सरन और खगड़िया जिला से 1-1 मौत की रिपोर्ट मौसूल हुई है। गरज चमक और बिजली गिरने के वाकयात में हुई अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए वजीर आला सम्राट चौधरी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 4-4 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। अकलियतों के उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज बताया कि भारतीय हज मिशन को सऊदी अरब की हज और उमरा की वजारत की तरफ से पहली मर्तबा 2 बावकार लब्बैतुम अवार्ड हासिल हुए हैं। ये अवार्ड हज के प्रोग्राम को खुश असलूबी के साथ कराए जाने पर दिए गए हैं। अमरीका के वजीर दिफा पीट हेक्सेट ने कहा है कि ईरान के साथ कोई मुआहदा न होने की सूरत में अमरीका फिर से फौजी कार्रवाई शुरू करेगा। एशिया की अहम सिक्योरिटी फोरम शेंगरीला डायलॉग से खिताब करते हुए जनाब हेक्सेट ने कहा कि अमरीका के खित्ते में और पूरी दुनिया में फौजी मौजूदगी है और वो जरूरत पड़ने पर इस तरह की कार्रवाइयां अंजाम दे सकता है। उन्होंने कहा कि अमरीका किसी भी नागहानी सूरत का जवाब देने की अच्छी पोजीशन में है। अमरीका के वजीर दिफा ने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान के साथ तनाजे के बावजूद अमरीका एशिया बहरुल काहिल खित्ते के लिए पाबंद अहद है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। म्यांमा के सदर ऊ मिन आउ लाइन ने बोधगया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपना 5 दिन का भारत का दौरा शुरू कर दिया है। कर्नाटक कांग्रेस कानूनसाज पार्टी अपना नया लीडर मुंतखब करने के लिए आज मीटिंग करेगी। बिहार में तूफानी हवाओं, शदीद बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए हैं। और अमरीका के वजीर दिफा पीट हेक्सेट ने कहा है कि ईरान के साथ कोई मुआहदा न होने की सूरत में अमरीका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिड डे न्यूज़।

0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, यह अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउल लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमा के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति ऊ मिन आउल हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर

0: और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ओमी नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
2: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावरचंद गहलोत से मिले, स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। AICC महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रूपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और

0: विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमरीका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिनाओ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। किसान की बात लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं मनजीत कौर और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अरविंद कुमार का प्यार भरा नमस्कार। तो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पी के सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो पूसा नई दिल्ली से। और आज का जो हमारा विषय है वो है पॉली हाउस में सब्जियों की खेती की तकनीकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अरविंद, क्या कहना चाहेंगे? हर बार हम नया नया विषय लेकर आते हैं, तो आज का विषय के बारे में आप क्या कहेंगे?
2: जी हाँ, नई तकनीक और नई विषय हमारे हर कार्यक्रम में रहते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य हमारे किसान बहन भाइयों की जो लागत है उसको कम करना, उत्पादन को बढ़ाना और खेती को और ज्यादा अधिक विस्तार देना और बेहतर बनाना। पॉलीहाउस खेती के बारे में आज बात करेंगे, उसमें तकनीक हमारी मुख्य रूप से रहेगी। आमतौर पर खुले आसमान के नीचे जो हमारी खेती होती रही है और लगभग सभी जो मुख्य खेती उसी की तरह होती है, लेकिन कुछ एक ऐसी तकनीक भी है जिनकी वजह से आपकी खेती बहुत बेहतर होती है, लंबे समय तक आप उससे उत्पाद ले सकते हैं। और उनमें लेकिन कुछ तकनीकें हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। इसी सबको एक्सप्लेन करने के लिए, आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए, जैसा कि मंजीत ने बताया, डॉक्टर पी के सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम।
3: धन्यवाद अरविंद जी।
2: जी हाँ, डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता फोन करके भी सवाल पूछेंगे और हम भी आपसे सवाल पूछेंगे। और हमारे श्रोता कैसे सवाल पूछेंगे मंजीत, वो आप एक बार नंबर उन्हें जरूर बता दें।
1: बिल्कुल। और जितने भी किसान भाई बहन उत्सुक है कुछ जानने के लिए, कुछ पूछना चाहते हैं, तो सीधे हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको डायल करना होगा 0112342108 और दूसरा नंबर है 0112342108। और उससे पहले हम हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर पी के सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है, सर जानना चाहेंगे कि पॉली हाउस सबसे पहले क्या है, उसमें सब्जियां तो उगेंगी उगेंगी, कौन कौन सी सब्जियां हैं, उसमें विस्तार से बात करेंगे। जो हमारे श्रोता है वो जानना चाहेंगे और उत्सुक है ये जानने के लिए कि पॉली हाउस है क्या चीज।
3: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने मंजीत। जब पॉली हाउस की हम बात करते हैं तो पॉली हाउस एक ऐसी संरचना होती है जिसमें कि आप वातावरण को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। और ये कई तरह के होते हैं, एक तो होता है पूर्णतया वातानुकूलित और एक होता है पूर्ण रूप से वायु द्वारा संवाहित, जिसको कहते हैं हम नेचुरली वेंटिलेटेड, प्राकृतिक रूप से। और उसके अलावा इसके अंदर और सारी भी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, जैसे नेट हाउस हो गया, लो टनल्स हो गया, वॉक इन टनल्स हो गया। तो जो भी किसान भाई इसको करने के इच्छुक होते हैं, तो जब शुरुआती दौर होती है तो हम कहते हैं कि जो छोट कम से कम लागत की, जैसे कि लो टनल्स हैं जिनमें लगभग 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर का खर्चा आता है, तो वहां से शुरू करें। उसके बाद वो फिर वॉक इन टनल्स पे जाएं, उसके बाद नेट हाउस लगाएं और उसके बाद फिर वो जो पूर्णतया वातानुकूलित पॉली हाउस है उस पे जाएं। और जहां तक आपने कहा कि इसमें कौन कौन सी फसलें लगती हैं, तो जो मुख्य रूप से इसमें हम टमाटर, चेरी टमाटर, शिमला मिर्च और बिना बीज वाले खीरे का उत्पादन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा परागण होता है, बाहर आप देखते हैं जो खुले खेत में, तो वहां परागण करने के लिए मधुमक्खी है या घरेलू मक्खी है, उसके अलावा और अन्य तरह के कीट जो है वो मौजूद रहते हैं। लेकिन पॉली हाउस चूंकि एक तरह से क्रिटिकल केयर यूनिट की तरह होता है, तो वहां पे कोई ऐसे कीट मक्खियां नहीं होती हैं, तो पॉलिनेशन नहीं हो पाता। तो या तो ऐसी फसलें हम लगाते हैं जो उभयलिंगी होती हैं, जिनमें मतलब फूल नर और मादा एक ही फूल में होते हैं, और दूसरे केवल मादा पुष्प, जैसे हमने कहा कि गाइनोसियस कुकुम्बर्स हैं बिना बीज वाले खीरे, तो उनमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे ही अपने आप ओवरी डेवलपमेंट हो जाता है और फल लग जाता है। इसके अलावा अभी जल्दी ही कुछ जैसे गाइनोसियस खीरे की बात की, ऐसे ही हमारा एक बैंगन की किस्में हैं, जबकि वो अभी तक बीज जो उनके हैं वो प्राइवेट कंपनीज द्वारा ही दिए जा रहे हैं, उसमें भी परागण की आवश्यकता नहीं होती है। और स्पेशलिटी मेलन्स जो हैं, खरबूज, जिनको खरबूज या तरबूज कह सकते हैं, तो उनकी भी कुछ किस्में हैं जो पॉली हाउस के अंदर लगाई जा सकती हैं। तो जब किसान भाई ऐसा करते हैं कि उन्हें लगाना है, तो वो पहले सोच लें कि उनके

0: क्षेत्र में किस तरह की फसल की मांग है और उस मांग के हिसाब से वो फसल का चयन करें।
1: जी हाँ, ये एक वातावरण नियंत्रण की आपने बात कही।
0: जी जी,
1: अभी जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में तो अधिकतर रहती ही है, अभी जो मौसम है वो काफी गर्म है, तो कौन कौन से क्षेत्र आपके हिसाब से बेहतर रहेंगे और क्या ये पूरे साल भर हम लगा सकते हैं या फिर गर्मी है सिर्फ सर्दी से बचाव के लिए है? तो मुख्य अंतर मैं जानना चाहता हूं कि एक सामान्य खेती में और
0: जी,
1: इस पॉलीहाउस में मुख्य रूप से किसान को क्या फायदा होगा।
0: देखिए, एक तो ये है कि पॉलीहाउस में जब आप खेती करते हैं तो आप ऑफ सीजन वेजिटेबल्स की भी उत्पादन ले सकते हैं। तो ऑफ सीजन से मतलब मेरा इस समय तो नहीं है, क्योंकि इस समय जो फसल जितने भी पॉली हाउस में है वो लगभग खत्म हो रही हैं। अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ दें तो जो हमारा उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र है वहाँ पे पॉली हाउस की तैयारी चल रही है कि वो अपनी फसल खत्म हो रही है और नए फसल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में जहाँ पे वातावरण थोड़ा ठंडा है वहाँ पे अगेती खेती कर सकते हैं। तो अभी तो है ये है कि जो जिन लोग किसान भाइयों के हमारे पॉली हाउसेज हैं उनमें से जो पुरानी फसल के अवशेष हैं उनको बाहर निकालें, उसकी साफ सफाई करें और फिर उसे एक इसमें एक शब्द होता है सोलराइजेशन जिसको हम कहते हैं, क्योंकि एक जो जमीन में यहाँ कीट पाया जाता है जिसको नेमेटोड कहते हैं उसके लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इस समय खेत की पॉली हाउस की जुताई करके उसमें पानी लगाकर और उसे चारों तरफ से बंद कर देना चाहिए और ताकि जो सोलराइजेशन की प्रक्रिया है वो पूरी हो और जो आपका पॉली हाउस है वो एक तरह से सैनिटाइज हो जाए।
1: जी हाँ, इसमें लागत भी एक मुख्य रूप से एक वजह रहती है। आपने बोला कुछ ही सब्जियां और हम इसमें ले सकते हैं,
0: जैसे
1: बिना बीज वाले खीरे हैं, चेरी टमाटो है या शिमला मिर्च है, और उसकी उत्पादन के लिए उसकी मांग बहुत अच्छी होनी जरूरी है, लागत इसलिए मुख्य कारण आता है। तो लागत और उत्पादन में क्या अंतर आएगा अगर हम इसमें पॉलीहाउस में सब्जियां उगाएं और या फिर इसके अलावा हम सामान्य रूप से अगर इसको हम लोग खेत में उगाते हैं तो उसका क्या अंतर रहेगा?
0: देखिए, जब आप पॉलीहाउस में सब्जियां उगाते हैं तो जो भी फसल आप उगाते हैं एक तो उसकी जो उत्पादन है वो लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा हो जाता है। दूसरा जो उत्पाद, एक तो आपकी उत्पादन और उत्पादकता बढ़ गई, दूसरा जो उसकी क्वालिटी है वो जो बाहर हम लगाते हैं उससे क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, और तीसरा जो है कि आपको लंबे अवधि तक, जैसे जो खुले खेत में आप टमाटर की खेती करते हैं तो लगभग 3-3.5 महीने में फसल ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब पॉली हाउस में खेती करते हैं तो लगभग वो 10 महीने तक चलती है। खीरे की आप 3 फसलें ले सकते हैं या कुछ किसान भाई तो 4 फसलें भी ले लेते हैं, क्योंकि खीरा जो बाहर है वो 3 महीने में ख़त्म हो जाता है और पॉली हाउस के अंदर कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो इस तरह से मैनेज करते हैं कि वो 4 फसलें ले देते हैं। और अगर मोटा मोटा देखें तो खीरे की फसल सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि लगभग जो उन्हें बाजार का भाव है 20 से 25 रुपये के बीच का प्रति किलो भाव उनको मूल्य मिल जाता है। और इसी तरह कैप्सिकम का देखें, जो कलर्ड कैप्सिकम है, लाल और पीले शिमला मिर्च हैं, तो उनकी मांग बहुत ज़्यादा होती है शहरों के आसपास। तो जो बड़े शहरों के आसपास किसान खेती करते हैं तो अंदर जब आपको शिमला मिर्च लगाते हैं तो उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी तरह की होती है, बाहर लगाते हैं तो उसमें बहुत फर्क होता है अंदर बाहर के दोनों में। दूसरा कि आपका सीजन जो है वो प्रोलॉन्ग सीजन, मतलब काफ़ी लंबे समय तक आपको फसल मिलती रहती है और उत्पादकता आपकी कई गुना बढ़ जाती है। तो ये कुछ अंतर है। इसके अलावा जो हमने कहा कि जैसे ऑफ सीजन वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो उत्तर भारत में अगर आप देखें नवंबर से फरवरी तक का पूरा ठंड से ग्रसित होता है, तो उस समय हम नवंबर के महीने में पौध बनाते हैं, चाहे वो आप टमाटर हो, शिमला मिर्च हो या कद्दू वर्गीय फसलें हैं, अधिकतर कद्दू वर्गीय फसलें लगाते हैं। और आप चंडीगढ़ से चाहे लुधियाना की तरफ जाएं, आप चाहे सोलन की तरफ जाएं, कहीं की इस तरफ उधर जाते हैं, जो भी चंडीगढ़ से रास्ते उन पे आप जाएंगे तो आपको कई 100 किलोमीटर में आपको ऐसे लगेगा कि खेतों में कोई सफ़ेद चीज बिछी हुई है, तो वो कुछ नहीं, वो लो टनल्स होती हैं और किसान भाई उनके अंदर अपनी फसलें लगाते हैं और जैसे ही जनवरी में थोड़ा तापमान ऊपर जाता है वो उनको खोल देते हैं, तो उनकी जो फसल है वो लगभग 35 से 40 दिन जो नॉर्मल खेत होता है उससे पहले आ जाती है बाजार में। आप देखें टिंडा सबसे पहले पंजाब से आता है, तो अधिकतर वो लो टनल्स में लगाया हुआ टिंडा होता है या लौकी होती है, कद्दू होता है या खीरा होता है, तो उसकी उन्हें जो अच्छी कीमत बाजार में मिलती है।
1: जी, अब हम डॉक्टर साहब तकनीक के ऊपर आना चाहेंगे, हमने काफी कुछ इसमें जाना है पॉली हाउस के बारे में कौन सी लगाए, अब वो कौन सी तकनीकें हैं जिनको इस्तेमाल हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए अगर वो पॉली हाउस में खेती करना चाहते हैं।
0: देखिए, अगर पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले तो जो किसान हमारे हैं वो प्रशिक्षण जरूर लें। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो हमारा सीपीसीटी है, सेंटर फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, तो वो समय समय पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराते रहते हैं। इसके अलावा प्रत्येक जिले में हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो लोग भी प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, तो किसान भाइयों को वहां जाकर पहले इसके बारे में पूरा प्रशिक्षण ले लेना चाहिए और लगाने के लिए उन्हें अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इस पे जो केंद्र सरकार है वो 50% अनुदान देती है। इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारें 10% से लेकर 25% तक, अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग तरह का अनुदान देती हैं, तो इसके बाबत उन्हें जानकारी जिला उद्यान अधिकारी से प्राप्त हो सकती है।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं इस समय पॉली हाउस की, और अभी जो समय हो चुका है लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जी हाँ, एक बार फिर हम अंतराल के बाद वापस हैं और हम चर्चा कर रहे थे पॉली हाउस की खेती के बारे में, मगर उससे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि खरीफ सम्मेलन जो कि 2 दिन तक जो सम्मेलन दिल्ली के नास कॉम्प्लेक्स के अंदर चला, जिसके अंदर हमारे जो कृषि मंत्री है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर ऑफ इंडिया श्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में ये जो 2 दिवसीय जो सम्मेलन है उसका आयोजन हुआ, जिसके अंदर हमारे गवर्नर जो कि गुजरात के गवर्नर हैं वो भी मौजूद थे और इसके अलावा सभी प्रदेशों के कृषि मंत्री यहां पर मौजूद थे और गहन चिंतन हुआ, समस्याओं पर बातचीत हुई और बहुत सारी ऐसी बातचीत हुई जैसे कि हमें खेत बचाना है और जो कि हम रसायन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको हम जो खेत देना वो फर्टिलाइजेशन जो हो रही है उसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल का यूज हो रहा है उसको हमें कम इस्तेमाल करना है। तो उस पर विस्तार से जो हमारे कृषि मंत्री है क्या कहते हैं आइए सुनते हैं।
4: मुझे बताते हुए खुशी है कि अपनी खरीफ की फसल 2026 की खरीफ की फसल के लिए 173 लाख क्विंटल की जरूरत है और उपलब्ध हमारे पास 192 लाख क्विंटल, तो जो जरूरत है उससे 11% ज्यादा बीज की उपलब्धता आज हमारे पास है। राज्यों की जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से राज्यों को बीज का आवंटन किया गया है और राज्य समय पर बीज उठा ले और खरीफ के पहले किसानों तक बीज पहुंच जाए इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। एक हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, अभी निश्चित नहीं है लेकिन अल नीनो के कारण अगर देर से बारिश आई, बीज में कुछ गैप हो गया तो उसकी तैयारी पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है और 1,74,000 क्विंटल बीज का एक राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया है। तो अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां कभी बनती है कि किसी बीज विशेष की जरूरत है या अतिरिक्त बीज की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए भी हमने पूरी तैयारी की है, तो बीज की उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसकी हमने कोशिश की है। एक फार्मर आईडी बनाने पर हम लगातार जोर दे रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी है राज्यों के साथ जो बात हुई है अब तक 9,76,00,000 फार्मर आईडी हमारे बन चुके हैं और इन फार्मर आईडी का फायदा ये होगा कि अलग अलग किसानों को योजनाओं का लाभ के लिए अलग अलग पेपर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमको भी जैसे अब खाद का वितरण करना है तो किसानों को ही खाद जाए तो फार्मर आईडी में उनका सारा विवरण है, उनके पास कितनी जमीन है, सदस्य कितने हैं, कौन सी संपत्तियां हैं, तो उसके आधार पर सही किसान को सही मात्रा में खाद के वितरण से लेकर बाकी सुविधाएं हम उपलब्ध करा पाएंगे। एक और तथ्य जिसकी तरफ हम लोगों का ध्यान गया है, जिस पर काम कर

0: 50,000 तक है। ये बताने का तात्पर्य कि हम लोगों ने पूरा विश्लेषण किया और देखा कि कई राज्य में क्रेडिट का प्रवाह कम है, तो बैंकों के साथ बैठक करके हम इसको उन राज्यों में भी पर्याप्त मात्रा में लोन उपलब्ध हो कृषि कार्यों के लिए, ताकि वो खेती में इनपुट डालने के लिए पर्याप्त धनराशि जुटा सकें। इस पर भी हम लोग काम करेंगे। एक बड़ी संख्या में टैलेंट फार्मर है जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, लेकिन जो लीज पर या बटाई पर जमीन लेके खेती करते हैं, इस पर भी व्यापक पैमाने पर राज्यों से विचार विमर्श हुआ था। कुछ राज्यों ने उनको भी योजनाओं का लाभ देने की एक सिस्टम बनाया है, तो उस सिस्टम पे भी पूरे अखिल भारतीय स्तर पर विचार करके उनको भी, क्योंकि वास्तव में किसान है, खुद खेती करते हैं, दिनों रात मेहनत करते हैं, उनको भी आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों ने अलग अलग तरीके की योजनाएं और तरीका बनाया पहचानने के, तो उस पर भी पूरे देश में काम किया जाएगा। फसल बीमा योजना का लाभ व्यापक पैमाने पर किसानों को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ गैप्स थे जिनकी पूर्ति आवश्यक है, उस पर भी ध्यान देंगे। एक तो ये है कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के जो परिणाम है वो परफेक्ट और ठीक आए। एक हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो अंदाज लगाते हैं क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में, एक तरह से परफेक्ट आंकड़े आते हैं, वो भी सही आए, उस पर राज्यों ने अलग अलग तरह के विचार रखे, तो उस पर भी एक टीम बना के हम काम करेंगे। लेकिन एक तो प्रीमियम जो जमा करना होता है राज्य को, कई बार उसमें देरी के कारण किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ देर से मिल पाता है, और इसलिए इस बार ये तय किया था कि अगर बीमा कंपनी देर करेगी 21 दिन से ज्यादा, औपचारिकताएं पूरी होने के बाद किसान को क्लेम के भुगतान में तो 12% ब्याज उन पर भी लगेगा, और राज्य भी अगर देर करेंगे तो 12% ब्याज उनको भी देना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इसमें प्रीमियम का भुगतान समय पर हो जाए और दिक्कत ना आए, किसान को फसल बीमा योजना का लाभ समय पर मिले, और एक व्यापक पैमाने पर किसानों में जन जागरण के लिए खेत बचाओ अभियान 1 जून से, पहले हमने सोचा था 15 जून तक, लेकिन सबकी राय ये थी कि 1 महीने कम से कम इस अभियान को चलाया जाए। खेत बचाओ अभियान में एक तो उर्वरकों का संतुलित उपयोग, अनावश्यक उपयोग ना हो, सॉयल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश है उसके हिसाब से किसानों को एजुकेट करने की कोशिश होगी कि संतुलित उपयोग जितना आवश्यक है उतना करें, एक चीज। दूसरे, प्राकृतिक खेती की तरफ भी धीरे धीरे ध्यान दें, उस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। लगभग 20 लाख हेक्टेयर जमीन में अभी जो आंकड़े हमारे पास आए प्राकृतिक खेती अभी हो रही है, 8 लाख से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती जिन्हें रजिस्ट्रेशन करवाया है, बाकी और की मैं बात नहीं करता, उस पर हमारा काम चल रहा है।
1: और इसके अलावा गुजरात के जो गवर्नर है श्री आचार्य देवव्रत जी ने अपनी वचन जो है आकाशवाणी से सांझे की, और क्या कहते हैं आइए सुनते हैं।
2: ये जानना चाहेंगे 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन यहाँ दिल्ली में किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे किसान भाई बहन?
3: निश्चित रूप से भारत सरकार किसानों के प्रति बहुत गंभीर है। जहाँ किसानों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं, उसी के साथ साथ अब खरीफ का सीजन आ रहा है, इसलिए भारत के माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज जी चौहान ने दिल्ली में भारत के समस्त प्रांतों के कृषि मंत्री आमंत्रित किए, कृषि वैज्ञानिक आमंत्रित किए और किसानों को भी आमंत्रित किया है, और उनके बीच में बातें सब रखी हैं कि हम आने वाली खरीफ फसल को अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हैं और उनमें रासायनिक खाद कम से कम कैसे डालें और प्राकृतिक खेती की ओर देश के किसानों को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रेरित करें, और इस दिशा में अगला 1 महीना पूरा कृषि विभाग गांव-गांव में जाएगा, किसानों की संगोष्ठियां करेगा और लोगों के लिए जहर मुक्त भोजन कैसे प्राप्त हो जिससे लोगों का स्वास्थ्य बचे, पर्यावरण बचे, पानी बचे, धरती माता का स्वास्थ्य बचे, इस दिशा में बड़ी गंभीरता से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी किसानों के सुखद भविष्य की दिशा में मिलके काम कर रहे हैं।
2: एक अंतिम सवाल, खेत बचाओ एक बहुत बड़ी समस्या भी है, तो हमारे किसानों को

0: इसे किस तरीके से जूझना चाहिए?
1: निश्चित रूप से खेत बचाओ का अभिप्राय यही है कि हमारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बचे, उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ जमीन मिल सके। ये रासायनिक खादों से धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बहुत बुरी तरह से गिरा है और प्राकृतिक खेती उस ऑर्गेनिक कार्बन को नियमित रूप से बढ़ाने का काम करती है। इससे धरती माता बचेगी और धरती का स्वास्थ्य होगा तो खेती अपने आप बचेगी।
0: आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
2: तो ये तो थे गुजरात के गवर्नर और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री श्री गैब्रियल ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा। अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री श्री गैब्रियल डी वांगसू ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा।
3: सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारा जो खरीफ कैंपेन का जो हमारा कॉन्फ्रेंस है, इसमें खास करके ग्राउंड लेवल रियलिटीज को जांचने का, परखने का, उसको सॉल्यूशंस निकालने का। सबसे बड़ी बात है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा कहाँ पे हमारा कमजोरी है, इसे सबका जांच पड़ताल करके देश के लिए सबसे अच्छा क्या बेस्ट वे ऑफ क्या होगा, ये सब सॉल्यूशंस लेके आए हैं। और अच्छी बात यह है कि इस बार दो बार ये हमारा जो है दो दिन का ये हमारा ये कॉन्फ्रेंस है। फर्स्ट डे में क्या हो गया कि हमारा जितना भी ऑफिसर्स गण के साथ बैठक हुआ है, थीमेटिक पॉइंट पे डिस्कशन किए इन लोगों ने, सारा चीज को परखने का कोशिश किया और अंततः एक हमारे लिए एक रोड मैप तैयार होगा। और सबसे बड़ी बात है जो भी हमारा ग्राउंड रियलिटीज का जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशंस निकाल के, और सबसे बड़ी बात है हमारा जो हमारा कृषि मंत्री है शिवराज सिंह जी चौहान जी जो है वो इतना दिल लगा करके पूरा ग्राउंड रियलिटीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देश का जो भी है देश के लिए अच्छा एक दिशा, अच्छा दिशा तय करने का हमारे लिए जो रोड मैप तैयार करके देता है, हमेशा प्रोत्साहन करते हैं, हमेशा गाइड करता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमें भी एक उनसे एक अच्छा गाइडेंस मिलने का हमें मौका मिल जाता है। और आज जो सबसे बड़ी बात है कि सर हमारा जो गुजरात का जो हमारा गवर्नर साहब आए, उन्होंने हमारे लिए जो नेचुरल फार्मिंग को लेकर के काफ़ी ढेर सारे बातें बताई, जिससे क्या होता है स्टेट्स को एक हमेशा प्रोत्साहन मिलता है। और ये इस प्रकार का कॉन्फ्रेंस में हमेशा एक दूसरे को मिलकर के हम अपना जो बातों को रखने का हमें मौका मिलता है, ये एक सबसे बड़ा मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक उपलब्धि है हमारे लिए।
0: और आपको इस समय सभी किसान सुन रहे हैं तो किसानों के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे?
3: सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्र सरकार जो है हर राज्य का जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार है। और हम पूरा एक जो केंद्र सरकार है रियली इज कमिटेड टू टेक केयर ऑफ ऑल द इश्यूज, टू टेक केयर ऑफ ऑल द कंसर्न्स ऑफ आवर फार्मर्स, ये सबसे बड़ी बात है एक्चुअली। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि पहले नहीं हुआ था भी होगा, लेकिन एटलीस्ट ये मैं इस बार जो महसूस कर रहा हूँ, दो साल हो गए कि हर समस्या को तुरंत, और सबसे बड़ी बात है कि निर्धारित समय में ही सब कुछ सॉल्यूशन हो जाता है, इससे और बड़ा चीज क्या हो सकता है।
2: तो ये तो थे कृषि मंत्री। और अब हम फिर से लौटेंगे हमारा जो आज का विषय है किसान की बात में, पॉली हाउस में सब्जियों की खेती। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर पीके सिंह, प्रधान वैज्ञानिक राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब वापस आते हैं, पॉली हाउस की खेती के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो किन किन सावधानियों पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए जब हम पॉली हाउस में खेती करते हैं, तो कौन कौन सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए?
4: जी बिल्कुल मंजीत, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। जैसे इस समय की बात है जो हमारा मई खत्म हो रहा है, तो जो फसलें खत्म हो चुकी हैं, किसान भाइयों को चाहिए कि उनके अवशेषों को बाहर निकाल दें और पूरे अपने पॉली हाउस को सैनिटाइज करें। और जब वो पहली फसल जुलाई या अगस्त में जब भी प्लांट करेंगे, तो उसके लिए जो फसल उन्होंने सोची है, चाहे टमाटर है, शिमला मिर्च है या खीरा है, जो भी है, तो उसकी नर्सरी के लिए बीज का इकट्ठा कर लें बीज को, और उसके बाद उसकी नर्सरी की तैयारी करें। क्योंकि पॉली हाउस में जब हम लगाते हैं तो जो उनकी फसलें हैं वो अलग होती हैं और खुले खेत की फसलें अलग होती हैं, और फसलों के साथ साथ उनकी प्रजातियां भी अलग होती हैं। जैसे हम टमाटर की बात करें तो जो खुले खेत में फसलें लगती हैं वो अलग, उनकी प्रजातियां अलग हैं, लेकिन जो पॉली हाउस में हम लगाते हैं तो उसमें हमारी पूसा टोमेटो प्रोटेक्टेड वन है, पूसा रक्षित है, पूसा कॉकटेल है, और उसके अलावा जो हमारी चेरी की टमाटर की किस्में हैं उसमें है पूसा चेरी वन है, पूसा गोल्डन चेरी टोमेटो नंबर टू है, ये पीले रंग की होती है और स्पेशलिटी सेगमेंट की है, तो बहुत सारे इसमें विटामिन्स और उनकी

0: दिखता है, तो इसका रेट काफ़ी अच्छा मिलता है, स्वीटनेस काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा पूसा हाइब्रिड चेरी नंबर वन है, तो उसको ले सकते हैं। अगर हम खीरे की बात करें तो खीरे में पीसीसी वन पूसा कुकुम्बर पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर वन जो है वो उसको आप ले सकते हैं। और इसके अलावा पंजाब खीरा नंबर वन है जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की है, तो ये पॉली हाउस में लगाने की कुछ बड़ी उपयुक्त किस्में हैं जिनका कि आप बीज ले सकते हैं। उसके बाद जब आप नर्सरी तैयार करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसका ध्यान रखें कि इसकी नर्सरी हम संरक्षित संरचनाओं में ही तैयार करें। और क्योंकि जो बीमारी आती है, जो वायरस जनित रोग आते हैं, वो सफ़ेद मक्खी से ट्रांसमिट होते हैं, और सफ़ेद मक्खी खुले खेत में अगर आप नर्सरी तैयार करेंगे तो वहाँ उसको इन्फेक्ट करती है नर्सरी को, और वो इन्फेक्टेड नर्सरी फिर जो है संक्रमित नर्सरी आपके पॉली हाउस के अंदर जाती है, तो वो पूरा पूरा आपका पॉली हाउस संक्रमण से भर जाता है। तो इसलिए प्लग ट्रेज का इस्तेमाल करें, और जब उसमें हम बिना मिट्टी के नर्सरी बनाते हैं, मृदा रहित सॉयल को इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम कोकोपीट परलाइट और बर्मिकुलाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब इन तीनों जो कोकोपीट परलाइट और बर्मिकुलाइट है, इसको हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लेते हैं, मतलब जो भी आप बाल्टी या तसला कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आप एक उदाहरण मान लें कि अगर 3:1:1 अगर आपने 3 बाल्टी कोकोपीट लिया तो 1 बाल्टी परलाइट और 1 बाल्टी बर्मिकुलाइट आपको लेना है, और उसको आप मिक्सचर बना लें। लेकिन जो कोकोपीट होता है ये 5 किलो की एक ब्रिक आती है, सिल्ली सी आती है, और इसको आप रात को पानी में डाल देंगे तो ये 15 किलो की हो जाती है, सुबह इसको पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। और कभी भी इसको अकेले इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें फिर जड़ों में जो एरेशन होता है वो नहीं हो पाएगा, और एकदम से ये चिपक सी जाती है, इसलिए परकुलाइट और बर्मिकुलाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों रॉक साल्ट हैं, इनमें कोई बहुत पोषक तत्व तो नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें बुवाई करने के बाद आप इसको ढक देते हैं, और फिर जब समय के अनुसार, जैसे खीरा जो है वो 3 दिन में उग जाता है, और टमाटर और शिमला मिर्च या दूसरे बैंगन जो हैं ये 4-5 दिन लगाते हैं, तो उस हिसाब से इन ट्रेज को खोल देते हैं, और फिर उन पे जो घुलनशील उर्वरक होते हैं उनका हम स्प्रे करते हैं। तो जो नर्सरी ग्रेड होता है वो 16:16:16 एनपीके इफको का आता है, आप उसको ले सकते हैं। और उसके बाद जब खेत में ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो उसके बाद 18:18:18 या 20:20:20 का एनपीके का ग्रेड होता है, तो उसको आप ले सकते हैं। दोनों ही ये इफको हमारी जो कंपनी है वो प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको भी ले सकते हैं। और जब आप फसल को खेत में ट्रांसप्लांट कर देती हैं पॉली हाउस के अंदर, तो वहां जरूर ध्यान रखें पीले और नीले स्टिकी टेप्स लगाएं, ताकि जो भी अगर वहां कोई कीड़ा मकोड़ा आता है तो आप उसको मॉनिटर कर सकें। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो किसानों को रखनी चाहिए। और गेट जो होता है इसको, वो हमेशा बंद रखें, जब आप आए जाएं तभी उस समय ही गेट को खुला रखें। जी
1: बिल्कुल, और बेहद ही अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पॉली हाउस के अंदर सब्जियां उगाना आसान बात भी नहीं है, और एक जो अहम जानकारी जो हर बार की तरह हमारे के इस प्रोग्राम से हमारे जो किसान हैं वो सुनते हैं और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल, प्रस्तुति तुषार पराशर, मुझे मनजीत कौर और मेरे साथ मेरे सहयोगी अरविंद कुमार को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैचिक की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा यह अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, यह अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और रक्षा सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल रहते हैं तो अमेरिका की सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांघिला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमरीका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्धविराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर विचार किया गया। सिचुएशन रूम में हुई यह बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर शुरू हो रहा है वो शो जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इसमें लेते हैं हम आपके मेल्स, आपके मैसेजेस और सुनवाते हैं आपको आपकी फरमाइश के गीत। यानी समय है मन भावन का, जिसे लेकर आपके साथ मैं हूं रजनी। आप चाहें तो आप भी अपने जो मेल हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं, fmgoldairdelhi@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753, यानी कि 9868868753। और अभी सबसे पहला जो संदेश मुझे दिख रहा है ये हमें भेजा है बटीडा रोड मंडी मर्डी डबवाली से, और भेजने वाले हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, और ये सभी सुनना चाहते हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गीत। सुनवाते हैं आपको, आवाज है लता मंगेशकर की।

और आगे बढ़ते हुए अगला संदेश लेते हैं संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भारत मक्कर और कर्ण साहनी, संदेश हमें कमल साहनी संदेश भेज रहे हैं पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से। इनके बाद जो संदेश हम तक पहुंचा है वो है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर। और इनके बाद जो संदेश दिख रहा है मुझे ये हमारे पास आया है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू कश्यप, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें भेजा है सागर लखनदौन मध्य प्रदेश से, लखनादौन मध्य प्रदेश से भेज रहे हैं संदेश लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे और रिमझिम चौबे और साथ में है सक्षम चौबे। और ये सभी सुनना चाहते हैं अर्पण फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। तो लीजिए, आप तक पहुंच रहा है आपकी पसंद का गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, मैं जयश्री अरोरा आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो की लत मुझे बिल्कुल बचपन से पड़ी थी। मेरी माताजी रेडियो प्रेस सुनने की बहुत शौकीन थी। उसके बाद इत्तेफाक से मैं रेडियो आर्टिस्ट भी बन गई और प्रोग्राम किए, इतना कुछ सीखा। बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स निर्मला अग्रवाल, दीनानाथ जी, सत्येंद्र, शरद, शैलेंद्र जी, सुशील बैनर्जी, कमल दत्त, सुदर्शन जी, दानिश इकबाल, इन सबके साथ काम करके इतना कुछ सीखा। और जब टेलीविजन के

0: मुझसे पूछते हैं कि आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, तो मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ ये आकाशवाणी की देन है। तो आज इस उपलक्ष पर हम सब इतने खुश हैं, और तरक्की करे आकाशवाणी, और इस शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: पर्सनल लोन ऑफर
6: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
5: फ्री ट्रिप टू दुबई
6: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
6: तो क्या करूँ?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
6: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
7: आकाशवाणी FM गोल्ड पर जारी है आपका अपना मन भावन, जहां पर आप भेजते हैं अपने ईमेल्स और अपने संदेश, और साथ ही भेजते हैं अपनी फरमाइश के गीत, जो कि हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपके संदेश भी हम ले सकें और आपकी फरमाइशें भी ज्यादा से ज्यादा पूरी कर पाएं। अभी जो मेल मुझे दिख रहा है ये हमें कनॉट प्लेस दिल्ली से आया है, और भेजने वाले हैं माहिरा मलिक, हिबा, आयशा, जोया, जैनब, मरियम, इन सभी ने ये मेल भेजा है। साथ ही हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हमें भेज रहे हैं ईमेल। इनके बाद जो संदेश हमारे पास आया है वो है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और अगला जो संदेश है वो मिला है हमें दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से, वसंत कुमार सिन्हा, अजय, तनुश्री गुप्ता, बेबी अनविका रानी का। अगला जो पैगाम है वो मिला हमें भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, रोशन देवांगन, कुशला देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन का। और इनके बाद जो ईमेल हमारे पास पहुंचा है ये है ऊपरकोट मोहल्ला चुखुंडी बुलंदशहर से, और भेजने वाले हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निकत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। ये सभी सुनना चाहते हैं मनचली फिल्म का गीत, आवाज है किशोर कुमार की।
8: क्या हुआ?
9: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
8: अच्छा जी?
9: एक बहाना बन गया अच्छा।
8: अच्छा?

मोताला बाजार से हमें सुन रहे हैं बबलू ठेकेदार शेख शागिर, शेख वजीर और सोहिल शेख। इनके अलावा हमें मेल मिला है आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से, वैशाली शैलेश गवाणकर का, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी और प्रिंस एकांश गवाणकर का। अगला जो मेल हमारे पास आया है ये है किशोर नगर अमरावती के हीरामन शेंडे और शीला का, और सिद्धार्थ गोंदाने भी इनके साथ हैं। साथ ही हमें मेल भेज रहे हैं उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। इनके बाद हमें संदेश भेजने वाले हैं समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, अंकुर राघव गुप्ता। और साथ ही हमारे पास संदेश भेजा है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप। और ये सभी सुनना चाहते हैं ये वादा रहा फिल्म का गीत जिसे आवाज दी है आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

हमारा भी वादा है आपसे कि हम कोशिश करते रहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपके संदेश हम ले पाए, हालांकि जितना इजाजत वक्त देता है उतना ही कर पाते हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार का संदेश हमारे पास आया। इनके अलावा जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से हमें सुन रहे हैं। अगला संदेश भेजने वाले हैं कुम्भार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले और पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने का संदेश मिला। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने हमें मेल भेजा और इनके अलावा हमें सुन रहे हैं होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल इन ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म गीत का एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय गीत। आवाज है मोहम्मद रफी, आवाज है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार हैं। पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
1: As far as Operation Sindoor is concerned,
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेट अफसरों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम बेंगलुरू में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। श्री डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से चुने जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। महीने भर चलने वाली यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्यभर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमरीका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनियाभर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। इसके अलावा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। ये बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी का मुकाबला दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वान हो से जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला सेट 21-19 से जीतकर बढ़त हासिल कर ली है। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Karnataka Congress Legislature Party is meeting in Bengaluru to elect its new leader to succeed the outgoing Chief Minister, Mr. Siddaramaiah. Governor Thavarchand Gehlot has already accepted the resignation of Mr. Siddaramaiah, asking him to act as a caretaker until a new incumbent is chosen. Our correspondent reports that Mr. D.K. Shivakumar is likely to be formally elected as the new leader of the Congress Legislature Party. The 136 Congress MLAs have been asked to attend the CLP meeting. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived at Gaya in Bihar on a five-day visit to India. He visited the world-renowned Mahabodhi Temple in Bodh Gaya and offered prayers at the sacred Buddhist site. President Hlaing will meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar in New Delhi this evening. Tomorrow, the Myanmar President is expected to participate in Myanmar-India Business Forum. On Monday, President U Min Aung Hlaing will hold discussions with Prime Minister Narendra Modi. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan today bid farewell to military service after receiving a ceremonial Tri-Services Guard of Honour at the National War Memorial in New Delhi. The ceremony marked the culmination of his distinguished tenure as the country's top military officer. He also laid a wreath at the war memorial.
4: It's a matter of great honour for me to suffer and wait with the Tri-Services Guard of Honour. I thank the three services and headquarter IDS for it. With the conclusion of the Guard of Honour, I bid farewell to my colleagues in uniform, comrades in arms forever. I laid the wreath at the war memorial for the last time in uniform as a humble tribute to those who laid down their lives in the line of duty. This is symbolic of my transiting from uniform to a civilian life. I had a very satisfying and an excellent tenure.
3: Electronic and IT Minister Ashwini Vaishnaw today visited Loham in Surajpur in Greater Noida, which is producing sustainable critical minerals and advanced materials. Speaking to media, Mr. Vaishnaw said, lithium batteries and permanent magnets play a crucial role in several modern technologies, and Prime Minister Narendra Modi envisions that this should be manufactured in India and its technology should be developed domestically. He said, in alignment with this vision, a young startup named Loham has successfully developed a complex technology. The Directorate of Revenue Intelligence, DRI, carried out coordinated anti-narcotics operations in Keralam and seized substantial quantities of narcotic drugs and psychotropic substances. The Ministry of Finance said that over 24 kilograms of narcotic drugs and psychotropic substances have been seized in these operations from Kochi, Malappuram and Thiruvananthapuram under Operation Chakravyuh. The ministry added that five individuals, including key operatives involved in the trafficking networks, have been apprehended. In Bihar, seven people have been killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning strikes. Three fatalities were reported in Gaya, while Aurangabad recorded two deaths. One death each has been reported from Saran and Khagaria districts. Expressing grief over the tragic incidents, Chief Minister Samrat Chaudhary has announced an ex gratia grant of 4 lakh rupees each for the next of kin of the deceased. The IMD has said that atmospheric conditions are becoming increasingly favourable for the southwest monsoon to reach parts of Keralam and Tamil Nadu within the next 4 to 5 days. The monsoon has further advanced into areas of the Arabian Sea and the Bay of Bengal, as well as the Lakshadweep and Kanyakumari region. The IMD has forecast isolated heavy rainfall over Keralam and issued a yellow alert in 8 districts for today. Fishermen have been advised not to venture into the sea. In badminton, India's mixed doubles pair of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto lost to Japan's Sayaka Hubaro and Yuichi Shimogami in the semifinals of the Singapore Open tournament today. Meanwhile, men's doubles semifinal match is underway between Indian duo of Satvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty and South Korea's Seo Seung-jae and Kim Won-ho. And Hindi Patrakarita Divas is being observed today. The day is celebrated every year on this day to mark the publication of Udand Martan, the first Hindi newspaper in India, which was launched on May 30th in 1826 from Kolkata. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी एफएम गोल्ड आप सुन रहे हैं 100.1 MHz पर। हमने चुना है आपके लिए एक प्यारा सा गीत फिल्म राम और श्याम से। आवाज है आशा भोसले की, आइए सुनते हैं।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: अगला गीत सुनते हैं फिल्म किस्मत से। आवाज है मोहम्मद रफी की, आवाज है महेंद्र कपूर की।

0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए पुलिस अधीक्षक के 10 पदों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन आमंत्रित कर रहा है। तैनाती भारत में कहीं भी की जा सकती है। पात्रता मानदंड, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि के लिए देखिए एनआईए की वेबसाइट www.nia.gov.in। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र पंजाब परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय टाटा मेमोरियल केंद्र इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। चिकित्सा अधिकारी न्यूक्लियर मेडिसिन एक पद, चिकित्सा अधिकारी रेडियो डायग्नोसिस एक पद, चिकित्सा फिजिसिस्ट एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए, जबकि एक पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक अधिकारी SB ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक C न्यूक्लियर मेडिसिन एक पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B फिजियोथेरेपी एक पद अनारक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। तकनीशियन C नेटवर्किंग एक पद EWS वर्ग के लिए आरक्षित है। तकनीशियन C ऑपरेशन थिएटर एक पद अनारक्षित है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 11 जून 2026। विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट tmc.gov.in। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान वर्धा इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी प्रबंधन एवं व्यवस्थापन एक पद, भर्ती की विधि रहेगी सीधी भर्ती। शैक्षिक योग्यता है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अथवा MBA में मास्टर डिग्री या प्रबंधन के विषयों में मास्टर अथवा समकक्ष योग्यता। अनुभव रहेगा मास्टर डिग्री धारक उम्मीदवारों के लिए संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान की वेबसाइट www.mgiri.org। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन परिक्रमा के एक नए अंक में। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। हिंदी पत्रकारिता ने अपनी गौरवशाली यात्रा में समाज को जागरूक करने, लोकतंत्र को सशक्त बनाने और जन सरोकारों को प्रभावी अभिव्यक्ति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रकारिता का प्राथमिक कार्य लोगों को सटीक और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करना है। इस तरह पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इस विषय पर कार्यक्रम में आगे भी चर्चा होगी। फिलहाल प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं रेनू कटारिया। नमस्कार रेनू।
4: नमस्कार, हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग टू अस एंड यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। एंड एज सरफिरोजी हैज ऑलरेडी इन्फॉर्मड यू, आई एम रेनू कटारिया विद हर एंड वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया reports, capsules, tributes and much more, and all this over the next 30 minutes. So let's begin with the news headlines, Sarfirozi.

0: बिल्कुल रेनु, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार।
1: म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन ऑंग लैंग बिगिन्स हिज 5-डे विजिट इंडिया विजिट विद प्रेयर्स एट महाबोधि टेम्पल इन बोधगया बिहार।
0: कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज, बेंगलुरु में नए नेता का होगा चुनाव।
1: एटलीस्ट 7 पीपल किल्ड इन सेपरेट इंसिडेंट्स ऑफ थंडरस्टॉर्म्स रेन एंड लाइटनिंग अक्रॉस बिहार।
0: अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा।
1: एंड इन विमेन्स क्रिकेट, इंडिया टू टेक ऑन होस्ट इंग्लैंड इन सेकेंड T20 इंटरनेशनल ऑफ 3-मैच सीरीज इन ब्रिस्टल टुडे। And Sir Firozi, it is time for our segment Dateline India, in which we will be taking a look at the developments that are taking place at the national or global level. And today we are going to talk about the International Day of Potato and Hindi Journalism Day. So, Sir Firozi, aap ye bataiye, how often do we overlook the foods that shape our lives the most? The potato is a perfect example. It rarely takes center stage, yet it finds its way onto our plates almost every day.
0: बिल्कुल रेनू, अगर हम अपने दिमाग पर जोर डालें तो शायद हम रोज ही किसी न किसी रूप में आलू को कंज्यूम कर ही रहे हैं। और अपने श्रोताओं को भी हम कहें अगर वो भी सोचे कि आखिरी बार उन्होंने आलू कब खाया था, शायद शाम की चाय के साथ आलू से भरे समोसे खाए हों, या किसी ट्रिप पर क्रिस्पी फ्राइज शेयर किए हों, या हो सकता है किसी नुक्कड़ की दुकान पर चटपटी आलू चाट खाई हो।
1: जी,
2: सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा कांदा।
3: सुबह से
2: ना एक आलू बिका है,
3: ना कोई आलू बिका है,
2: ना बिका है आधा कांदा।
3: भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप?
2: फिल्म लाइन
0: में अपना।
1: Okay, so you know the dialogue on this very potato in our Bollywood movies do makes it laugh. Yet behind this humble vegetable lies a remarkable story, one that stretches across ancient civilizations, global trade routes, scientific innovation, and the ongoing challenge of ensuring food security for millions around the world. Every year, the world observes the International Day of Potato, a day dedicated to one of the most widely consumed crops on earth. At first, it may sound surprising. A whole International Day for Potatoes. ये सोचने में वाकई हमारे को बड़ा वो लगता है यार, आलू के लिए आपने एक पूरा इंटरनेशनल
0: डे रखा हुआ है,
1: डेडिकेटेड डे रख दिया है। बट यू नो वॉट, वेन वी लुक वेरी क्लोज टू इट, it begins to make perfect sense, Sir Firozi. This small tuber has been feeding people for nearly 8,000 years. Just imagine.
0: बिल्कुल रेनू, और अगर इतिहास में पीछे चलें और बात करें आलू की, तो इसकी कहानी शुरू होती है दक्षिण अमेरिका के एंडीज पहाड़ों की ऊंचाइयों से, जहां आधुनिक खेती के अस्तित्व में आने से बहुत पहले वहां के लोगों ने आलू की किस्मों को सबसे पहले उगाया। और रेनू, उनके लिए जैसे कि हम भी सोचते हैं, हमारे लिए भी आज आलू सिर्फ खाना नहीं रह गया, हम कई फॉर्म्स में उसको इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी आलू सिर्फ खाना नहीं था, ये उनके वजूद, संस्कृति और विरासत का एक मिला जुला रूप था। उन पहाड़ी इलाकों से आलू ने लंबा सफर तय किया और 16वीं सदी में पहुंचा यूरोप, जहां धीरे धीरे लाखों लोगों का खाना बन गया आलू।
1: एंड यू नो व्हाट, इट हैज इन्फ्लुएंस्ड, इट्स इन्फ्लुएंस हैज स्ट्रेच्ड इवन फर्दर, सर फिरोजी। इन चाइना पोटेटोज हेल्प रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फूड शॉर्टेजेस ड्यूरिंग डिफिकल्ट पीरियड्स, और हमने देखा भी है, वी हैव सीन सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, जब फ्लड्स वगैरह या ड्रॉट की कोई ऐसी होती है मारामारी, तो हमने देखा है कि एक आलू ही है जो सबसे ज्यादा घरों में नजर आता है, और वही बिकॉज उसमें स्टार्च भी होता है, उसमें और भी,
0: और कहीं ना कहीं बहुत कम एफर्ट्स लगते हैं आलू को उगाने में, इसलिए यूजुअली स्टोर करके लोग रख लेते हैं बुरे वक्त।
1: एग्जैक्टली, वो खराब भी नहीं होता है। See, so during wars and crises across different parts of the world, their ability to grow efficiently and provide substantial nutrition made them a lifeline for countless families.
0: इसके साथ ही इतिहास ने आलू के जरिए एक अहम सबक भी सीखा है। 1840 के दशक में आयरिश आलू अकाल इस बात की सबसे कड़वी यादों में से एक है कि जब एग्रीकल्चरल डायवर्सिटी खत्म हो जाती है तो क्या होता है। फसलों का कुछ सीमित किस्मों पर निर्भर रहना बहुत बड़ा खतरा पैदा करता है, और इसका नतीजा ये हुआ रेनू कि लाखों लोगों को इसके विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ा।
1: वेरी ट्रू सर फिरोजी, एंड द पोटैटो स्टोरी इज नॉट only about abundance.

0: जैसे कि आप बता रही हैं, इट इज ऑल्सो अबाउट रेजिलियंस, डायवर्सिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचर्स जेनेटिक वेल्थ. एंड स्पीकिंग ऑफ डायवर्सिटी, डिड यू नो देर आर मोर देन 5,000 पोटेटो वेराइटीज अराउंड द वर्ल्ड. 5,000.
1: Kamal.
0: Yes, you heard it right. Some are purple, some are red, some are tiny enough to fit into your palm, while others grow much larger. Each variety carries unique characteristics that help farmers respond to changing climates, pest and diseases. Aur ek aur baat main yahan par add karungi sir Firozi, hum jaise bahar दूसरे देशों में भी घूमने जाते हैं, सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट व्हेन यू आर गोइंग फॉर ग्रोसरी शॉपिंग और आप स्पेशली अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए जाते हैं, तो आई हैव सीन सर्टन वेराइटीज ऑफ पोटेटोज, वहां पे कम से कम 5-6 किस्म के पोटेटोज होते हैं कि ये आपकी सब्जी के हैं, ये आपके फ्राइज के हैं, ये आपके समोसे के हैं.
1: अगर इंडिया की भी बात करें तो हम भी अपने घर में देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर आलू की किस्म होती है जिसके सिर्फ पराठे ही बनेंगे.
0: exactly.
1: या कुछ पहाड़ी आलू होते हैं, उनकी अलग तरह से सब्जी बनती
0: है. कभी कभी तो ये भी पूछा जाता है वेजिटेबल वेंडर से कि ये आलू मीठा तो नहीं है, तभी हम लेंगे. जी
1: तो, और हमने जिक्र किया था कि आलू को कम जमीन और पानी का इस्तेमाल करके बड़ी मात्रा में उगाया जा सकता है और ये अलग अलग तरह के माहौल में भी उग सकता है. ये ग्रामीण और शहरी दोनों समुदायों में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है और लाखों छोटे किसानों के लिए आलू आमदनी और मौकों का भी एक जरिया है.
0: वेरी ट्रू, एंड दैट इज व्हाई 2026 इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो थीम हैव फोकस्ड नॉट ओनली ऑन फूड बट ऑल्सो ऑन लाइवलीहुड्स. इट सेज Where potatoes grow, livelihoods flourish, and very true. And perhaps one of the most remarkable things about potatoes is their ability to keep evolving. Today, scientists and innovators are finding new uses for them beyond the dinner table. Potato starch is being used to create environmentally friendly packaging materials.
1: Bilkul Renu, researchers aloo se bani cheezon se milne wale paramparik plastic ke tikao vikalpon ki khoj kar rahe hain. Aur kisne socha hoga Renu ki mash kiye hue aloo mein पाया जाने वाला वही तत्व आने वाले समय में पर्यावरण अनुकूल समाधानों में भी योगदान दे सकता है. और एंडीज के पहाड़ों में एक और इंस्पिरेशनल कहानी भी छुपी हुई है. पेरू के कुस्को के पास स्थानीय समुदाय हजारों तरह के आलू की किस्म उगाते हैं जिसे पोटैटो पार्क के नाम से जाना जाता है. यहां पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक जानकारी संरक्षण के प्रयासों के साथ मिलकर काम करती है.
0: सो डियर लिसनर्स, परहैप्स द नेक्स्ट टाइम पोटैटोज अपीयर ऑन योर प्लेट्स वेदर एज फ्राइज, पराठाज, आलू टिक्की, चिप्स और अ सिंपल होम कुक्ड करी, we may see them a little differently, not merely as a side dish but as a crop that has crossed oceans, supported civilizations, helped communities survive difficult times and continue to nourish billions of people every day.
1: Bilkul Renu, mujhe lag raha hai ki aaj hamara ye program sunne ke baad jo shrota honge apne ghar mein aloo jo rakhe honge unko ek alag nazariye se zarur dekhna shuru kar denge.
0: Aur zarur wo chai ke sath abhi aloo ki koi na koi dish, samosa ya fries zarur kha rahe honge. जी, तो आज हमारी दूसरी डेटलाइन इंडिया का टॉपिक है हिंदी जर्नलिज्म डे.
1: श्रोताओं, शब्दों में बहुत शक्ति होती है और हम ऐसे शब्दों की बात नहीं कर रहे जो सिर्फ शोर मचाते हैं या जो पल भर के वजूद के बाद गायब हो जाते हैं, बल्कि वो शब्द जो एक दिल से दूसरे दिल तक का सफर तय करते हैं, वो शब्द जो लोगों को जगाते हैं, वो शब्द जो इतिहास बदल देते हैं.
0: Today, when news reaches our phones within seconds, it is easy to forget a time when information moved slowly, a time when a newspaper wasn't merely paper and ink. It was a bridge between people, ideas, and a dream called freedom.
1: और रेनू, इतिहास की बात करें तो हम सोचते हैं कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि कभी कोई अखबार किसी बुराई के खिलाफ एक हथियार बन सकता है. शुरू में हमें लगेगा ये बहुत नामुमकिन सी चीज है कि कैसे छपे हुए कागज के कुछ पन्ने दुनिया की सबसे ताकतवर औपनिवेशिक सरकारों में से एक को चुनौती दे सकती है, लेकिन यहां बिल्कुल यही हुआ.
0: बिल्कुल, एब्सोल्यूटली. द स्टोरी बिगिन्स नियरली 2 सेंचुरीज अगो, एंड डियर लिसनर्स प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव टू व्हाट वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट Hindi Journalism Day today. On this day in 1826, a newspaper named Udant Martand was published from Kolkata under the leadership of Pandit Yugal Kishore Shukla. It became the first Hindi newspaper in India. At that moment, few could have predicted what the small beginning would eventually become, because this was never only about journalism. It was about giving people a voice. We have a report.

0: हिंदी भाषा में पत्रकारिता के आरंभ की स्मृति में भारत में हर साल 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था, जिसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था।
1: यद्यपि आर्थिक समस्याओं के कारण ये समाचार पत्र लंबे समय तक प्रकाशित नहीं किया जा सका, लेकिन इसने देसी भाषा में प्रेस को प्रोत्साहन दिया और देश के कोने कोने तक राष्ट्रवादी धारणा पहुंचाने में सहायता की।
2: उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसम्बर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें में श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का, जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सुधारों को प्रोत्साहन देने की प्रेरणा मिली।
1: 1868 में उन्होंने काशी से कवि वचन सुधा के प्रकाशन के माध्यम से हिंदी लेखकों को प्रेरित किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने जन चेतना लाने का कार्य किया और स्त्री पुरुष समानता का समर्थन किया। उन्होंने भारत के स्वशासन और संपूर्ण संप्रभुता का स्वप्न देखा।
0: हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में भारतेंदु के युग को न सिर्फ हिंदी भाषी लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, बल्कि इसने ब्रिटिश दमन का भी कड़ा प्रतिकार किया। 1903 में सरस्वती के संपादन का दायित्व महावीर प्रसाद द्विवेदी पर आ गया और हिंदी पुनर्जागरण का तीसरा चरण आरंभ हुआ। इस युग के दौरान कविता में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समस्याएं मुखर हुईं, जबकि गीतों में सामाजिक जागरण को प्रमुखता से जगह मिली।
1: 1907 में मदन मोहन मालवीय ने प्रयाग से साप्ताहिक साहित्य का प्रकाशन शुरू किया और उसी वर्ष माधव राव सप्रे ने नागपुर से हिंद केशरी निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1910 में कानपुर से जोशीला और क्रांतिकारी साप्ताहिक प्रताप प्रकाशित किया, जो राष्ट्रवादी युवाओं की आवाज था।
0: हिंदी पत्रकारिता के लिए एक और महत्वपूर्ण योगदान 1913 में प्रभा का प्रकाशन था, जिसे पहले कालूराम गंगराडे और माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा से प्रकाशित करते थे, लेकिन बाद में ये 1919 में कानपुर में विद्यार्थी की प्रताप प्रेस से निकलने लगा। प्रभा स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक समर्पित समाचार पत्र था।
1: प्रभा और प्रताप के साथ चांद भी महत्वपूर्ण पत्रिका थी। चांद ने ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रवाद के बीज बोए और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: स्वतंत्रता संघर्ष में सहायता करने के लिए 1920 में शिव प्रसाद गुप्त ने काशी से आज का प्रकाशन शुरू किया। 19 अगस्त 1921 को गांधी जी ने नवजीवन का हिंदी संस्करण आरम्भ किया। आचार्य शिव पूजन सहाय ने 1922 में मासिक पत्रिका आदर्श का संपादन प्रारंभ किया।
3: लेकिन श्रोताओं, आजादी मिलने के बाद क्या हुआ? क्या पत्रकारिता का महत्व कम हो गया या फिर ये और भी ज्यादा जरूरी हो गई है? क्योंकि आजादी के बाद भी कोई राष्ट्र विकास करना बंद नहीं करता। इसमें नई चुनौतियां सामने आती हैं, नई बहस छिड़ती है, नए सपने आकार लेते हैं और यहीं पर पत्रकारिता अपनी जिम्मेदारी निभाना जारी रखती है।
4: एंड यू नो व्हाट, इट ब्रिंग्स अटेंशन टू प्रॉब्लम्स दैट नीड सॉल्यूशंस।
3: बिल्कुल
4: रोजी, एंड परहैप्स दैट इज द मोस्ट रिमार्केबल पार्ट ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द फर्स्ट एडिशन of Udand Martand to today's digital newsrooms, generations of journalists have carried forward the responsibility of public awareness. They have preserved the story of a nation that continues to grow and transform.
3: Renu, ab samay

0: development in Nagaland with an investment of 175 crore rupees. The initiative aims to build an end-to-end coffee value chain in the state from cultivation and processing to branding, tourism and exports. The project was virtually launched by Union Minister for Doner Jyotiraditya Sindhya from New Delhi in the presence of Nagaland Chief Minister Nipo Rio on May 18th. We have a report.
1: Nagaland coffee is steadily evolving from a commodity into a specialty product, setting a benchmark for emerging coffee producing regions. The growing global recognition of Nagaland coffee reflects the dedications of farmers and stakeholders working across the value chain. The state possesses highly favorable agroclimatic conditions for the cultivation of both Arabica and Robusta coffee varieties. Nagaland has a potential coffee growing area of over 10 lakh hectares, accounting for nearly 63% of the state's geographical area. However, only around 11,000 hectares are currently under coffee cultivation, spread across 17 districts of Nagaland. Under the mission of Coffee Nagaland, Topema in Kohima District and Gotovi in Newland District has been selected as pilot cluster to become living models of excellence in coffee cultivation and value addition. The initiative is expected to significantly increase coffee yields from the current 200 to 300 kg per hectare to nearly 800 kg per hectare. Besides improving value capture for farmers, the project is also expected to generate employment opportunities in cultivation, processing, roasting, barista training and tourism, while encouraging greater participation of rural youth in the coffee economy. Nagaland now aims to bring 50,000 hectares under coffee cultivations by the year 2047 under its Viksit Nagaland vision. For Parikrama, Asunyo from Kohima.
2: और श्रोताओं, अब आपको लेकर चल रहे हैं नागपुर में। नागपुर में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से खासदार क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन कल से हो रहा है। इस महोत्सव में हजारों खिलाड़ी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। इस पर और जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता।
3: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला खासदार क्रीड़ा महोत्सव इस वर्ष 31 मई से 7 जून तक आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक बड़ा मंच मिलेगा। युवाओं में फिटनेस, खेल संस्कृति और प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकसित करना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। इस वर्ष महोत्सव की शुरुआत मैराथन से होगी। महोत्सव में कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कबड्डी, बास्केटबॉल, शतरंज, कैरम, वॉलीबॉल, योग, जिमनास्टिक, स्केटिंग, टेबल टेनिस और सॉफ्टबॉल सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। 8 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में नागपुर के लगभग 23,800 खिलाड़ी भाग लेंगे। शहर के 20 विभिन्न खेल मैदानों पर रात्रकालीन सत्रों में 18 प्रकार के खेलों की कुल 5,450 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 571 ट्रॉफियां, 6,700 मेडल और कुल 57,63,000 रुपए के पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
0: And Goa is celebrating its statehood day today. Vice President C.P. Radhakrishnan participated in the statehood day celebrations at Kala Academy in Panaji and inaugurated the Mario Miranda exhibition, released a commemorative postage stamp and special cover on the renowned cartoonist. More details from our correspondent.
4: As a part of birth centenary celebrations of renowned cartoonist and painter Mario Miranda, the Directorate of Art and Culture has organized painting exhibition at Art Gallery Sanskriti Bhavan, Panji. Born in Lottolim, Mario Miranda captured the spirit of Goa through his iconic illustrations depicting village life, local traditions and everyday characters. His work earned international acclaim with exhibitions in over 22 countries. The Government of India honored him with Padma Shri, Padma Bhushan and posthumously Padma Vibhushan. Today, his art remains an enduring symbol of Goa's cultural identity and rich heritage, reflecting the unique character of the state as it celebrates 40 years of statehood. For Parikrama, this is Mahesh Sopade, Akashwani News, Panaji.
2: रेनू, अपने श्रोताओं को हमने देश की तो हलचल दे दी, अब उन्हें खेल के मैदान की भी जानकारी दे देते हैं। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा।
0: एंड मूविंग ऑन टू बैडमिंटन।

0: India's mixed doubles pair of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto lost to Japan's Sayaka Hobara and Yuichi Shimogami in the semifinals of the Singapore Open tournament today. Meanwhile, men's double semifinal match is underway between Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty and South Korea's Seo Seung Jae and Kim Won Ho. And let's move on to our next segment of paying tributes and remembering those who passed away on this day and also jinka aaj birthday hai.
1: Ji.
0: So, let's begin with Pandit Debrat Chaudhary.
1: बिल्कुल पंडित देवव्रत चौधरी की हम बात करेंगे जिनकी आज जयंती है. ये भारत के प्रख्यात सितार वादक थे. ये संगीत के सेनिया घराना से थे. इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया. ये जयपुर के सोनिया संगीत घराने से थे जिसे तानसेन परिवार के वंशजों ने शुरू किया था और जिन्हें रागों की शुद्धता को संरक्षित रखने के लिए जाना जाता है. देबू चौधरी शिक्षक और लेखक भी थे जिन्होंने 6 किताबें लिखी और कई नए राग बनाए. श्रोताओं आइए आकाशवाणी के अभिलेखागार से आपको सुनाते हैं देबू चौधरी की एक सितार परफॉर्मेंस.

0: आज रितु पर्णोघोष की भी पुण्यतिथि है। ये बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक, लेखक और अभिनेता थे। चोखेर वाली, रेनकोट और अबोहोमन जैसी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रितु पर्णोघोष की ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में थी। इन्होंने और इनकी फिल्मों ने रिकॉर्ड 12 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। अपने 19 साल के करियर में रितु पर्णोघोष ने 19 फिल्मों का निर्देशन और 3 फिल्मों में अभिनय किया। और रेनू, इनकी एक फिल्म मेरे दिल के बहुत ही करीब है, बिल्कुल हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे फिल्म रेनकोट का एक डायलॉग।
1: मैं मनोज।
2: मनोज को?
1: मैं मनोज मनु भागलपुर से। बकवास नहीं नीरू, मैं मनु। आवाज नहीं पहचानी?
2: भीगो मत, भीतर आ जाओ।

0: आज परेश रावल का जन्मदिन है। 30 मई 1955 को मुंबई में जन्मे अभिनेता परेश रावल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की फिल्म अर्जुन से, लेकिन परेश रावल की पहली सुपरहिट फिल्म रही नाम, जिसमें उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। परेश रावल ने इसके बाद विलेन, सपोर्टिंग एक्टर और कई अलग अलग किरदार निभाए, लेकिन आज भी इनके कॉमेडी किरदारों का कोई जवाब नहीं है। 1997 की फिल्म जुदाई में परेश रावल ने हसमुख लाल नाम का कैरेक्टर प्ले किया था। रेनू, आई एम श्योर आपको भी याद होगा वो
1: कैरेक्टर। वी ऑल रिमेम्बर बिकॉज परेश रावल, आप जब भी कोई मूवी देखते हैं और पता चलता है कि उसमें परेश रावल है, तो सम हाउ यू वॉन्ट टू वॉच दैट मूवी बिकॉज यू आर श्योर कि या तो उसे आपको हंसाया जाएगा या कुछ ना कुछ,
0: कुछ उसमें अलग होगा। बिल्कुल
1: अलग होगा।
0: तो अपने श्रोताओं को इसी फिल्म का एक डायलॉग सुना देते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: क्या देख रहा था?
3: घर देख रहा था।
2: क्यों देख रहा था?
3: ऐसे ही।
2: पोस्टमैन है?

0: पोस्टमैन है?
1: मैं पोस्टमैन हूँ।
0: तो क्यों देख रहा था?
1: अरे घर रहने के लिए देख रहा था।
0: रहने के लिए देख रहा था? वो पड़ोस वाला चलेगा?
1: चलेगा।
0: ये चलेगा?
1: दौड़ेगा।
0: कितना किराया देगा?
1: जो आप कहेंगे।
0: कितना रुपया कमाता है?
1: रुपया मैंने कमाता, मेरा बाप कमाता।
0: कितने बाप है?
1: बाप तो एक ही होता है ना।
0: तो बाप को मैं बताकर देना करता है?
1: मैं कलाकार हूँ, कला से प्यार करता हूँ।
0: ये कला भाई कौन है?
1: मैं संगीत से प्यार करता हूँ, संगीत खाता हूँ, संगीत देखता हूँ, संगीत सुनता हूँ।
0: दिखता है?
1: हाँ।
0: संगीत दिखता है?
1: हाँ।
0: कैसा दिखता है?
1: पीछे से बहुत अच्छा दिखता है, सामने से पता नहीं।
0: और क्या क्या दिखता है?
1: सब कुछ।
2: And of course, this movie was also one of the best movies, I think. और इन्होंने काफी हमें हंसाया हर मूवी में जिसमें इन्होंने कॉमेडी रोल किया है. So today is the birthday of Resul Pookutty, who is an Indian film sound designer, sound editor and audio mixer. He won the Academy Award for Best Sound Mixing along with Richard Pryke and Iron Tap for Slumdog Millionaire. और सर फिरोजी, आपको यहाँ पता चली गया होगा कि हम कौन से गाने की बात करेंगे.
3: बिल्कुल.
2: तो अभी सुनाते हैं. Let me tell you a little bit more about Resul Pookutty. He has worked in Hollywood, Hindi, Tamil and Malayalam films. In 2010, the government of India honored him with the Padma Shri, the highest, fourth highest civilian award in the Republic of India, in recognition for his outstanding contributions to cinema. So here, let's listen to this foot-tapping song, Jai Ho.

0: श्रोता, उम्मीद है जितनी ऊर्जा इस गाने में है उतनी ही ऊर्जा आपकी जिंदगी में भी बनी रहे। इसके साथ ही इजाजत दीजिए सर फिरोजी और रेनू कटारिया को। परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
1: यस, वेरी ट्रू।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के नी वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कर रहे हैं। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाना है। श्री DK कुमार शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से चुने जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। महीने भर चलने वाली ये प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर ईरान के साथ समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका की सेना उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्री-ला संवाद में श्री हेग्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय संचालन समिति NSC ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण निवेश योजना SIPO को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के तहत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह मंजूरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित तीसरी NSC बैठक के दौरान दी गई। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। लोहम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाय और किम वॉन हो को 21-19, 21-18 से हराया। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में आज भारतीय जोड़ी को जापान की साइका होबारा और युइची सिमोगामी ने हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर यह वक्त है गाते गुनगुनाते का। आपके साथ है रजनी। आज कुछ ऐसे लोकप्रिय डांस नंबर हम आपके लिए चुनकर लाए हैं जिनमें कि वेस्टर्न बीट्स ने फिल्म संगीत में उस समय धूम मचा दी थी और आज भी ये जो डांस नंबर्स हैं ये उतने ही लोकप्रिय हैं।

1991 में आई पत्थर के फूल सलमान खान की लगातार चौथी हिट थी। इसी फिल्म से आपने जो गीत सुना उसमें आवाजें थी लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की। इसी साल यानी 1991 में शाहरुख खान की फिल्म कभी हां कभी ना की भी योजना बनी थी। तब इस फिल्म में मुख्य भूमिका में आमिर खान और जूही चावला थे। शाहरुख खान उस समय इस फिल्म में सेकंड लीड में थे। वक्त के साथ साथ आमिर खान की जो रुचि थी वो इस प्रोजेक्ट में कम हो गई और जूही चावला ने भी डेट्स की प्रॉब्लम्स के कारण ये फिल्म छोड़ दी। बाद में शाहरुख खान मुख्य भूमिका में आ गए और शाहरुख खान वाला जो रोल था वो दीपक तिजोरी के हिस्से में चला गया। तो इन दोनों पर यानी कि शाहरुख खान और दीपक तिजोरी पर फिल्माया अगला गीत आपको सुनवाते हैं कभी हां कभी ना से। आवाजें हैं अमित कुमार और उदित नारायण की।

जिस तरह सितारों की फेरबदल कभी हां कभी ना में हुई थी, ऐसा ही कुछ हुआ हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म के साथ। इसमें एक हीरोइन की भूमिका के लिए तो रानी मुखर्जी को चुन लिया गया था और दूसरी अभिनेत्री के तौर पे तब्बू को साइन किया गया था। तब्बू की फिल्म छोड़ने के बाद करिश्मा कपूर ने ये फिल्म साइन की, लेकिन उन्होंने भी ये फिल्म छोड़ दी। इसके बाद दूसरी अभिनेत्री के लिए प्रीति जिंटा की एंट्री हुई और अपने जबरदस्त अभिनय से उन्होंने इस किरदार को यादगार बना दिया। तो इसी फिल्म से यानी कि हर दिल जो प्यार करेगा से सुनवाते हैं आपको गीत जो कि रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा पर ही फिल्माया गया है। आवाजें हैं पिंकी, प्रीति और प्रशांत की।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम है विभा रानी, मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूं और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो आकाशवाणी दरभंगा में मैंने कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। मैथिली ड्रामे किए, हिंदी ड्रामे किए और कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं वहाँ अनाउंसमेंट करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में आकाशवाणी और रेडियो ने मुझे जो दिया वो आज तक मेरे लिए एक नेमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूँ?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
7: आकाशवाणी FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते। वक्त हुआ है 5:36 और 19 सेकेंड। 1991 में एक फिल्म आई थी, सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी, काफी पसंद भी किया था लोगों ने इसे। फिल्म का नाम था 100 डेज। ये जो फिल्म थी ये एक तमिल फिल्म का रीमेक थी और इस तमिल फिल्म का नाम था नूर वथुनाल। हालांकि इसकी जो एंडिंग थी वो तमिल फिल्म की एंडिंग के जैसी नहीं थी, उसको दर्शकों के हिसाब से बदल दिया गया था। ये फिल्म भी काफी लोकप्रिय हुई और इसके गीत भी लोगों ने बहुत पसंद किए। तो इन्हीं में से गीत आपके लिए लाए हैं 100 डेज फिल्म से। आवाज है लता मंगेशकर और SP बालसुब्रमण्यम की।

90 के दशक में गोविंदा की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग थी कि उनके नाम से ही फिल्में हिट हो जाती थी। बात है 1988 की, जब उन्होंने 38 फिल्में ऑलरेडी साइन कर रखी थी, प्रोडक्शन में थी। इसी बीच उन्हें एक फिल्म ऑफर हुई और जब उन्हें पता चला कि उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करना है तो उन्होंने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि उनका रोल क्या है। अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिले इसके लिए उन्होंने तुरंत ही इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। ये फिल्म थी हम। ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट हुई और इसके गीत भी काफी लोकप्रिय हुए थे, आपको याद ही होगा। अभी जो गीत आप सुनने वाले हैं ये फिल्माया गया है गोविंदा और शिल्पा शिरोडकर पर, और आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

FM गोल पर आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते, और गाते गुनगुनाते में आज हम आपके लिए लाए हैं 90s के ऐसे गीत, ऐसे डांस नंबर्स जिनमें वेस्टर्न जो बीट्स हैं, वेस्टर्न धुन जो है वो सुनाई देती है और जबरदस्त लोकप्रिय ये गीत रहे हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई अभिनेता रहे हैं जिनके अभिनय ने दर्शकों को दीवाना बना दिया, लेकिन डांस के मामले में उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता था। इन्हीं में से एक नाम है संजय दत्त का। थानेदार फिल्म में उन्हें एक डांस नंबर करना था और वो भी माधुरी दीक्षित जैसी ट्रेन डांसर के साथ। फिर भी उन्होंने इसके स्टेप्स के लिए बहुत मेहनत की और नतीजा शानदार रहा। इस फिल्म में उनके सहनायक जितेंद्र ने संजय दत्त के डांस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संजय दत्त को कंग्रेचुलेट करने के लिए एक बड़ा सा बुके उनके घर भिजवाया। और वो गीत आपको सुनवाते हैं जिसकी बात हो रही है। आवाजें हैं अनुराधा पुंडवाल और बप्पी लाहिड़ी की।

0: ये आकाशवाणी है। अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कोरोना कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केन्द्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी

और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:11 और 5 सेकंड हो गए हैं और आज की शाम ठंडी है। जी हाँ, शाम को कुछ देर पहले बस बारिश हुई है दिल्ली में और मौसम काफी सुहाना हो गया है। तो चलिए मौसम के मुताबिक सुनते हैं ये गाना, फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 से। आवाज है गीता दत्त की, संगीत ओपी नैयर का।

जी एफएम गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और कुछ ही देर में यानी 6:20 पर एफएम गोल्ड में समय हो जाएगा संस्कृत समाचार का। तो उससे पहले आपको एक गीत और सुनवा देते हैं। फिल्म उसने कहा था से ये गीत है, गाया है लता मंगेशकर और तलत महमूद ने।

0: आधुनिक प्रौद्योगिक्यां महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयतः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः परिकल्पना वर्तते यत् एतेषां निर्माणं भारते स्यात्। एतेषां प्रौद्योगिक्यः विकासः स्वदेशस्तरे भवेत्। श्रीवैष्णवेन उक्तं यत् अस्याः परिकल्पनायाः अनुरूपं लौहम् नामकेन समवायेन सफलतापूर्वकं जटिल प्रौद्योगिकी विकसिता।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: म्यांमारस्य राष्ट्रपतिः मिन आंग लाइंग इत्यसौ अद्य पञ्चदिवसीय भारत यात्रायै बिहारस्य गयां सम्प्राप्तः। तेन बोधगया स्थितस्य विश्व प्रसिद्धस्य महाबोधि मन्दिरस्य दर्शनं विहितम्। राष्ट्रपतिना तत्र बोधि वृक्षस्य अधः प्रार्थना अपि कृता। अत्रावसरे म्यांमारस्य राष्ट्रपतिना बकराउर स्थिते ऐतिहासिके सुजाता मन्दिरे शिरं नत्वा बोधगया स्थितस्य बर्मी मठस्य यात्रा कृता। राष्ट्रपतिना सह वरिष्ठाधिकारिणः, बौद्ध प्रतिनिधयः, उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अपि अवर्तत। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। ऋतुविज्ञान विभागेन उक्तं यत् वायुमण्डलीय परिस्थितिभिः अनुमीयते यत् दक्षिण पश्चिम प्राविट् आगामिषु चतुष्पञ्च दिनेषु केरलस्य तमिलनाडोः च कतिपय भागेषु आगमिष्यति। अरबसागरे बंगालखात्यां लक्षद्वीपे कन्याकुमार्यां च प्राविट् अग्रे समेधते। ऋतुविज्ञान विभागेन केरलस्य अष्ट जनपदेषु अद्य प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं विधाय पीतवर्ण संचेतना प्रसारिता। ऋतोः प्रतिकूलता कारणेन जून मासस्य तृतीय दिनं यावत् मत्स्यजीविनः केरल लक्षद्वीप तटयोः समुद्रे उद्यमं न कुर्वन्तु इति परामर्शः अपि प्रदत्तः। सेनाप्रमुखः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी अवोचत् यत् भारतीय सशस्त्रबलानि उच्चस्तरीय सतर्कतायां विद्यन्ते। आवश्यकता विद्यते सति ऑपरेशन सिन्दूर 2.0 इति सिन्दूराभियानस्य द्वितीयचरणाय सन्नद्धानि सैन्यबलानि वर्तन्ते। पुणेनगरस्य खडकवासला स्थितायां राष्ट्रियरक्षाकादम्यां स्नातकान् सार्धैकशततमस्य दलस्य पासिंग आउट परेड इति प्रयाणं सम्बोधयता जनरल द्विवेदिना उक्तं यत् सिन्दूराभियाने दृढसंकल्पेन प्रत्युत्तरप्रदानस्य क्षमता प्रदर्शिता। तेनोक्तं यत् एतत् अभियानम् इदानीम् अपि सन्ततं प्रवर्तते। जनरल उपेदी अवोचत् यत् सिन्दूराभियाने भारतीय सैन्यबलानां मध्ये तारतम्यम् अवलोकितम्। सममेव वयं भविष्यकालाय आत्मानं सन्नद्धं कुर्महे। सेनाप्रमुखेण स्नातकाः व्यावसायिकनेतृत्वस्य राष्ट्रसेवायाः च सर्वोच्चमानकान् यथावत् प्रवर्तितुम् आकारिताः।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः प्रातः 11 वादने आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनैः साकं स्वविचारान् प्रकटयिष्यति। कार्यक्रमोऽयं मासिक रेडियो कार्यक्रमस्य 44-उत्तर-100-तमः प्रभागः वर्तते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शनयोः अन्तर्जालीय पटले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य कार्यक्रमोऽयं आकाशवाण्याः अन्तर्जालीय वेबफलकं समेत्य न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप इति तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। प्रमुखः रक्षाध्यक्षः जनरल अनिल चौहानः अद्य नवदिल्लीस्थे राष्ट्रिय समर स्मारके सैन्यत्रयेण प्रदत्तेन गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानेन सह सैन्यसेवाभ्यः निवृत्तिं स्व्यकरोत्। अयम समारोह देशस्य सर्वोच्च सैन्याधिकारी रूपेण तदीय विशिष्ट कार्यकालस्य समापनस्य प्रतीक अवर्तत। समर स्मारके पुष्पांजलिं समर्प्य जनरल चौहानेन उक्तं यत् सैन्यत्रयस्य गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानेन सह सेवानिवृत्ति तस्मै अत्यन्तं सम्मानप्रदं वर्तते। जनरल अनिल चौहान गतशताब्दस्य एकाशीतितमे वर्षे भारतीय सेनायां सेवाम् अवाप्य चत्वारिंशदधिक वर्षेषु देशसेवायां महत्वपूर्ण पदेषु कार्यम् अकरोत्। लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्यम् जनरल अनिल चौहानस्य स्थानं स्वीकरिष्यति। अमेरिकायाः रक्षामंत्री पीट हेग्सेथ इत्यसौ अवोचत् यत् यदि संधेः प्रयासाः विफलाः भविष्यन्ति चेत् अमेरिकायाः सेना ईरानं विरुध्य सैन्य कार्याचरणं विधातुं पूर्णरूपेण सन्नद्धा वर्तते। अल्पसंख्यक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू अद्य सूचितवान् यत् प्रथमवारं भारतीय हज मिशन संस्थया हज समन्वयस्य संचारस्य च उत्कृष्टतायै सऊदी हज उमराह मन्त्रालययोः प्रतिष्ठितौ लाबाट्यूम पुरस्कारौ प्राप्तौ। सामाजिक संचार माध्यमेन श्री रिजिजू अकथयत् यत् 26,000 हज यात्रायाः मुख्य चरणस्य सफलता अल्पसंख्यक कार्य मन्त्रालयस्य भारतीय हज समित्याः सऊदी अरब देशे भारतीय राजदूतस्य नेतृत्वे भारतीय हज मिशन इत्यस्य जेद्दाह नगरस्य महाव्यवस्थापकस्य च मध्ये अविच्छिन्न समन्वयं प्रतिबिम्बयति। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी चिराग सेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। उपांत्य चक्रे भारतीय दलेन दक्षिण कोरिया दलं पराजितम्। महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य भारत इंग्लैंड दलयोः द्वितीया 20-20 स्पर्धा भविष्यति। इयं स्पर्धा ब्रिस्टल नगरे भविष्यति। भारतीय समयानुसारेण सायं 7 वादने स्पर्धा आरप्स्यते। इति वार्ताः।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries you may have on business, economic and stock market matters. But please do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can, of course, call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And please do prefix the code 011. I'm Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka swagat hai. श्रोताओं, आज के इस अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल के साथ साथ हम आपसे भी बात करेंगे, आपके फोन्स को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर अगर आपका सवाल हो तो आप हमें सीधा फोन कर सकते हैं और इन नंबर्स पर वो सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि किसी विशेष स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। हमें कॉल करने के नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ, हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन।
2: आप दोनों को नमस्कार, हम तमाम श्रोताओं को नमस्कार।
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: थैंक यू प्राची एंड शिशिर, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस। डोमेस्टिक एक्विटी इंडिसेस एंड मई इन रेड।

0: Amid profit booking and geopolitical uncertainties. Center waives customs duty on cotton imports till October 31st. And Brent oil prices boast biggest monthly loss in 6 years as market counts on the US-Iran deal.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और मुनाफा वसूली के कारण मई माह में घाटे में रहे। केंद्र सरकार ने अगले 5 महीनों के लिए कपास पर आयात शुल्क हटाया और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण 6 साल का सबसे बड़ा नुकसान दर्ज किया गया।
0: Before we dive into the program, listeners, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं चलिए अब जान लेते हैं कि इस हफ्ते के अंतराल में हमारे प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा व्यवहार किया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में इस माह मुनाफा वसूली और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच उतार चढ़ाव देखने को मिला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कल 74,776 पर बंद हुआ। इस महीने के दौरान सेंसेक्स में लगभग 2.78% की गिरावट दर्ज की गई। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी दबाव में रहा और महीने की शुरुआत से लगभग 1.78% गिरकर माह के अंतिम कारोबारी दिन 23,548 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया महीने के अंतिम सत्र में 95 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले सत्र से 0.7% अधिक है और 2 अप्रैल के बाद से ये इसका उच्चतम स्तर है।
0: The center has exempted cotton imports from all customs duties for 5 months, starting the 1st of June 2026, in a bid to improve raw material availability for the domestic textile industry. The Finance Ministry issued a notification granting full exemption from basic customs duty, as well as the Agriculture, Infrastructure and Development CESS, AIDC, on imported cotton. The waiver will remain in force until October 31st, 2026. The central government, on being satisfied that it is necessary in public interest, exempted cotton when imported into India from the whole of the duty of customs levyable thereon under the Customs Tariff Act and from the whole of the Agriculture, Infrastructure and Development CESS. We now welcome our first listener to the program, Amit from Delhi. Amit, welcome to the program. Please ask your question.
2: Namaskar, Radhiko. Sina sir.
0: Hello, Amit.
2: Sina sir. Hello. Hello.
0: Sina
2: sir, sun pa rahe hain?
3: Ji, bilkul.
2: हाँ sir, namaskar. मैं ये पूछना चाह रहा सर कि जैसे हमारे अभी कुछ सेमी कंडक्टर के बारे में पूछना है सर, तो सेमी कंडक्टर इंडस्ट्रीज कब तक हम सेल्फ मेड इंडिया मेड चिप और सेमी कंडक्टर एक्सपोर्ट करने लगेंगे? और दूसरा इसी से संबंधित सवाल सर कि क्या इस समय सेमी कंडक्टर बनाने वाले कंपनियों में निवेश करने का सही समय है सर? धन्यवाद सर।
3: देखिए, जहां तक आपका पहला प्रश्न है कि कब तक निर्यात शुरू होगा, देखिए अभी तो कई जो संयंत्र हैं उनमें काम शुरू हो गया है और अगले कुछ महीनों में पूरी तरह से उसमें उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो पहली जो कहते हैं ना कि पहला जो इस समय उद्देश्य है वो ये है कि घरेलू मांग से हम कैसे निपटें। घरेलू मांग से हम जैसे ही पूरी तरह से निपट लेंगे उसके बाद ही निर्यात की संभावना बनती है, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। आपका दूसरा प्रश्न यह है कि क्या ये समय है उन कंपनियों में निवेश करने का जो सेमीकंडक्टर बनाते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही समय है और जब कभी भी आपको कीमत में थोड़ी गिरावट दिखे तो आप निवेश कर सकते हैं। ध्यान रहे, बाजार जब बहुत तेजी में आए उस समय निवेश करना आपके लिए उचित नहीं होगा।
0: वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। India's near-term economic outlook remains one of cautious resilience as domestic fundamentals hold up despite intensifying global shocks from the West Asia conflict. the Department of Economic Affairs said in its monthly economic review for the month of May. While PMIs, labor market and forex reserves provide insulation, the department flagged elevated crude prices, tightening financial conditions and a

0: Below normal monsoon as key risks to consumption and inflation in the months ahead. Domestic fundamentals remain broadly intact. Manufacturing and services PMIs are in expansionary territory. The labor market is stable and foreign exchange reserves provide meaningful insulation against external shocks. The department added that the global environment has become materially more challenging since the onset of the West Asia conflict, with elevated crude prices and weakening growth momentum across major economies posing headwinds India cannot fully insulate itself from.
1: और खबरों पर बातचीत करने के लिए शिशिर जी के पास दोबारा लौटेंगे गौरा, लेकिन उससे पहले आइए हम मुंबई से अपने दूसरा कॉल लें. अमित इनका नाम है. अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: धन्यवाद मैडम. मैडम, मेरे एक सवाल है एक्सपर्ट से कि बीच में सुनने में आया कि रिजर्व बैंक ने कुछ अमाउंट जो है उसको लाभांश बोलते हैं, वो कुछ करोड़ अमाउंट, 2 लाख समथिंग करोड़ अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को दी. हर साल ये अमाउंट सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक से लेता आ रहा है और ये अमाउंट साल बाय साल बढ़ती जा रही है. तो ये क्या एग्जैक्टली कंसेप्ट है और ये अमाउंट जो लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से, वो वापस दिए जाते हैं रिजर्व बैंक को? क्योंकि रिजर्व अमाउंट होती है तो बार बार ये सेंट्रल बैंक क्यों मांगता है? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज अलग अलग है, तो ये तो बहुत इमरजेंसी के लिए अमाउंट होती है. तो ये कंसेप्ट जरा प्लीज इस पर प्रकाश डालिए. थैंक यू.
3: देखिए अमित, ये रिजर्व बैंक जो है वो कई जगहों पर निवेश करता है, कई तरह की सेवाएं मुहैया कराता है, जिसको हम लोग कहते हैं बैंकर टू द बैंकर्स हैं, यानी कि तमाम बैंकों का एक बैंकर है. तो सरकार का मॉनेटरी मैनेजर है, बैंकों का बैंकर है और इसके अलावा कई जगहों पर निवेश करते हैं, तो इससे उनकी आय होती है. उस आय में अपने खर्चे और जिसको कहते हैं कि रिजर्व बफर करना पड़ता है, कि जैसे जोखिम का समय आया या बहुत ही हालात बहुत बिगड़ गए, वहां पर पैसा रखना है, तो उसके लिए कुछ पैसा निकाल करके बाकी जो पैसा होता है उसको हम लोग सरप्लस कहते हैं, डिविडेंड नहीं कहते हैं. उसके पीछे भी एक तर्क है. देखिए, रिजर्व बैंक कोई व्यावसायिक संस्था नहीं है जो मुनाफे के लिए काम करती है. तो रिजर्व बैंक की आय और खर्च और जो अलग अलग माध्यमों में जो उनके लिए जरूरी होता है, जिसको हम लोग रिस्क बफर कहते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है वो सरकार को वो हस्तांतरित करते हैं. सरकार जो बजट बनाती है हर साल का, जैसे अगर इस साल का बजट देखें जो 50 लाख करोड़ रूपये के ऊपर का है, उसमें से एक रकम जो है वो रिजर्व बैंक की ओर से मिलने वाले अतिरिक्त भी शामिल होता है. तो वो सरकार रिजर्व बैंक को वापस नहीं करती है. रिजर्व बैंक अपने आप में स्वावलंबी है, उनके लिए जो संसाधन है उनको जुटाने के लिए उनको सरकार के ऊपर कोई निर्भरता उनकी नहीं है.
1: शिशिर भोपाल से हमारे साथ शंकर जुड़ रहे हैं. शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: नमस्ते मार्केट मंत्रालय टीम. शिशिर जी, मुझे बताइए, ये सर एफआईआई ने पैसा निकाला तो उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स भी दिया होगा, और कैपिटल गेन टैक्स हो सकता है बिफोर वो जो ग्रैंडफादरिंग का भी हो सकता है, उसके बाद का हो. वेयर कैन वी फाइंड दिस डेटा, और इज गवर्नमेंट, डज गवर्नमेंट पब्लिश दिस डेटा, हाउ मच कैपिटल गेन्स दे हैव अर्न ऑन अकाउंट ऑफ दिस फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम इंडिया, एंड इन जनरल आफ्टर कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटी हैज कम इनटू पिक्चर, हाउ मच दे हैव अर्न, वेयर वी कैन सी दिस इन फिस्कल डॉक्यूमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज बजट. थैंक यू.
3: शंकर जी, अनफॉर्चुनेटली यू विल नॉट हैव दैट स्पेसिफिक डेटा दैट हाउ मच कैपिटल गेन दे हैव अर्न ऑन द कैपिटल आउट फ्लो फ्रॉम इंडिया. सो ऑफकोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव सम फिगर दैट हाउ मच मनी दे हैव अर्न अंडर डायरेक्ट टैक्सेस, एंड दोज इंक्लूडेड द कैपिटल गेन टैक्सेस ऑल्सो, वेदर इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और वेदर इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स. एंड प्लीज रिमेंबर दैट द ग्रैंड फादरिंग थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट, इट वॉज बिफोर द 2017, मेनली फॉर द रिटेल इन्वेस्टर. फॉर द बिगर इन्वेस्टर, फॉर द लार्जर इन्वेस्टर, दे हैव टू पे बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज फॉर द लॉन्ग टर्म. एंड फॉर द रिटेल investor, they have to pay of in case of long term the 12.5% only if the gain is exceeding rupees 1.25 lakh rupees. Now your question is that can you get those figure? No, you will not get that particular figure from say from how much they have money they have got from the individual or how much they have got from the foreign investor, but you will get the overall figure that how much money they have earned through the direct taxes. And every month around 10th or 11th of the month they come out with the figure that how much direct taxes they have collected.
1: शिशिर, अभी कुछ समय पहले गौरा ने हमसे एक खबर साझा की कि भारत सरकार ने कपास के आयात पर 1 जून से 31 अक्टूबर तक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। ये किस तरह से एमएसएमई को बल देगा और बाजार की जो वाजिब प्रतिस्पर्धा है उसको बनाए रखेगा?
3: देखिए, ये पिछले 2 सालों में ये दूसरी बार का मौका है जब कपास पर आयात शुल्क हटाया गया है। बीते साल जो था वो जून से लेकर के दिसंबर तक आयात शुल्क हटाया गया था और उस समय परेशानी ये थी कि जो ये अमेरिका का जो शुल्क का जो मुद्दा था उसकी वजह से हमारे उद्योग जो थे, वस्त्र उद्योग जो है, उनको परेशानी हो रही थी कच्चा माल हासिल करने में। और एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि जो वस्त्र उद्योग है वो देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार मुहैया कराने वाला क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में अगर कच्चे माल और सस्ते कच्चे माल की कमी होती है तो रोजगार पर सीधा सीधा असर पड़ता है। दूसरी बात यह भी है कि हम बड़े पैमाने पर निर्यात करते हैं, तो अगर हमारा उत्पादन प्रभावित होगा तो निर्यात प्रभावित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कपड़ा उद्योग में एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की काफी बड़ी संख्या है और उनके लिए अगर हम सस्ते दर पर मुहैया करा सकें तो वो उद्योग के लिए फायदेमंद होगा। एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि इसका असर, इसका ये नहीं देखा जाना चाहिए कि हमारे किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि अभी जो कपास पर निर्यात एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो बढ़ाया गया है। तो एक तरफ किसानों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप कपास का उत्पादन करें, लेकिन फौरी तौर पर अगर जरूरत है तो वहां पर हम थोड़े थोड़े समय के लिए निर्यात शुल्क में जो है आयात शुल्क, माफ कीजिएगा, आयात शुल्क हटा करके हम राहत दे सकते हैं।
1: बिल्कुल, दिल्ली से हमारे साथ प्रदीप जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। सर, जैसे कि गवर्नमेंट ने पीछे जो हमारी पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस थी उसको जीएसटी हटा दी थी, अभी सर मुझे अपना है ना पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का मैंने प्रीमियम पेड किया सर, तो उसमें अभी भी जीएसटी चार्ज हो रहा है सर, तो क्या पीएलआई पे अभी भी जीएसटी लग रहा है सर सरकार की तरफ से?
3: देखिए, दो तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात हो रही है, एक है कि इंडिविजुअल की बात हो रही है, हेलो, और एक फैमिली फ्लोटर की बात हो रही है। उसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस में भी स्टैंड अलोन की बात है। अगर आपका ग्रुप इंश्योरेंस होगा या फिर किसी और तरीके की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो वहां पर आपके लिए वो जीएसटी लगेगा। यदि ये 2-3 शर्तें अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस के साथ जुड़ी है तो आपको वहां पर जीएसटी नहीं देना है।
0: Our next caller is from Faridabad, Subhash. Subhash, welcome to the program. Please ask your question.
6: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी।
6: शिशिर सर को नमस्कार।
3: नमस्कार
6: सर, मैं ये पूछना चाहता था कि ये एफआईआई जो है 1.5 से 2 साल से लगभग जनरल इंडिया से कूच करते जा रहे हैं पैसा ले लेके, हमारा सेबी या फाइनेंस मिनिस्ट्री ये क्या आंख नीच के बैठे हुए हैं? अगर क्वेश्चन उनको बुरा लगे प्लीज मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। उनका क्या मतलब, उन्होंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट कुछ किया है कुछ जिससे कि एफआईआई भाग रहे हैं, जो कुछ रोका जाए उनको, या ये जो मार्केट हमारी कोलैप्स होती जा रही है उसके लिए कुछ किया जाए, तो इसको कुछ किया है कुछ ऐसा कुछ सिस्टम?
3: सुभाष जी, देखिए, स्टॉक मार्केट के निवेश में किसी भी तरह की लॉक इन की बात नहीं होती है। लॉक इन का मतलब यह है कि जब आप पैसा लेकर के आते हैं तो आपको कभी भी पैसा निकालने की सुविधा होती है। अब मुद्दा यह है कि वो पैसा क्यों निकाल रहे हैं, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। आप अगर आप वैश्विक परिस्थितियां देखें, अमेरिका में ब्याज दरें देखें, और अभी जो लेटेस्ट है जिसको हम लोग मॉर्गन स्टैनले इंडेक्स में जो कहते हैं वहां पर जो फेरबदल किया गया है, तो कई कारण ऐसे बनते हैं जिसके चलते उनको एक मौका मिलता है और वो मुनाफा कमा करके निकलते हैं। देखिए, एक बात हमें आपको याद रखना है कि कोई भी निवेश करता है वो फायदे के लिए करता है। जब उसको फायदा देखता है वो फायदा लेकर के निकल लेता है, और जहां उसको लगता है कि फायदे पर नुकसान हो सकता है, फायदे पर असर पड़ता है, तो वो पैसा निकाल लेता है, या अगर कहीं ज्यादा मिल रहा है तो वो पैसा निकाल लेता है। दुर्भाग्यवश अभी परिस्थितियां वैसी हैं। अब रहा सवाल कि क्या इस पे लॉक इन लगाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। आप पाबंदी अगर लगाएंगे तो जो आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे और उसका नुकसान हमारे बाजार को और ज्यादा उठाना पड़ेगा। अब इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि सरकार और सेबी की ओर से तमाम ऐसे कदम उठाए गए जिससे कि बाजार हमारा सुरक्षित हो, निवेश आकर्षक हो, और जब निवेश करते हैं उनको फायदा होता है तभी तो वो यहां से पैसा कमाते हैं। अब उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं।
1: श्रोताओं, लिए चलते हैं आपको जयपुर। जयपुर से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। महोदय, अपना सवाल पूछिए।
7: सर, थैंक यू। अच्छा सर, जैसे एक बात बताइए, जैसे मैंने किसी को 50,000 का चेक दिया और मैंने उसको मना किया कि भाई आप चेक डालना मत जब तक हम बोले नहीं, उसने डाल दिया और इनसफिशियंट बैलेंस चेक बाउंस हो गया, तो क्या इससे मेरा सिविल स्कोर खराब हो सकता है क्या चेक बाउंस होने से? पहला तो ये है। और दूसरा सर, निफ्टी 50 में हम आईटी सेक्टर में जो है ना, वो निफ्टी 50 के आईटी सेक्टर में थोड़े थोड़े मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं तो ठीक है क्या? दोनों दो प्रश्न।
3: देखिए, पहला जहां तक सवाल है कि चेक आपने किसी को जारी किया, तो क्या आपने जो चेक या जिसको कहते हैं स्टॉप

पेमेंट का जो है वो क्या आपने अपने बैंक को सूचित किया था? अगर आपने अपने बैंक को सूचित नहीं किया था और यदि उस व्यक्ति ने वो चेक डाल दिया और आपके और उस व्यक्ति के बीच में एक कहते हैं ना कि एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि आपने मौखिक में एक दूसरे से तय कर लिया कि हमारा चेक आप जमा मत करिएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका थोड़ा नुकसान तो उठाना पड़ेगा। सिविल का जहां तक सवाल है, सिविल मूल रूप से आपके कर्ज की बात आती है, लोन की बात आती है, आप

0: तो आपके लिए थोड़ी सी जो है वो दिक्कत है। आपका दूसरा प्रश्न था कि निफ्टी 50 में आईटी सेक्टर्स में थोड़े थोड़े निवेश करना, बहुत अच्छे आपकी सोच है। और जैसे जैसे कीमत में गिरावट आए, हमेशा हम ये कहते हैं कि किस्तों में निवेश करिए, किस्तों में मुनाफा कमाइए और धैर्य रखिए, फायदा होगा।
1: टिंकू जी हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, आपका अभिनंदन। महोदय अपना सवाल पूछिए। टिंकू जी आप हमें सुन पा रहे हैं?
2: हाँ मैडम सुन पा रहे हैं
1: जी। सवाल पूछिए।
3: टिंकू अपना सवाल प्लीज पूछिएगा।
2: मैडम जी मेरा सवाल है
3: जी
2: कि 5 साल के लिए एक पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपोजिट होता है, उसमें हर महीना जो है जो उसका जो है ब्याज आ जाता है अकाउंट में, और मैं उस अकाउंट में ब्याज का मैं आरडी कराना चाहते हैं। तो जैसे 20,000 को मैं फिक्स डिपोजिट 5 साल के लिए कराते हैं, तो हर महीना जो उसका आएगा ब्याज दर वो मैं आरडी में डालना चाहते हैं, तो ये क्या आएगा? और ये 5 साल के बाद मैच्योरिटी हो जाता है, सारे पैसे मिल जाते हैं, इसके बारे में जानकारी चाहिए। और एमपीएस जो एक पेंशन योजना होता है, मेरा 41 वर्ष एज हो गया, क्या होगा एमपीएस या नहीं होगा? यही मेरा दो सवाल है।
0: देखिए पहला जो डाकघर की आपकी जो योजना है, आपने रकम जो बताई वो काफी छोटी है, उसमें आपको ब्याज तो बहुत ज्यादा आएगा नहीं। तो अगर आपकी बड़ी रकम है 15 लाख रुपए से ज्यादा की है, वहां पर जो आपके पास ब्याज आ रहा है और उसमें जो भी ब्याज आ रहा है, अगर आपकी जरूरत संसाधन की नहीं है तो वो आप उसको रिकरिंग डिपॉजिट में डाल सकते हैं। लेकिन वो रकम अगर बड़ी हो तभी आपके लिए फायदेमंद है, बहुत छोटी रकम का रिकरिंग डिपॉजिट कराना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। जब वो रकम बड़ी आपने जैसे जितनी भी रकम का एक एफडी अभी करा रखा है, 5 साल में मैच्योरिटी होती है, फिर उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और या फिर थोड़ी थोड़ी रकम जो है वो हर महीने रिकरिंग डिपॉजिट के तौर पे आप साथ में चला सकते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है कि क्या आप एनपीएस में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, 75 वर्ष तक की आयु तक जो है वो एनपीएस में पैसा लगाने की सुविधा होती है, तो आप उसमें बिल्कुल निवेश कर सकते हैं और ये आपकी बहुत अच्छी सोच है।
3: नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम दिल्ली, मोहन। मोहन वेलकम टू द प्रोग्राम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: नमस्ते मैम।
3: नमस्ते
4: मैम, मुझे जानकारी चाहिए। मैं अभी अभी जो है आपको जो ये इंदिरा डैम में मैं काम कर रहा हूँ मैम, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, मगर मुझे ये जो ब्रोकर जो होते हैं, जैसे मैं एंजल वन से मैं इंदिरा डे कर रहा हूँ मैम, और उसमें मैं जैसे एसएपी मैं लेना चाहता हूँ, तो कहने का मतलब ये है मैम जो कि अगर एंजल वन मैं यूज कर रहा हूँ ब्रोकर, अगर ये बंद हो जाएगा तो इसका मुझे फिर आगे जो है इसमें कैसे प्रोसेस है, ये सब मुझे जानकारी नहीं है मैम, मैं अभी अभी इसमें जुड़ा हूँ।
0: पहली बात मोहन जी, जब तक आपकी जानकारी नहीं थी तो आपका जोड़ना ही वो सही नहीं है, जोखिम इतना भी मत उठाइए जिसे आगे समेटना मुश्किल हो जाए। तो कृपया करके पहले समझिए, जो भी व्यवस्था में आप जाना चाहते हैं, चाहे वो इंट्राडे में आप करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास वो समझ नहीं है या आपके पास जानकारी कम है तो पहले वो जानकारी जुटाने की कोशिश करिए, और बहुत सारे ऐसे विकल्प आपके पास उपलब्ध है जहां से ये जानकारी ले सकते हैं। आपका मूल प्रश्न था कि अगर जो भी एक फर्म है वो बंद हो जाती है तो मेरा क्या होगा? देखिए आप जो पैसा वहां पर जमा करते हैं वो जो भी एक अकाउंट में जमा होता है, वो अकाउंट से वो ब्रोकिंग फर्म नहीं निकाल सकता है, वो सेबी आपको उसके बाद जब किसी भी तरीके की परेशानी आती है तो वहां पर सेबी आपकी मदद के लिए रहेगा, वो पैसा आपका डूबेगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपसे अंत में एक ही बात कहूंगा, समझ थोड़ी सी बेहतर करिए, फिर आप उस व्यवसाय में, उस कारोबार में या उस निवेश की रणनीति को अपनाएं, आपके लिए बेहतर होगा।
3: बिफोर वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर लिसनर्स, लेट्स टेक अनदर स्टोरी दैट वी हैव फॉर टुडे। Public sector banks demonstrated strong financial and operational performance during the financial year 2025-26. It was highlighted during a review meeting chaired by Secretary, Department of Financial Services, M. Nagaraju in New Delhi. The Finance Ministry said progress under major financial inclusion initiatives, including Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Social Security Schemes, Pradhan Mantri Mudra Yojana, the PM Vishwakarma and Digital Lending Initiatives, was also reviewed. Deliberations also covered strengthening of digital banking ecosystems, enhancement of cybersecurity frameworks and initiatives for improving access to credit for MSMEs and other productive sectors of the economy.

0: कि 2.8% सेंसेक्स में गिरावट हुई है, तो आप आने वाले सप्ताह को का अवलोकन कैसे करते हैं?
1: बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि वही मैंने कहा कि हर रोज एक बयान आता है और बाजार उस हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। तो अभी के समय में मेरी सलाह इतनी है कि बाजार से अगर आप जाना भी चाहते हैं, जिस दिन बहुत गिरावट हो रही हो, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे शेयर उपलब्ध हैं, कीमत में काफी अच्छी गिरावट आ जाती है, उसको आप किस्तों में खरीद लीजिए।
0: स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं शिशिर, लेकिन आप अगर कोई सेक्टर्स रेकमेंड करें तो?
1: मेरे हिसाब से इस समय में डिफेंस और फार्मा, ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो मेरे लिए थोड़ा आकर्षक लग रहे हैं।
2: राइट, सो इफ समबडी हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दैट दे वांट टू पुट इनटू द मार्केट्स, यू शुड स्टिल रेकमेंड नो लंप सम बट स्लोली।
1: या पार्ट ऑफ दैट ईएमआई काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट।
2: राइट।
0: शशि जी, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं को तमाम तरीके की जानकारी से समृद्ध करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे और गौरव के सवालों के जवाब देने के लिए भी आपका एक बार फिर से अभिनंदन।
1: आप सभी का धन्यवाद।
2: थैंक यू शशि, एंड एब्सोल्युटली यू नो इन दीज वॉलेटाइल टाइम्स आई थिंक एनी एक्सपर्ट गिविंग सजेशंस रियली वैल्यूड। थैंक यू सो मच। Listeners, before we close, a quick look at the headlines once again. Domestic equity indices end May in red amid profit booking and geopolitical uncertainties. Center waives customs duty on cotton imports for 5 months. And Brent oil prices post biggest monthly loss in 6 years as market counts on a US-Iran deal. And that's all for today. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में डीके शिवकुमार को नया नेता चुना गया है। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। विधायकों ने उन्हें अपना नेता और अगला मुख्यमंत्री चुना है। श्री शिवकुमार को नेता चुने जाने के प्रस्ताव को पारित करने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक में पार्टी विधायकों को आधिकारिक रूप से इसकी सूचना दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांव को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांव को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार है। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित और परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की

0: दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। In Karnataka, the Congress Legislature Party meeting in Vidhan Sauda has elected D.K. Shivakumar as their new leader after the resignation of Siddaramaiah. In this regard, the legislators adopted the resolution put forward by Siddaramaiah and Dr. G. Parameshwar. A press release issued by D.K. Shivakumar's office confirmed that the legislators have elected him as their leader and the next chief minister. After adopting the resolution to elect Mr. Shivakumar as the leader, the message was officially announced to all the Congress legislators by AICC General Secretary K.C. Venugopal in the meeting. Briefing the media persons later in Bengaluru, Mr. Venugopal announced that D.K. Shivakumar was elected unanimously by the party legislators and he will visit the governor to stake claim to form the government. He also announced that the swearing-in ceremony will be held on 3rd June. Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan today said that the Khet Bachao Abhiyan should be made a comprehensive national campaign connecting farms, farmers and villages. The minister said this while chairing a high-level meeting regarding the preparations of the Khet Bachao Abhiyan in New Delhi. During the meeting, he said that the focus of the campaign will be on balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in view of weather-related challenges, active participation at panchayat level, and delivering the benefits of the schemes directly to the villages. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani tomorrow at 11 a.m. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on Air mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. President of Myanmar U Mi Wang Ling arrived in New Delhi this evening on a 5-day visit to India. Union Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh received him at the airport. Earlier today, the President of Myanmar visited Gaya in Bihar and prayed at Mahabodhi Temple. He is accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. In Tamil Nadu, AIADMK Whip Agri S.S. Krishnamurthy today met the state governor Rajendra Vishwanath Arlekar and requested him to take action against the

0: alleged horse trading of four MLAs by the ruling TVK. He said that after these four MLAs resigned from the AIADMK, they had joined the TVK immediately. The government has temporarily exempted customs duties on cotton imports from the 1st of next month to 31st October this year. The Ministry of Textiles in a notification said that the decision has been taken keeping the interest of cotton farmers and the entire cotton value chain at the forefront. It added that the measure implemented during the cotton off-season will ensure adequate availability of cotton for the textile industry, support MSMEs, moderate input costs and strengthen the competitiveness of Indian textiles. Delhi Police Special Cell has arrested eight accused working at the behest of PARC ISI Mumbai Underworld Network. Addressing a press conference, Special CP of Delhi Police Special Cell Anil Shukla said that the accused were tasked to attack vital installations and security personnel in Delhi. He said that arms and explosives have been recovered from their possession. Mr. Shukla informed that the accused were operating under directions of cross-border handlers and they were arrested from Delhi, Maharashtra and Pune. Union Minister for Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandaviya and Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma today inaugurated the Integrated Hospitality and Sports Complex at JN Sports Complex in Polo, Shillong. In badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty advanced to the finals of the Singapore Open tournament. The pair defeated world number one South Korea's duo Seung Jae and Kim Won Ho 21-19-21-18 in the semi-final today. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 प्रमुख निष्कर्ष, चुनौतियां और संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रही है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 कल जारी किया, जिसमें स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं में प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। क्या है इस सर्वेक्षण का महत्व, क्या है इसके प्रमुख पहलू और क्या है आगे की संभावनाएं, इन सब पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सुश्री आराधना पटनायक। आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में।
3: सभी को मेरा नमस्कार।
2: जी आराधना जी, ये जो सर्वेक्षण जारी हुआ है, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या NFHS कहा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है और जो NFHS 6/2023-24 के आंकड़ों के आधार पर जो जारी हुआ है कल, उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या है।
3: ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभी जारी हुआ है, ये 2023-24 के लिए जारी हुआ है, ये 6th सर्वेक्षण है। ये सर्वेक्षण लगभग 6.79 लाख घरों को कवर किया है और इसमें लगभग 7.16 लाख महिलाएं और लगभग 1 लाख पुरुषों को कवर किया गया है। ये पूरे देश में ये सर्वेक्षण हुआ है और इस सर्वेक्षण के माध्यम से मुख्य रूप से हम कई सारे स्वास्थ्य के जो मानक हैं, उनमें क्या प्रगति हुई है, उस पर हम मुख्य रूप से ये सर्वेक्षण करते हैं। चाहे स्वास्थ्य की हम बात करें, चाहे पोषण की बात करें, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें, परिवार नियोजन की बात करें, बच्चों के स्वास्थ्य की बात करें, तो ये सभी चीजें इस सर्वेक्षण में कवर करते हैं। इस बार जो ये सर्वेक्षण हुआ है, तो इसमें मुख्य रूप से जो हमें सबसे अच्छी उपलब्धि मिली है, वो है कि हमारे जो प्रसव अस्पतालों में जो होता है, वो प्रसव हमारा लगभग 88.6 से बढ़कर 90.6 हो गया है। फिर जो बच्चों का टीकाकरण होता है, वो लगभग 96% से ऊपर चल रहा है और सबसे अच्छी बात इसमें है कि लगभग 95.6% बच्चों को जितने भी टीकाकरण जो लगते हैं, वो सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो मुझे लगती है उपलब्धि है, हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र लगभग 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पूरे देश में फैले हुए हैं, जहां हम ये सुविधाएं देते हैं टीकाकरण का, और जो हमारी ANM बहने बच्चों का टीकाकरण करती है। तो ये एक बहुत अच्छा हमें इसमें उत्साहवर्धक हमें सर्वेक्षण में ये रिपोर्ट आया है। दूसरा एक और है, ANC जो गर्भवती माताओं का प्रसव पूर्व जांच जो किया जाता है।

0: है वो करीब 92% से बढ़कर 95.9 वो हो गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस है हमारा। और बच्चों का जो टीकाकरण करते हैं तो जो पूर्ण टीकाकरण वो 83.8% से बढ़कर 87.1% हो गया है। तो यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है। पोस्टनेटल केयर जो प्रसव के पश्चात जो माताओं को सुविधा देनी है उसमें बढ़ोतरी हुई है, 79.1% से 85.3% वो बढ़ा है। तो इस तरह काफी सारे उत्साहवर्धक हमारे जो इंडिकेटर्स आए हैं, सभी चाहे वो मातृत्व की बात करें या शिशु की बात करें, सभी में ये बढ़ोतरी हुई है। और एक और मैं आंकड़ा भी बताना चाहूंगी जो हमारे गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों में जो एक ये समस्या रहती है उसमें काफी कमी आई है। तो जो स्टंटिंग और वेस्टिंग, हम सीवियर वेस्टिंग की बात करते हैं, इसमें काफी कमी आई है। और हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज काफी बढ़ा है, 41% से बढ़कर वो 60.2% हुआ है। तो इसमें जो हमारा आयुष्मान भारत पीएमजे है, पीएम जन आरोग्य योजना, उसकी एक अहम भूमिका नजर आ रही है।
1: सो जैसा आपने मेंशन किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऐसी और भी इसके जैसी जो प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, उन्होंने आपको लगता है कि विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है?
0: हाँ, जो पहला मैंने कहा कि सबसे पहले जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया था
1: जी।
0: उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के समीप ले जाएं, और उसमें कई सारे पैकेजेस इसमें जोड़े गए थे। पहले हम लोग मुख्य रूप से मातृत्व और शिशु पर ही, स्वास्थ्य पर ही ध्यान देते थे, अब वृद्ध लोगों पर, फिर जो बढ़ते हुए एनसीटीज हैं उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, ओरल हेल्थ, डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, जेरियाट्रिक केयर, पैलेटिव केयर, ऐसे और 6 पैकेजेस जोड़े गए। तो अभी कुल मिला के 12 पैकेजेस ये सभी 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दिए जाते हैं,
1: और सभी आयु वर्ग के लिए।
0: खुशी है बताने में कि ये जो टोटल फुटफॉल की बात अगर हम करें 2018 से लेकर अब तक, लगभग 522.41 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया है। और जब हम सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर की बात करें तो वहां पर जो हमारा आयुष्मान भारत पीएमजे आ गया
1: जी।
0: उसके माध्यम से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं, जो 5 लाख अगर कोई भी बीमारी है और उसका इलाज वो कराना चाह रहे हैं तो उसमें आयुष्मान कार्ड जो दिए जाते हैं, लगभग 44 करोड़ कार्ड दिए गए हैं और लगभग 12 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस ऑथराइज हुए हैं, और जो ट्रीटमेंट हुआ है अभी तक वो लगभग 1.85 लाख करोड़ का हमारे लगभग 36,000 पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से दिया गया है
1: जी।
0: और अगर हम जो वल्नरेबल पॉपुलेशन की आप बात कर रहे हैं तो उसमें जैसे हमारे कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, जैसे पीएम जनमन, जो हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, पीवीटीजीज, उन तक पहुंचने के लिए हम लोग मोबाइल मेडिकल यूनिट्स चलाते हैं जिसके माध्यम से हम उनके लिए कैंप्स करके उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, विशेष रूप से ट्राइबल पॉपुलेशन को ध्यान देते हुए। जहां भी अगर हमारे स्वास्थ्य केंद्र 5 किलोमीटर के अंदर में नहीं है क्योंकि वहां आबादी बहुत कम है, तो वैसे जगह भी हम मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से यही जो 12 पैकेजेस की मैं बात कर रही थी वो हम उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हम हर महीने आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित करते हैं। ये शिविर हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों में होता है, चाहे वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, चाहे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिला अस्पताल हो, और वहाँ पर स्पेशलिस्ट जाते हैं, जो सीएचसी जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस से स्पेशलिस्ट जाते हैं और वो विशेषज्ञ सेवाएं देते हैं। और उसी तरह जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब सेंटर्स हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र, जहाँ पर सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ है, वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स जाते हैं, तो डॉक्टर्स जाते हैं सेवाएं देने के लिए। इसके अलावा हमारा टेली कंसल्टेशन भी होता है जिसके माध्यम से डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर कोई मरीज ऐसे आए हैं जिनको वो स्पेशलिस्ट सेवा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दवा और डायग्नोस्टिक, जो मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स होते हैं, उसमें फ्री ड्रग इनिशिएटिव हमारा प्रोग्राम है और फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव प्रोग्राम है, सरकारी अस्पतालों में वो मुफ्त दिया जाता है।
1: तो ये जो इतना व्यापक आपने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया जो हमारे देश में उपलब्ध है, और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से जनधन, आधार, मोबाइल के बल पर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो भी बहुत बढ़ गया है, लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई है आम आदमियों के पास, आपको लगता है कि प्रौद्योगिकी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है? ये जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध भी है और उसके लिए जो पहुंच है वो भी आसान है एक आम नागरिक के लिए, इन दोनों चीजों में टेक्नोलॉजी का ओवरऑल क्या रोल है, ये जो हम

0: पब्लिक हेल्थ इकोसिस्टम में इतना भारी एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं।
1: ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है। अभी जैसे मैं बता रही थी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम जो सेवाएं देते हैं 12 पैकेजेस, अगर वहां पर अगर किसी को कोई स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन की आवश्यकता है तो ई संजीवनी हमारा टेली कंसल्टेशन मॉड्यूल है।
0: हाँ,
1: इसके माध्यम से आप स्पेशलिस्ट से सेवाएं ले सकते हैं। फिर अगर आपको मानसिक कोई बीमारी है या मानसिक आपको कोई परेशानी है तो हमारा एक टेली मानस कार्यक्रम है जिसमें काउंसलर से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर भी मैं बताना चाहूंगी, 144416, ये टोल फ्री नंबर है, कोई भी डायल कर सकता है। और हमारे करीब ऐसे 53 सेंटर्स हैं जहां पर स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, तो कोई भी अगर कनेक्ट करता है और उसको कोई भी मानसिक बीमारी है, अगर दवा की आवश्यकता है या कोई सुझाव की आवश्यकता है, परामर्श की आवश्यकता है, तो वो उनसे बात कर सकते हैं, काउंसलर्स बात करेंगे और फिर वो उन्हें साइकेट्रिस्ट से जोड़ेंगे। उसके साथ साथ जो बता रही थी हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के जो मिशन है हमारा, उसके एनएचएम के माध्यम से जो हम विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं, चाहे एमएमआर कम करने की बात हो या अंडर 5 मोर्टेलिटी घटाने की बात हो या डिजीज एलिमिनेशन की, हर एक में हमारा पोर्टल है जिसमें हम ट्रैक करते हैं, एक एक मरीज को ट्रैक करते हैं। तो जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे हमारा यूविन पोर्टल है तो बच्चों का टीकाकरण इसमें पूरा ट्रैक होता है। तो हर बच्चे का जिस दिन ड्यू उसका डेट है उससे पहले माँ को वो मैसेज जाता है कि आप अपने बच्चे को निकटतम स्वास्थ्य उपकेंद्र में ले आइए टीकाकरण करने के लिए। अगर वो मिस कर गई तो उसको फिर जाता है कि भाई आप अपने बच्चे को लेकर नहीं आए, अगला ये डेट है उस पे जरूर आए। तो ये रिमाइंडर भी जाता है, वो घर बैठे बैठे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकती है बच्चे का। तो इस तरह कई सारे हमारे पोर्टल से, एनसीडी के लिए एक अलग पोर्टल है जिसके माध्यम से हम जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, ओरल ब्रेस्ट सर्वाइकल कैंसर, ये सभी की स्क्रीनिंग हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर में करते हैं। उनका फिर ट्रैकिंग होता है कि उनको वो रेफर किए गए, फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ, अंडर कंट्रोल है कि नहीं। टीबी का निक्षय पोर्टल है, तो इस तरह हर एक प्रोग्राम के लिए, लेप्रेसी के लिए निकुष्ट पोर्टल है, तो हर एक प्रोग्राम के लिए हमारा एक पोर्टल है जिसके माध्यम से ट्रैक करते हैं। और सबसे अच्छी बात और खुशी की बात मैं बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में हम लोगों ने इन सभी पोर्टल्स का भी इंटीग्रेशन करके एक स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया है, और उसी के साथ साथ उसका स्वस्थ भारत ऐप भी लॉन्च किया है। इसके माध्यम से हम सभी के बीच में जो हम समन्वय स्थापित करना चाह रहे हैं कि मरीज तो एक है, उसको तीन प्रकार की बीमारियां हो सकती है, लेकिन पहले हम अलग अलग पोर्टल से ट्रैक नहीं कर पाते थे। अब इस स्वस्थ भारत पोर्टल से, अगर उदाहरण स्वरूप अगर कोई गर्भवती माता है, वो अपना चेकअप के लिए गई लेकिन पहले वो 2 महीने पहले गई थी और डायबिटिक पाई गई थी, तो ये हमें बता देगा कि अब वो आई है गर्भवती माँ अपने चेकअप के लिए लेकिन वो महिला पहले से डायबिटिक है, तो ये जानकारी प्राप्त करके फिर डॉक्टर उनको फिर विशेष परामर्श दे सकते हैं। तो ये डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से हम जो कहते हैं ना लास्ट माइल तक पहुंचना, आखिरी घर तक पहुंचना और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, वो हम कर पा रहे हैं।
0: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे देश में प्रमुख उभरती स्वास्थ्य चुनौतियां क्या है।
1: इस सर्वे में काफी अच्छी प्रगति हुई लेकिन एक जो सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन में हमारे लिए और इस सर्वे में भी ये आया है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, ये व्यक्ति के खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का एक बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो अगर व्यक्ति स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हो और वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करे, जैसे हम कहते हैं एक्सरसाइज नियमित रूप से करिए, अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए, इस सर्वे में भी आया है कि एनसीडीज बढ़े हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन की बात करें, हाइपरटेंशन वैसे थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन डायबिटीज काफी बढ़ा है, एडल्ट ओबेसिटी बढ़ा है, तो ये एक दिखा रहा है कि अब हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा जो एनपीएनसीडी प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत हम लोग सभी 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज और 3 प्रकार के जो कैंसर है, जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स है, ओरल ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर, इसका हम नियमित रूप से स्क्रीनिंग करते हैं। और 2018 से ये स्क्रीनिंग प्रारंभ हुआ, तब से लेकर अब तक हम लोग लगभग 42 करोड़ हाइपरटेंशन का स्क्रीनिंग कर चुके हैं और डायबिटीज का 42 करोड़ लोगों का कर चुके हैं, लगभग 35 करोड़ से ऊपर लोगों का ओरल कैंसर का स्क्रीनिंग कर चुके हैं, लगभग 16 करोड़ से ऊपर ब्रेस्ट कैंसर की महिलाओं का स्क्रीनिंग हो गया है और सर्वाइकल कैंसर का भी 9 करोड़ से ऊपर का स्क्रीनिंग कर लिए हैं। हमारे लिए यही चुनौती है कि स्क्रीनिंग तो हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, वो भी सरकारी अस्पतालों में फ्री है, प्लस पीएमजे के तहत अगर आप एम्पैनल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां भी ट्रीटमेंट आपका फ्री है। जो खुद को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है, एक्सरसाइज नियमित रूप से करना है, खाने पीने पर ध्यान देना है, कम तेल का उपयोग करना है, कम नमक का उपयोग करना है, कम चीनी का उपयोग करना है।

0: आम लोगों को इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। एक और भी हम लोग करते हैं, ईट राइट कैंपेन हमारा FSSAI के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में काफी अवेयरनेस कर रहे हैं। फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम लोग महीने में 10 दिन वेलनेस सेशंस करते हैं, जिसमें योगा, जुम्बा ये सब भी किया जाता है, उसमें भी लोगों को जागरूक किया जाता है। हर व्यक्ति को खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। आज के दिन में चुनौती, हर कोई अगर खुद को स्वस्थ रखने के लिए खुद मेहनत करे तो सरकारी तंत्र पर बोझ काफी कम होगा। सरकार लगातार प्रयासरत है इसमें कार्य करने में और प्रिवेंशन पर ध्यान देने में। आशा बहने, उनको ट्रेनिंग दिया गया है और सभी जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है सभी को ट्रेनिंग दिया गया है जागरूक करने के लिए। लेकिन लोगों को भी खुद आगे आना होगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा।
1: आराधना जी, आपने इतनी समग्र चर्चा की और जो हमारा देश का हेल्थ इको सिस्टम है उसमें क्या प्रगति हो रही है उसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, आगे की संभावनाओं पर प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 प्रमुख निष्कर्ष, चुनौतियां और संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और यूट्यूब चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:25 हो गए हैं और एफएम गोल्ड पर यह समय है कार्यक्रम सांझ ढले का। आज की शाम सांझ ढले में मैं हूं आपके साथ रेशमा, और आइए सुनते हैं कुछ प्यारे से गीत सांझ ढले में। शुरू करते हैं फिल्म घरौंदा के इस गीत से, जिसमें संगीत है जयदेव का, बोल लिखे हैं गुलजार ने और इसे गाया है भूपिंदर सिंह ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जी हाँ, FM गोल्ड सुन रहे हैं आप।

मलबिक मेगाहर्ट्स पर और कार्यक्रम चल रहा है सांझ ढले, जिसमें अभी आपने घरौंदा फिल्म से गीत सुना जिसमें आवाज थी भूपिंदर सिंह की। भूपिंदर सिंह जिन्हें हम उनकी मखमली आवाज से पहचानते हैं, लेकिन जानते हैं उनका फिल्मी दुनिया में आगमन कैसे हुआ? दरअसल अपने शुरुआती दिनों में भूपिंदर सिंह आकाशवाणी दिल्ली में गिटारिस्ट और गायक थे। वहीं किसी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनकी पहचान संगीतकार मदन मोहन से कराई। मदन मोहन ने सबसे पहले भूपिंदर से हकीकत फिल्म में मोहम्मद रफी के साथ एक खूबसूरत सा गीत गवाया और बाद के दिनों में उनकी फिल्मों में उन्होंने उनसे गिटार वादन की प्रतिभा का भी लाभ लिया। आइए फिलहाल सुनते हैं फिल्म बाजार से भूपिंदर सिंह की आवाज में एक और रचना।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

जी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर सुन रहे हैं आप कार्यक्रम सांझ ढले। शाम के 7:41 और 40 सेकंड हो गए हैं और कुछ ही समय में यानी 7:45 पर एफएम गोल्ड पर समय होगा प्रादेशिक समाचार का। तो सांझ ढले में एक आखिरी गीत सुना रही हूं आपको, फिल्म मासूम से एक बार फिर भूपिंदर सिंह की आवाज़ में।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्लीवासियों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की नई जल और सीवेज परियोजनाओं से यमुना स्वच्छता अभियान को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का लक्ष्य राजधानी को देश और दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक बनाना। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभापुर क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों का निरीक्षण किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और दिल्ली में जल आपूर्ति की बढ़ती मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने न्यूनतम 1,000 क्यूसेक जल आपूर्ति बनाए रखने का आश्वासन दिया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की नई जल और सीवेज परियोजनाओं से यमुना स्वच्छता अभियान को नई गति मिलेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है। उन्होंने नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, आधुनिक सीवेज व्यवस्था और वर्षा जल संचयन जैसे प्रयास स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और अविरल यमुना के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य राजधानी को देश और दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक बनाना है।
3: हमारी ये राजधानी देश में और विश्व में सबसे अव्वल शहर बने, ऐसा शहर बने जहां रहने वालों का दिल खुश हो, जहां रहने वालों को ये लगे कि हाँ, हम ऐसे शहर में रहते हैं जहां सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सबके दुख में अपना दुख देखते हैं और दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं। और ये सुख तब बढ़ेगा और ये दुख तब कम होगा जब हम इसे शेयर करना शुरू करें।
2: दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत पहले स्थान पर है और इस क्षेत्र में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है वो एक असाधारण उपलब्धि है।

0: पेटीएम जैसी सुविधाओं का उपयोग कर रहा होगा। भारत नंबर वन है डिजिटल पेमेंट्स में, सबसे आगे है। तो ये तकनीक का इस्तेमाल जो हम लोग कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज, इन सब में आप सबका रोल प्ले है।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी कांवड़ यात्रा को अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय कांवड़ समिति का पुनर्गठन किया है। दिल्ली सरकार के संस्कृति

0: उमंग बजाज को समिति का सदस्य बनाया गया है।
1: नवगठित समिति के अध्यक्ष कपिल मिश्रा के नेतृत्व में जल्द ही जिला अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में यात्रा मार्गों के प्रबंधन, शिविरों में वाटरप्रूफ टेंटों की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं, निर्बाध बिजली पानी आपूर्ति तथा सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक समरसता और जन आस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार कांवड़ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबोट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा भाषिणी के सहयोग से विकसित ये चैटबोट नागरिकों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। एक रिपोर्ट।
2: संवाददाताओं से बातचीत में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने बताया कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं का समर्थन करती है और अतिरिक्त क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषाओं को शामिल करने के प्रयास जारी हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष दर्ज की जाने वाली लोक शिकायतों की संख्या 2014 से पहले लगभग 2 लाख थी, जो आज बढ़कर लगभग 25 से 30 लाख हो गई है। उन्होंने बताया कि मालदीव, मॉरिशस और अफ्रीका के कई देशों ने भारत के शिकायत निवारण मॉडल का अध्ययन करने में रुचि दिखाई है। समाधान दीदी वॉयस आधारित और बहुभाषी शिकायत पंजीकरण प्रणाली है। ये नागरिकों को उचित विभाग या प्राधिकरण से शीघ्र और कुशलतापूर्वक जुड़ने में मदद करती है। नागरिक कई भारतीय भाषाओं में आवाज या संदेश के माध्यम से शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने कहा कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने का काम सौंपा गया था।
3: इसमें मुंबई से 2 और उससे पहले 2 और हम लोगों ने पुणे से और झारखंड से लड़कों को उठाया। उनकी पूछताछ से पता चला कि मुंबई में और दिल्ली में अटैक के लिए कुछ मुंबई अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स का ग्रुप इनको हैंडलर बनके सामान जमा करा रहे हैं और टारगेट्स की रेकी करने के लिए उकसा रहे हैं।
0: दिल्ली यातायात पुलिस के सड़क सुरक्षा जागरूकता ग्रीष्मकालीन शिविर 2026 के दूसरे चरण का आज सफलतापूर्वक समापन हो गया। ये शिविर बाबा खड़क सिंह मार्ग, राष्ट्रीय बाल भवन, पंजाबी बाग और रोशनारा बाग स्थित 4 ट्रैफिक प्रशिक्षण पार्कों में आयोजित किया गया। यातायात पुलिस ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविर के दूसरे चरण में लगभग 750 विद्यार्थियों ने भाग लिया। पुलिस ने कहा कि शिविर के दौरान सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, ट्रैफिक ड्रिल तथा चित्रकला प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण जल आपूर्ति की बढ़ती मांग के चलते हरियाणा सरकार ने मुनक नहर के माध्यम से राजधानी को न्यूनतम 1000 क्यूसेक जल आपूर्ति बनाए रखने का आश्वासन दिया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साझा की। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार राजधानी में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली में जल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि पिछले एक सप्ताह में जल आपूर्ति को लेकर 11,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 8,500 से अधिक का समाधान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के 980 से अधिक टैंकर प्रतिदिन 6,000 से अधिक फेरे लगा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल राहत उपायों और दीर्घकालीन जल प्रबंधन योजनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। ये महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन करती है। संवाददाताओं से

0: बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में ही किया जाए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर हो। उन्होंने कहा कि इसी परिकल्पना के अनुरूप लोहम नामक एक युवा स्टार्टअप ने सफलतापूर्वक जटिल तकनीक विकसित की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभापुर क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार की विकास योजनाओं को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में अब तक 300 करोड़ रूपये के विकास कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी हो। निरीक्षण के दौरान दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग और एमसीडी के अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी जनरल चौहान का स्थान लेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह टिप्पणी की। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज के दिन ही हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मारतंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मारतंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मारतंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उदंत मारतंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी।
0: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और भोपाल के माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय के संयुक्त तत्वाधान में हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी में आज शाम बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाये रहने के साथ बारिश और बिजली कड़कने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति

मिन आउनलाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्लीवासियों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की नई जल और सीवेज परियोजनाओं से यमुना स्वच्छता अभियान को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का लक्ष्य राजधानी को देश और दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक बनाना है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभापुर क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों का निरीक्षण किया और दिल्ली में जल आपूर्ति की बढ़ती मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने न्यूनतम 1,000 क्यूसेक जल आपूर्ति बनाए रखने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि श्री शिवकुमार राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह 3 जून को आयोजित किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया कंपनी की निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित और परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे बहुत ही

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 8:11 हो गए हैं और ये समय है एफएम गोल्ड पर कार्यक्रम मधुरिमा का। आज की शाम मधुरिमा में मैं आपके साथ रेशमा, और मधुरिमा में हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे राग की जिसमें षडज स्वर को कुछ खास महत्व नहीं दिया जाता। जी हाँ, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ऐसे बहुत कम ही राग हैं जिसमें षडज स्वर को महत्व नहीं दिया जाता। तो आज जिस राग की बात हो रही है वो ऐसा ही है, और इसमें षडज तो ना के बराबर है और पंचम तो है ही नहीं। जी, राग मारवा पर आधारित गीत सुनेंगे आज आप मधुरिमा में। ये पहला गीत फिल्म उत्सव से सुरेश वाडकर की आवाज़ में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मधुरिमा, और मधुरिमा में मैं रेशमा आज आपको बता रही हूँ राग मारवा के बारे में और गीत सुनवा रही हूँ उसी की झलक लिए हुए। तो राग मारवा को मारवा थाट जन्य राग माना जाता है। इसमें ऋषभ कोमल, मध्यम तीव्र और अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। पंचम वर्ज्य होने के कारण इसकी जाति है शाडव शाडव। इसका वादी स्वर है कोमल ऋषभ और समवादी स्वर है धैवत। राग मारवा का गायन वादन समय है शाम का अंतिम पहर, और ये राग शुष्क और चंचल प्रकृति का है जिसमें बड़ा ख्याल और मसीद खानी गतें कम ही सुनाई देती हैं। आइए सुनते हैं राग मारवा की झलक दिए ये अगला गीत, फिल्म साज और आवाज से लता मंगेशकर की आवाज में।

जी हाँ, आकाशवाणी है ये FM गोल्ड, सुन रहे हैं आप। और मधुरिमा में आज राग मालवा की बात की मैंने, यानी रेशमा ने आपके साथ। और समय ज्यादा बचा नहीं है तो चलते चलते बस इतना बता दूं कि राग मालवा का गायन बिल्कुल भी आसान नहीं है, और शायद इसी कारण इस राग पर आधारित फिल्मी गाने सीमित ही संख्या में हैं। एक तो इसका चलन ऐसा है नहीं जिसे यूं ही गुनगुनाया जा सके, और अगर जरा सी भी गलती हुई तो गीत रागेश्री, सोहनी या राग पूरिया में चला जाएगा। चलिए चलते चलते एक थोड़ा सा और सुन लेते हैं ये गीत फिल्म दस्तक से।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शहनवाज खान और अर्जुनन रमन का शानदार प्रदर्शन, जीते स्वर्ण पदक। एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में गरिमा और दीक्षा ने स्वर्ण पदक जीता। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड और भारत के बीच मुकाबला जारी। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का महामुकाबला गुजरात टाइटंस से। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में, और भारत ने एशिया ओशोनिया चैंपियनशिप का खिताब तीसरी बार जीता। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स से, जहां कुश्ती खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी है। अलग अलग स्पर्धाओं में उन्होंने स्वर्ण तो किसी में रजत पदक अपने नाम किए। हांगकांग में चल रही एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए कुल 3 पदक अपने नाम किए। इनमें 2 स्वर्ण 1 रजत पदक शामिल है। पुरुषों के हाई जंप में भारत के बसंत 2.20 की ऊंची कूद लगाकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुषों के लॉन्ग जंप में शहनवाज खान ने 7.84 मीटर की लंबी कूद के साथ स्वर्ण, और इसी वर्ग में जिथिन अर्जुनन रमन चंद्रशेखरन ने 7.66 की कूद के साथ रजत पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता में लगातार जो खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन जारी है, अच्छा प्रदर्शन जारी है। वहां हाई जंप पर पूजा ने कल राष्ट्रीय और मीट रिकॉर्ड को सुधार कर उसमें गोल्ड मेडल जीता था। वहीं उन्होंने सहाना कुमारी का नेशनल रिकॉर्ड भी कल अपने को तोड़ करके अपने नाम नया रिकॉर्ड कायम किया था। चलते हैं वियतनाम, जहां कुश्ती अंडर 17 का मुकाबला जारी है। वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के महिला वर्ग में गरिमा और दीक्षा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। सुनते हैं कैसा रहा कुश्ती खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
1: एशियाई अंडर 17 कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अलग अलग श्रेणी में कई पदक अपने नाम किए। 73 किलोग्राम वर्ग में गरिमा ने मंगोलिया की नामुन सेटसेक बेथबोल्ट को 18-6 से मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं 43 किलोग्राम वर्ग में दीक्षा ने उज्बेकिस्तान की मुखलिशा मशारी पोवा को 6-0 से हरा कर स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। 40 किलोग्राम वर्ग में पलक ने चीन की मिन्या फांग को 6-2 से पटकनी देकर कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं 46 किलोग्राम वर्ग में अनामिका ने मंगोलिया की तनसर्मा बेटसूरी को 9-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। 53 किलोग्राम वर्ग में अक्षरा ने वियतनाम की थी होई थू बुई को 10-0 से हराया। वहीं

0: साक्षी ने कजाकिस्तान की एरिना कोनिसोवा को 10-0 से हराकर पोडियम पर तीसरा स्थान हासिल किया। 61 किलोग्राम वर्ग में मान्या राजपूत ने कजाकिस्तान की ही एगेरिन पोलटोबे को 10-0 से हराकर एक और कांस्य पदक भारत के लिए जीता। उधर पुरुषों के 71 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अनुज ने तुर्कमेनिस्तान के मेकान हुदे बेरेनोव को 4-2 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। महिलाओं के टीम रैंकिंग में भारत पहले, वहीं पुरुषों के फ्रीस्टाइल वर्ग में भारत दूसरे स्थान पर है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भी खिलाड़ियों का लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी है। वहीं अभी अभी हमें ताजा जानकारी मिली है जहां निकिता ने 39 किलोग्राम वर्ग में और अंतरा ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। लिए चलते हैं आपको इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, जहां पर महिला क्रिकेट का T20 मुकाबला जारी है। ब्रिस्टल में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा महिला T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए हैं। भारत को इंग्लैंड ने 169 रन का लक्ष्य दिया है। भारत की ओर से अरुंधति रेड्डी ने 4 ओवर में 38 रन दिए। नंदनी शर्मा ने 4 ओवर में 36 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया। श्रेयंका पाटिल ने 4 ओवर में 29 रन देकर एक विकेट लिया। श्रीचरणी ने 4 ओवर में 6.2 की इकोनॉमी रेट से 25 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किया। इस मुकाबले में हरमनप्रीत कौर, श्रेयंका पाटिल ने वापसी भी की है और 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हराया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 60 विकेट पर 188 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 150 रन ही बना सकी थी। जेमिमा रॉड्रिक्स ने 69 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप से पहले यह श्रृंखला बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि आईसीसी विश्व कप जो है 12 जून से इंग्लैंड में ही खेला जाना है और भारतीय टीम इस श्रृंखला में अपने कॉम्बिनेशन को आजमाना चाहेगी। अब सीधे रुख कर लेते हैं आईपीएल क्रिकेट की ओर, जहां आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में यह महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। बेंगलुरु डिफेंडिंग चैंपियन है, वहीं गुजरात ने भी 2022 में ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। सुनते हैं पूरे मैच का हाल।
2: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान टीम की शुरुआत निराशाजनक रही। यशस्वी जायसवाल बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और महज 1 रन बनाकर आउट हो गए। ध्रुव जुरेल भी 7 रन बनाकर कगिसो रबाडा का शिकार बने। वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने 47 गेंदों का सामना करते हुए 96 रनों की शानदार पारी खेली। वैभव ने अपनी इस पारी में 8 चौके और 7 छक्के लगाए। हालांकि रविन्द्र जडेजा 35 गेंदों में 45 रन बनाकर नाबाद रहे। अंतिम ओवरों में डोनोवन फेरेरा ने आतिशी बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए 345 के स्ट्राइक रेट के साथ 11 गेंद में नाबाद 38 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 214 रन लगाए। गुजरात टाइटंस की ओर से कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 2-2 विकेट लिए। 215 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की शुरुआत शानदार रही। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 167 रन जोड़े। सुदर्शन 32 गेंदों का सामना करने के बाद 58 रन बनाकर आउट हुए। सुदर्शन लगातार दूसरी बार हिट विकेट होकर पवेलियन लौटे। वहीं गिल ने 53 गेंदों में 15 चौके और 3 छक्कों की मदद से 104 रन बनाए। गिल आईपीएल प्लेऑफ में शतक लगाने वाले पहले कप्तान भी बने।
3: दिस इज समथिंग एल्स, इट रियली इज समथिंग एल्स। What a 100, what a performance, leadership at its absolute best.
2: जॉश बटलर 9 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर 9 गेंदों में 16 रन बनाकर नांद्रे बर्गर का शिकार बने। राहुल तेवतिया 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को जीत दिलाकर लौटे।
3: It's over now. Tapatia. And they'll march into Ahmedabad.
2: शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले में सबसे बड़ा रन चेज करने का रिकॉर्ड भी अब गुजरात टाइटंस के नाम दर्ज हो गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पंजाब किंग्स के नाम था, जिन्होंने आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ दूसरे क्वालिफायर में 204 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया था। आईपीएल में महज तीसरा मौका रहा जब गुजरात टाइटंस ने 200 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक चेज किया। मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि फाइनल में हमारा पूरा ध्यान ध्यान बेहतर क्रिकेट खेलने पर होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अहमदाबाद में कल कौन सी टीम दूसरी बार

0: और ट्रॉफी पर कब्जा जमाएगी। एक तरफ जहां रजत पाटीदार के नेतृत्व वाली डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरी बार ट्रॉफी पाने के इरादे से उतरेगी, वहीं शुभमन गिल की लीडरशिप में गुजरात टाइटंस पहली बार ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: अब सीधे रुख कर लेते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां पर मेंस डबल्स जोड़ी ने बेहतरीन खेल प्रदर्शन आज दिखाया। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाय और किम वॉन हो को 21-19, 21-18 से हराया। वहीं मिक्स डबल्स फाइनल में भारत की जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो को जापान की सायका होबारा और युची शिमिगामी से हार का सामना करना पड़ा। इस जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 16-21, 21-17, 13-21 से हराया। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और अजस प्रणय और आज तनिषा क्रेस्टो और कपिला के बाहर होने के बाद अब भारतीय प्रशंसकों की निगाहें मेन्स डबल्स जोड़ी पर होंगी। सीधे रुख कर लेते हैं टेनिस की ओर, जहां फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कल ब्राजील के जुआओ फोनसेका ने नोवाक जोकोविच को तीसरे दौर में हराकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। वहीं आज महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में अमांदा अनिसिमोवा और अरियाना सबालेंका अपने अपने मुकाबलों में चुनौती पेश करेंगी, जबकि ईगा स्वायतेक पहले ही चौथे दौर में प्रवेश कर चुकी हैं। आइए जानते हैं उलटफेर के इस दौर में कौन से नए खिलाड़ी उभरकर सामने आ रहे हैं।
2: फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में ये दूसरा बड़ा उलटफेर है। नोवाक जोकोविच से पहले यानिक सिनर भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। फोनसेका ने लगभग 4 घंटे 53 मिनट तक चले बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में जोकोविच को पराजित किया। शुरुआती दोनों सेट जीतकर जोकोविच मैच पर पूरी तरह से दबदबा बनाए हुए थे। इस दौरान जोकोविच कई बार थके हुए और शारीरिक रूप से परेशान नजर आए। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और निर्णायक पांचवें सेट की शुरुआत में 3-1 की अच्छी बढ़त बना ली थी। फोसेंका ने फिर से वापसी की। उन्होंने आखिरी 8 में से 6 गेम अपने नाम करते हुए रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जोकोविच को 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 से पराजित किया। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में एंड्री रूबेल को हराने के बाद ये किसी टॉप 10 खिलाड़ी के खिलाफ फोसेंका की दूसरी जीत है। जोकोविच के खिलाफ अपने पहले टूर लेवल मुकाबले में जीत हासिल करने वाले फोसेंका ने नया इतिहास रच दिया है। वो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच को हराने वाले पहले युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। फोसेंका पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के चौथे दौर में पहुंचे हैं। अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए कल उनका मुकाबला 15वीं वरीयता प्राप्त कैस्पर रूट से होगा। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: अभी हमें ताजा जानकारी मिली है, सबालेंका ने अपने मुकाबले में जीत दर्ज कर ली, वहीं अनिसिमोवा को हार का सामना करना पड़ा। भारत ने तीसरी बार जीता एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। एक रिपोर्ट।
3: भारत ने अल्ट्रा रनिंग में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए जापान के हिरोसाकी में हुई आईएयू एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। पुरुषों की 24 घंटे दौड़ में भारत ने इतिहास रच दिया है। टीम ने न सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल अपने नाम किए बल्कि पूरे व्यक्तिगत पोडियम पर कब्जा जमाया। अमर सिंह देवंदा ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। गिनो एंटनी ने रजत और सौरभ कुमार रंजन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। तीनों खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय पुरुष टीम ने कुल 815.833 किलोमीटर की दूरी तय कर टीम गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये प्रदर्शन एशिया ओशिनिया स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर रहा और किसी भी एशियाई देश का आईएयू चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी माना जा रहा है। मुकाबले में जापान दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर रहा। महिला वर्ग में भारत ने कुल 667.722 किलोमीटर की दूरी तय कर टीम ब्रॉन्ज मेडल जीता। जापान ने गोल्ड और ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर मेडल हासिल किया। भारतीय महिला टीम की ओर से तेंजिन डोलमा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 228.939 किलोमीटर दौड़ लगाई और कुल मिलाकर चौथा स्थान हासिल किया। इसी के साथ उन्होंने नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। भारत ने 2022, 24 और अब 2026 में लगातार तीसरी बार 24 घंटे अल्ट्रा रनिंग एशिया ओशिनिया

0: चैंपियनशिप का खिताब जीता है। सरफिरोजी स्पोर्ट्स कैन।
1: बात कर लेते हैं महिला हॉकी पर। जापान के काकामिगाहारा में अंडर 18 महिला हॉकी एशिया कप में भारतीय टीम ने मलेशिया को 2-1 से हराकर अपने अभियान का आगाज किया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज शिलांग के जेएन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एकीकृत आतिथ्य और खेल परिसर का उद्घाटन किया। बात कर लेते तीरंदाजी पर। स्लोवानिया के खामनिक में तीरंदाजी प्रतियोगिता के पुरुषों के रिकर्व वर्ग में भारत के सचिन गुप्ता फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका सामना कल कजाकिस्तान के इल्फत अब्दुलन से होगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.aar@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे। और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
3: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि सीएलपी नेता का चयन का कार्य एआईसीसी को सौंप देना चाहिए। इसके बाद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक सीएलपी मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
2: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एसएस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवी के द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन

500 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है, वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जाँच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और

0: ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
2: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में

0: रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम

विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम। और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मार्तंड ने बोया, वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: पंद्रह अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूं, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मार्तंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधा वर्षन, या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्याम आजादी, और कई

0: भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे, और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30-35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा यह मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद रखना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता, जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई, वो है विकास पत्रकारिता। विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना, और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं न कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आप कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
1: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविजन कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं, लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण,

0: स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहाँ अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थी बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया। और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहाँ विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रेवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाएं, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
2: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब हम एक एआई और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
3: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं। हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है, जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो हमें ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है, आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आईटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है, आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आईटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है, तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
4: सौरभ, आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
5: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
4: अच्छा।
5: क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कॉन्टिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की, स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रैवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रैवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रैवल किया, एक हफ्ता जब हमने ट्रैवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली, तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ्स हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम।
4: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए। और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
5: हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से। देखिए हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोज देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
4: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
3: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग, पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम, जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
4: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम से सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं, जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स?
3: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइवर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स हैं।
2: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
3: लोपदगामिनी,
2: और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
3: इंस्पिरेशन एक तो देखो हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है। हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ कुछ वर्ड्स, जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है, तो उसमें जैसे अभी

0: आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
1: मैं मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है। जब हम वहां पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा। तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा, और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
2: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी जिसमें आपने 500 डेज का चैलेंज लिया था, आपने पूरा इंडिया घूमा था, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
0: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहां पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है।
3: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
0: बहुत ही मजेदार होता है।
3: एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है, लाइक ट्राईपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल या चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
1: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवरथिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था, उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना, एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, आप जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है, या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है। तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो ही इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमराज खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
3: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड या
1: यस यस जितना छोटा हो सके, मतलब
0: कॉम्पैक्ट रखो।
1: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
3: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस?
0: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है, हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो इस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना उसमें जो आइसक्रीम खाई थी बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
1: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
3: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है, वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, न उम्र की, न दूरी की, न परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
4: जी धन्यवाद।
3: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उसने

0: व्यक्ति को आए हुए भी अब समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्वरोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
0: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है, खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटे की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है, तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं, उसपे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कंपोनेंट है।
0: जी
1: तो अगर आप सामान्य बीए, बीकॉम, बीएससी भी कर रहे हैं, तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहां पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
0: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से, वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है, तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं? अगर इग्नू की बात करें तो
1: देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है। कोई माइग्रेशन, कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, आप विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है। सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे, और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट। यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते, मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरिंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाय और किम वान हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं किरण शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने भारत को क्षेत्रीय स्थिरता का एक प्रमुख स्तंभ बताया। अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर भी प्रकाश डाला। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। अफगानिस्तान में अफगान शरणार्थियों को ले जा रहे एक ट्रक के राजमार्ग पर पलट जाने से 22 लोगों की मौत। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन के पुरुष युगल फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने भारत को क्षेत्रीय स्थिरता का एक प्रमुख स्तंभ बताया है। उन्होंने सिंगापुर में आयोजित शंग्रीला संवाद में भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और संतुलन का एक महत्वपूर्ण आधार बताया है। श्री हेग्सेथ ने भारत के सैन्य आधुनिकीकरण और रक्षा औद्योगिक क्षमताओं की भी खुलकर प्रशंसा की। रक्षा सचिव ने भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र की भी सराहना की और उन्नत सैन्य अभियानों में सहयोग करने की उसकी बढ़ती क्षमता का उल्लेख किया। श्री हेग्सेथ ने कहा कि भारत उच्च स्तरीय सैन्य क्षमताओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक औद्योगिक और रसद अवसंरचना विकसित कर रहा है, जिसमें साझा रक्षा प्लेटफार्मों की मरम्मत और रखरखाव करने और क्षेत्र में कार्यरत अमरीका की नौसेना के जहाजों का सहयोग करने की क्षमता शामिल है। श्री हेग्सेथ ने कहा कि भारत और अमेरिका सैन्य तैयारियों को बढ़ाने के लिए संयुक्त उत्पादन पहलों पर भी काम कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों ने आज यूके यूएस सुरक्षा समझौते के तहत सैन्य क्षमता बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा मजबूत करने और समुद्र के भीतर केबल की सुरक्षा के लिए पानी के नीचे ड्रोन तकनीक विकसित और तैनात करने की एक संयुक्त भागीदारी की घोषणा की। इन नेताओं ने सिंगापुर में आयोजित शंग्रीला संवाद सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि अंडर सी व्हीकल तकनीक के अगले वर्ष तक तैयार होने की संभावना है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीले ने कहा कि ब्रिटेन इस परियोजना में 20 करोड़ 10 लाख डॉलर का योगदान देगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन भारत की 5 दिवसीय यात्रा के दौरान नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वर्तमान पद पर रहते हुए राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन आउंग लाइन से मुलाकात की है। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए श्री ऊ मिन आउंग लाइन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। श्री ऊ मिन आउंग लाइन मंगलवार को व्यापारिक तथा औद्योगिक वार्ता और स्थल भ्रमण के लिए मुंबई जाएंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने वाले एक संभावित समझौते की उम्मीदों के चलते ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। एक रिपोर्ट।
2: इस महीने अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक में लगभग 19% की कमी आई है, जो मार्च 2020 के बाद से इसका सबसे बड़ा मासिक नुकसान है। तब कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट आई थी। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल की कीमतों में इस महीने लगभग 17% की गिरावट आई, जो

0: अप्रैल 2025 के बाद से इसका सबसे खराब प्रदर्शन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ शांति समझौते पर अंतिम निर्णय लेने के लिए व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठक करने की घोषणा के बाद कीमतों में गिरावट आई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 1.73% गिरकर $87.36 प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि ब्रेंट 1.77% गिरकर $92.05 प्रति बैरल पर स्थिर हुआ। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद मजबूत बना रहा है। वित्त मंत्रालय की मई 2026 में मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार सुविधाजनक स्थिति में है। मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक परिवेश, कच्चे तेल के दाम बढ़ने, वित्तीय स्थिति सख्त होने और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर कमजोर पड़ने का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: रिगार्डिंग द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप द प्राइस स्टेबल, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, सो दीज ऑल एफर्ट्स हैव बीन डन टू कीप द प्राइस स्टेबल। वी आर वर्किंग ऑन द स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑल्सो। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि एलपीजी का जो रिजर्व है दैट शुड बी मिनिमम 30 डेज विद देम एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड सिमिलरली फॉर क्रूड ऑल्सो वी आर वर्किंग।
1: सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। अफगानिस्तान के लगमान प्रांत में आज एक हाईवे पर पाकिस्तान से लौट रहे अफगान शरणार्थियों से भरा एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग घायल हो गए। मृतकों में 10 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल हैं। प्रांत के सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक अमीन उल्ला शरीफ ने बताया कि चालक के कथित तौर पर सो जाने के कारण ट्रक खाई में गिर गया। ये यात्री उन हजारों अफगानों में शामिल थे जो 2023 में इस्लामाबाद द्वारा अवैध प्रवासियों पर शुरू की गई कार्रवाई के बाद हाल ही में पाकिस्तान से लौटे थे। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लबैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेयोंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनीषा क्रॉस्टो मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने भारत को क्षेत्रीय स्थिरता का एक प्रमुख स्तंभ बताया। उन्होंने अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर भी प्रकाश डाला। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। अफगानिस्तान में अफगान शरणार्थियों को ले जा रहे एक ट्रक के राजमार्ग पर पलट जाने से 22 लोगों की मौत। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन के पुरुष युगल फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

रात जब थोड़ी और गहरी हो जाती है तो दिल के कुछ खामोश एहसासात जागने लगते हैं। कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ चेहरे और कुछ गीत जैसे दिल के किसी कोने में सोते सोते करवट से लेते हैं और जागने से लगते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हर सिंगार और मैं हूं नूपुर। आज की रात आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज की रात बात उस एहसास की जब कोई बिना दस्तक दिए चुपके से दिल में उतर जाता है, जब किसी की मुस्कान, किसी की नजर और किसी की बातें धीरे धीरे हमारी धड़कनों का हिस्सा बन जाती हैं। चांदनी रात में दिल ने एक दुआ मांगी थी, तेरी हंसी में अपनी दुनिया मांगी थी। न जाने कब हो गया असर मोहब्बत का, बस तेरी बातों में हमने तो जीने की वजह मांगी थी। 1973 की एक सदाबहार धुन, फिल्म यादों की बारात का वो गीत जिसने मोहब्बत को एक नई आवाज दी। अपनी आवाज के जादू से इसे सजाया मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, और इस गीत में सुरों का जादू जो खोला वो खोला आरडी बर्मन जी ने। अगर इस वक्त कोई आपके ख्यालों में है कोई ऐसा जिसका नाम आते ही होठों पर मुस्कान आ जाती है, तो एक गीत शायद उन्हीं के लिए है। तो आइए सुनते हैं वो नगमा जिसे जब भी सुनो उतना ही प्यारा लगता है, उतना ही अपना लगता है जब पहली बार सुनने पर लगा था।

कुछ गीत सच में वक्त से परे होते हैं, है ना। हर बार सुनो तो लगता है जैसे प्यार फिर से पहली बार हो गया हो। कुछ गीत यूं ही दिलों में उतर जाते हैं, कुछ लोग यादों में हमेशा ठहर जाते हैं, और कुछ रातें बस एक गीत के सहारे जिंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बना जाती हैं। होता है ना कि कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं कि सब कुछ तो वही रहता है, वही रास्ते, वही मौसम, वही शाम, वही रात, वही दिन, लेकिन फिर भी सब कुछ बदल सा जाता है। हर बात के, हर चीज के मायने बदल जाते हैं। जब किसी का होना सिर्फ साथ होना नहीं बल्कि सुकून बन जाता है, किसी का आना सिर्फ मुलाकात नहीं रहता बल्कि जिंदगी भर के साथ का इरादा बन जाता है, वादा बन जाता है, तो इसी बात पर एक बहुत प्यारा सा गीत हमारा साथ देने चला आता है। 1975 फिल्म आंधी, इस फिल्म का एक बेहद रूमानी गीत जिसे अपनी दिलकश आवाजों से सजाया किशोरदा और लता जी ने, और जिसके शुरू में मोहब्बत की रूह बसाई आर डी बर्मन साहब ने। ये गीत सिर्फ प्यार की बात नहीं करता, ये उस एहसास की बात करता है जब किसी का साथ अंधेरों में रोशनी बन जाता है। तो आइए इस रात को थोड़ा और हसीन बनाते हैं और सुनते हैं वो गीत जो जब भी सुनो दिल की धड़कनों के साथ धड़कने लगता है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आकाशवाणी एट 90
1: बिल्कुल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम है हर सिंगार साथ हूं मैं नूपुर और प्यारे

प्यारे रोमांटिक ड्यूएट्स हमारे साथ हैं आज की रात। कुछ रातें ऐसी होती है ना साथियों, जब नींद आंखों से रूठ जाती है, दिल किसी की यादों में कुछ खोया खोया, कुछ उलझा उलझा सा रहता है और हम बस करवटें बदलते रहते हैं। कभी कोई हंसी याद आ जाती है, कभी कोई अधूरी बात, कभी किसी का साथ। अगला गीत उस मोहब्बत के नाम जिसमें इंतजार भी है, बेचैनी भी और किसी अपने की कमी का मीठा सा दर्द भी। वो एहसास जब कोई पास ना होकर भी हर पल साथ महसूस होता है। फिल्म आपकी कसम का दिल को छू लेने वाला गीत जिसे अपनी आवाजों से अमर बनाया किशोरदा और लता जी ने। ये गीत सिर्फ एक धुन नहीं, कह सकते हैं कि उन तमाम रातों का एहसास है जब मोहब्बत नींद से ज्यादा गहरी लगती है। रात भर चांद से तेरी बातें करते रहे, तेरी यादों में खुद को हम खोते रहे, नींद आई भी तो तेरे ख्वाब ले आई, हम यूं ही तन्हा करवटें बदलते रहे।

बाकी कुछ गीत ना जैसे दिल पर हल्की सी बारिश बनकर गिरते हैं। सुनो तो लगता है मोहब्बत अभी भी दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। मोहब्बत कभी फासलों में भी मिलती है और कभी पास रहकर भी दूरियां छोड़ जाती है, लेकिन जब दो दिल सच में एक दूसरे के हो जाएं, तो वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और फिर वही दूरियां नजदीकियों में बदल जाती हैं। 1967 की फिल्म आमने सामने का एक बेहद रूमानी गीत जिसे अपनी दिलकश आवाजों से सजाया मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, और संगीत में

मोहब्बत की नरमी खोली कल्याण जी आनंद जी ने। एक ऐसा गीत जो ये एहसास दिलाता है कि प्यार में दूरी भी कभी कभी मोहब्बत को और गहरा बना देती है।

हरसिंगार आज यहीं तक। गीत के बाद ठीक 11 बजे सुनिएगा समाचार, और समाचारों के बाद 11:10 से हम फिर साथ होंगे यहीं FM गोल्ड पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना।

0: इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉ सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, रात के इन खूबसूरत पलों में आपका स्वागत है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत में मैं हूं नूपुर। इस सफर में आपके साथ जहां बातें थोड़ी धीमी होती हैं, कम भुली होती हैं, लेकिन एहसास जो है वो बहुत गहरे होते हैं। रात धीरे धीरे अपनी चांदनी बिखेर रही है, हवा में एक मीठी सी सरगोशी है, मानो कुछ कहना चाहती हो, और दिल में है बहुत सी अनकही बातें। तो आज की इस मुलायम थोड़ी सी ख्वाबों भरी रात में चलिए सुनते हैं कुछ ऐसे नगमे जिनमें प्यार की नरमी है, यादों की गर्माहट है और दिल के धड़कने की आवाज। पहुंच रहा है आप तक अब्दुल्ला फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।

गीत मेरे मन मीत आप सुन रहे हैं एफएम कूल्ड पर। आजकल की रातें जो है ना अजीब सी हो गई हैं। पहले लोग चांद दिखा करते थे, अब क्या देखते हैं, लास्ट सीन। कभी किसी का ऑनलाइन दिख जाना दिल को सुकून देता है, तो कभी टाइपिंग का वो छोटा सा शब्द दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। फिर मैसेज आए ना आए, बात हो ना हो, लेकिन ये एहसास कि शायद वो भी जाग रहा है या जाग रही है, रात को थोड़ा कम तन्हा बना देते हैं। क्या यही प्यार है?

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केन्द्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहां पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव। और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान ने भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। ये पद भारतीय नौसेना के सबसे महत्वपूर्ण परिचालन पदों में से एक माना जाता है। इससे पहले वे नई दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। निर्वाचन आयोग के कानूनी परामर्शदाताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और सही मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला होती है। उन्होंने बूथ स्तर के अधिकारियों और बूथ स्तर के एजेंटों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे मतदाता सूची को सही और अद्यतन रखने में अहम योगदान देते हैं। नागालैंड में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए दीमापुर सरकारी कॉलेज में कल 3 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के तहत शुरू की गई हैं। अगरतला की विशेष सीबीआई अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रगतिशील इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों को आपराधिक साजिश रचने, लोगों से धोखाधड़ी करने और त्रिपुरा जमाकर्ता हित संरक्षण कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. In Karnataka, the Congress Legislature Party meeting in Vidhan Sautha has elected D.K. Shivakumar as its new leader after the resignation of Siddaramaiah. His name was proposed by outgoing Chief Minister Siddaramaiah and Dr. G. Parmeshwar. After adopting the resolution, AICC General Secretary K.C. Venugopal made the official announcement. Later, briefing media persons in Bengaluru, Mr. Venugopal said D.K. Shivakumar will visit the governor to stake claim to form the government. He also announced that the swearing-in ceremony will be held on 3rd of June. The Khet Bachao Abhiyan to promote balanced and judicious use of fertilizers will be launched across the country on 1st of June and will be carried out throughout the month. Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Shivraj Singh Chauhan, chaired a high-level meeting regarding the preparations of the campaign in New Delhi yesterday. He said that the campaign should be made a comprehensive national drive connecting farms, farmers and villages. The minister said the focus of the campaign will be on a balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in view of weather-related challenges, active participation at panchayat level and delivering the benefits of the schemes directly to the villages. President of Myanmar, U Minh Aung Hlaing, arrived in New Delhi yesterday on a five-day visit to India. Union Minister of State for External Affairs, Kirti Vardhan Singh, received him at the airport. Earlier yesterday, the President of Myanmar visited Gaya in Bihar and prayed at the Mahabodhi Temple. He is accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. This is the first visit of President U Minh Aung Hlaing to India in his current capacity. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar called on Mr. Hlaing. In a social media post, Dr. Jayashankar appreciated Myanmar President's positive sentiment towards deepening the long-standing bilateral cooperation. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire network of Akashvani and Doordarshan, AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live-streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. India's economic performance remained resilient despite global uncertainty arising from the ongoing conflict in West Asia. The Finance Ministry's Monthly Economic Review, or MER, for May 2026 says the foreign exchange reserves remained at comfortable levels even as elevated crude oil prices, tighter financial conditions and slowing growth in major economies created a more challenging global environment. The index of core industries declined marginally by 0.4% in March, though infrastructure and manufacturing activities maintained underlying momentum. Retail inflation remained contained at 3.4% in March. The report also noted bank credit growth remained steady at over 17% year on year. Vice Admiral Sanjay Vatsyayan assumed charge as the chief of the Western Naval Command yesterday, succeeding to one of the Indian Navy's most significant operational appointments. Prior to this role, he served as the vice chief of the naval staff at Naval Headquarters in New Delhi. Following the change of command, he paid tribute to fallen soldiers at the Gaurav Stump or Pillar of Honor at the Naval Dockyard in Mumbai. An alumnus of the National Defence Academy, he was commissioned into the Indian Navy on 1st January 1988. He is a recipient of the Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal. In women's cricket, host England defeated India by 26 runs in the second T20 international of the three-match series in Bristol and levelled the three-match series 1-1 last night. England have set a target of 169 runs for India. In reply, India could score only 142 runs for 9 in 20 overs. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the finals of the Singapore Open tournament. And that is the end of this news bulletin.

पर समय हुआ है 12:11:08 और ये समय है कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी का, जिसमें आज आप कहानी सुनेंगे मेरी मंजिल तुम नहीं। स्वर और आलेख हैं कुसुमलता के, परिकल्पना निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेति। तो चलिए आइए सुनते हैं कहानी मेरी मंजिल तुम नहीं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर पानी पर लिखी कहानी। आज के दिन आप इस कार्यक्रम में सुनते हैं एक कहानी जिसमें घुले होते हैं सात सुरों के रंग। मैं कुसुम लेकर आई हूँ आज की कहानी, मेरी मंजिल तुम नहीं।

ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दुबला पतला साधारण शक्लो सूरत का गरीब माँ बाप की इकलौती संतान था। अपने लाडले बेटे से ढेरों उम्मीदें बांधे हुए उसके माता पिता को इंतजार था तो उस दिन का, जब दीपक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और उनके दिन फिरेंगे। बड़े प्यार से उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े का नाम रखा था दीपक। हमने अक्सर देखा है कि अगर परमात्मा कहीं पर किसी को कुछ कम देता है तो दूसरी जगह उसे बढ़ा कर दे देता है। जी हाँ, दीपक पढ़ने में बेहद होशियार था, हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट। बावजूद इसके जवानी के दहलीज पर कदम रखते ही

दीपक का ध्यान बार बार अपने साधारण व्यक्तित्व की ओर जाने लगा था, खासतौर पर आजकल जब से उसने सीमा को देखा था। सीमा का परिवार हाल ही में उसके पड़ोस में शिफ्ट हुआ था। सीमा बला की खूबसूरत थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि ईश्वर ने बड़ी फुर्सत से उसे तराशा था। दीपक ने जब सीमा को देखा तो बस

0: दीपक मन ही मन सीमा को चाहने लगा, लेकिन कभी सामने आकर उसे कहने की हिम्मत ना हुई। उसे डर था कहीं सीमा उसके प्यार को ठुकरा ना दे। कहां परियों से दिखने वाली सीमा और कहां साधारण से शक्लो सूरत का दीपक। मगर चाहत ये सब सोचकर तो नहीं होती ना। सीमा के लिए दीपक की दीवानगी बढ़ती जा रही थी, मगर उसे सीमा के करीब जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसे संयोग कहिए या कुछ और, एक दिन सीमा की माँ दीपक की माँ से मिलने आई थी और दीपक चुपके से उन दोनों के बीच हो रही बातों को गौर से सुनने लगा। सीमा की माँ कह रही थी, क्या करूं बहन, मेरी बेटी इस बार भी फेल हो गई। उसके लिए रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन बस पढ़ाई की वजह से बात बनते बनते बिगड़ जाती है। ये तो बड़े दुख की बात है बहन, लेकिन मैं भला इसमें क्या कर सकती हूँ। दीपक की माँ ने कहा, सुना है आपका बेटा पढ़ने में बहुत तेज है, अगर वो मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ा दे तो शायद वो पास हो जाए और उसकी जिंदगी संवर जाए। बड़ी दुआएं लगेंगी आपको। ये सुनते ही दीपक का दिल बल्लियों उछलने लगा। उसे तो मानो मन की मुराद मिल गई थी। उसने सुना कि उसकी माँ कह रही थी, माफ करना बहन, दीपक को तो अपनी ही पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, फिर भी एक बार आप उसी से ही पूछ लो। दीपक की तो खुशी का ठिकाना ना था, फिर भी सीमा की माँ के कहने पर उसने अपनी खुशी को दबाते हुए अनमने अंदाज में कहा, ठीक है आंटी, आप कहती हैं तो मैं किसी तरह टाइम निकाल लूंगा। दीपक मन ही मन सीमा के प्यार के ख्वाब बुनने लगा था।
1: मगर लगता

दूसरे ही दिन से दीपक सीमा को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर जाने लगा। सीमा भी मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। जब वो पढ़ती तो दीपक उसे देखता रहता और जब सीमा से उसकी नजरें मिलती तो वो छिप जाता। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से खुलने लगे, बातें करने लगे। और फिर एक दिन दीपक ने सीमा से कहा, सीमा एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? मुझे पता है, सीमा मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, तुम्हें कैसे पता?

दीपक ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। अरे बुद्धू, फीलिंग्स को ज्यादा देर तक छिपाया जा सकता है कहीं? ये तो एक खुशबू की तरह होती है, बिना कहे ही आंखों से, चेहरे से, रोम रोम से बयां हो जाती है। अच्छा, इतना कुछ जानती हो फीलिंग्स के बारे में, तो अपना जवाब भी बता दो, खुद ही समझ लो। ये कहती हुई सीमा एक अदा के साथ वहाँ से चली गई। सीमा की दोस्ती का आसरा पाकर दीपक के सपनों को मानो पंख लग गए और वो सातवें आसमान पर उड़ने लगा।

सीमा के सपनों के हवा महल में दीपक पढ़ना लिखना भूलता गया। उसे तो अब रात दिन सीमा के सिवा जैसे कुछ सोचता ही ना था। जैसे तैसे दिन गुजरता और शाम ढले वो सीमा के घर पहुंच जाता। एक दिन रास्ते में उसका एक पुराना दोस्त राहुल उसे मिला और बोला, क्या बात है दीपक, आजकल तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे और सीमा के बारे में। देखो, सीमा वैसी नहीं है जैसा तुम उसे समझते हो। अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, एग्जाम सिर पर है, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। दीपक को राहुल की बात बेहद नागवार गुजरी। उसे लगा राहुल उसे जलता है। वो तीखे अंदाज में बोला, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं तुम्हें इससे क्या, कहीं सीमा के साथ देखकर तुम्हें मुझसे जलन तो नहीं हो रही। अपनी सीख अपने पास रखो, समझे। राहुल को लगा कि अभी दीपक को समझाना ठीक नहीं, वो सीमा के प्यार में अंधा और बहरा हो चुका है, अभी उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा।

धीरे धीरे चाहत भरे दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। आखिर वो दिन भी आ गया जब सीमा का रिजल्ट आने वाला था। दीपक आज बेहद खुश नजर आ रहा था। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देकर जी जान से सीमा को पढ़ाया था। उसे पूरा विश्वास था कि सीमा जरूर पास हो जाएगी। और फिर उसने सोचा था कि सीमा के पास होते ही वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा। जैसे ही दीपक को पता चला कि सीमा पास हो गई है, वो खुशी से झूम उठा, भागा भागा सीमा के घर पहुंचा। उंगलियां डोरबेल की बटन से हट ही नहीं रही थी। अचानक दरवाजा खुला, सामने सीमा खड़ी थी। चेहरे पर झुंझलाहट के भाव साफ जाहिर हो रहे थे। बेरुखी सी बोली, क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? दीपक अपनी ही धुन में बोला, सीमा तुम्हें पता है तुम पास हो गई हो? हाँ मुझे पता है। तो सीमा उसी बेरुखी से बोली, तुम खुश तो हो ना? दीपक ने पूछा। हाँ बहुत खुश हूं, आखिर इतनी मेहनत जो की है, लेकिन तुम इतने खुश क्यों हो रही हो? सीमा के लफ्जों में बेरुखी जारी रही, लेकिन सीमा की मोहब्बत में पागल दीपक का ध्यान सीमा की बेरुखी की तरफ नहीं जा रहा था। वो उसी प्यार भरे अंदाज में बोला, सीमा मैं आज तुमसे कुछ कहने आया हूँ। तो कहो, अंदर नहीं बुलाओगी सीमा? नहीं अभी टाइम नहीं है, जो कहना है यही कह दो। सीमा आई लव यू, दीपक उसी उतावलेपन में बोला था। प्यार? और तुमसे? सीमा आश्चर्यचकित होते हुए बोली, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? आईने में देखी है शक्ल अपनी? तुम्हारे पास है ही क्या मुझे देने के लिए? सीमा, दीपक तड़प कर बोला, मानो किसी ने उसकी दुखती रग पर उंगली रखती हो। वो धीरे से बोला, तुम मेरी दोस्त हो ना, और दोस्ती ही तो प्यार होता है। दीपक ने अपने जज्बात का हवाला दिया, प्यार तुम मुझसे करती हो मिस्टर दीपक, मैं नहीं। मैंने तो सिर्फ पढ़ने के लिए तुमसे दोस्ती का नाटक किया था, माफ करना। प्यार मैं राज से करती हूँ, जी हाँ राज, जो कि इंग्लैंड में रहता है, और शादी भी उसी से करूंगी। राज आज अपने पेरेंट्स के साथ घर आ रहा है। उसके मम्मी पापा की शर्त थी कि जब तक मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक उसके साथ मेरी शादी नहीं हो सकती, और आज वो दिन आ गया है। एनीवे तुम जल्दी से यहां से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि वो लोग तुम्हें यहां देखें और कुछ सोचें, सीमा बोलती जा रही थी। और उसके कहे एक एक शब्द दीपक के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। चंद पलों बाद दरवाजा बंद हो चुका था और दीपक के तो जैसे सपनों की दुनिया ही लुट चुकी थी। उसके रंग बिरंगे ख्वाब मटे।

रास्ते में एक जगह भीड़ लगी हुई थी। शायद किसी बाइक सवार लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। राहुल अपनी बहन आरती के साथ वहां से गुजर रहा था। भीड़ देखी तो रुक गया। अरे ये तो दीपक है, मेरा दोस्त। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई, किसी ने कहा। राहुल अपनी बहन आरती की मदद से दीपक को घर ले आया। पूरी तरह होश में आते ही दीपक रोने लगा। मर जाने दो मुझे, जीकर क्या करूंगा, किसी लायक नहीं हूं मैं, राहुल उसे दिलासा देने लगा। ऐसी नासमझो वाली बातें नहीं करती दीपक, तुम्हें पता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे माता पिता पर क्या गुजरेगी? कभी सोचा है तुमने? वो तो जीते जी मर जाएंगे। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है? पूरी जिंदगी तो उन्होंने तुम्हें पाला पोसा, और एक अजनबी लड़की आई और तुमने अपनी जिंदगी और मौत उसके हाथ में दे दी। ये भी नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप का क्या होगा जो मुझे देखकर जी रहे हैं। मैं अब किसी के लायक नहीं हूं राहुल, दीपक रोते हुए बोला। तुम बहुत लायक हो दीपक, तुम्हें पता नहीं अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है, संभालो खुद को। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है, जिंदगी अनमोल है, इसे किसी ऐसे इंसान के लिए गंवाना समझदारी नहीं जिसके लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। उठो और खुद को साबित करो। दीपक समझ चुका था, एक दृढ़ संकल्प के साथ उठा। वो जान चुका था कि उसे अब क्या करना है।

धीरे धीरे दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते गए और इस तरह कई बरस गुजर गए। दीपक अपनी मेहनत और लगन की बदौलत एक मशहूर डॉक्टर बन चुका था। दौलत और शोहरत उसके कदमों में थी। एक रात अचानक उसके फोन की घंटी बजी। किसी महिला का फोन था। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी से आ जाइए प्लीज, वरना ये मर जाएगी। कौन और आप कहां से बोल रही हैं? वहां पहुंचा तो देखा कि एक टूटा फूटा जर्जर सा मकान था। एक बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने डॉक्टर दीपक को फोन किया था। मरीज को देखते ही दीपक मानो उछल पड़ा। अरे सीमा, तुम और इस हाल में? सब बताऊंगी दीपक, लेकिन पहले ठीक तो हो जाने दो, सीमा ने आहिस्ता से कहा। धीरे धीरे दीपक के इलाज से सीमा ठीक होने लगी। एक दिन फुर्सत के पलों में सीमा ने दीपक से कहा, दीपक मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा कर तुम्हें बहुत दर्द दिया था ना, मुझे मेरी गलती का सिला मिल गया। राज मुझे छोड़कर चला गया, उसने मुझे धोखा दिया। शादी के बाद मुझे पता चला कि इंग्लैंड में उसने एक और शादी कर रखी थी, उसके एक बेटा भी है। फिर अचानक कुछ सोचते हुए सीमा बोले, खैर तुम बताओ कैसे हो, तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे हैं? दीपक जो अब तक चुपचाप सीमा की बातें सुन रहा था धीरे से बोला, मैंने शादी नहीं की सीमा। ये सुनकर सीमा की आंखों में एक चमक उभर आई। वो बोली, मैं जानती हूं तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, है ना, इसीलिए तो शादी नहीं की, सीमा भावावेश में कहती चली गई। दीपक हम क्यों ना गुजरी हुई बातों को भूलकर एक हो जाएं? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ दीपक। दीपक चुप रहा, वो कुछ सोच रहा था।

0: क्यों है?
1: कुछ पल खामोश रहने के बाद डॉक्टर दीपक ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है सीमा, आरती मेरा इंतजार कर रही है। कौन आरती? वही तुम्हारे दोस्त राहुल की अपाहिज बहन, सीमा ने कटाक्ष करते हुए कहा। उसे अपाहिज मत कहो सीमा, वो बहुत अच्छी और बहुत नेक लड़की है, तुम्हें क्या पता कि वो कितने काबिल है। हाँ, लेकिन तुम तो रूप और दौलत को ही सब कुछ समझती हो ना। खैर, मुझे यकीन है कि मैं आरती के साथ बहुत खुश रहूंगा। दर्द ही सही, लेकिन तुम्हारी ही वजह से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीमा। और हाँ, एक हफ्ते बाद मेरी आरती के साथ मंगनी है, तुम जरूर आना। ये कहकर दीपक वापस अपने घर की ओर मुड़ चला। सुनो दीपक, लेकिन प्यार तो तुम मुझसे, सीमा ने पीछे से आवाज देकर कुछ कहना चाहा। दीपक के कदम कुछ पल ठिठके, वो बिना पीछे मुड़े ही बोला, सीमा मेरी मंजिल तुम नहीं।

तो ये थी कहानी मेरी मंजिल तुम नहीं। कहानी की परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति है रश्मि कुकरेती की। तो अब मुझे यानी कुसुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे पानी पे लिखी कहानी, जिसमें शीर्षक था मेरी मंजिल तुम नहीं। दोस्तों, कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा आपको बता देते हैं, क्योंकि अभी होंगे कुछ ही समय में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और 1:10 पर कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। उसके बाद 2:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रात सुरमई, और फिर 3:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमराही। और आपके साथ रहेंगी रूपा धवन, और मैं अंजू रहूंगी आपके साथ शुरुआत के कार्यक्रमों में। तो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केन्द्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहां पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नागालैंड में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए दीमापुर सरकारी कॉलेज में कल 3 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के तहत शुरू की गई हैं। निर्वाचन आयोग ने कानूनी परामर्शदाताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और सही मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला होती है। उन्होंने बूथ स्तर के अधिकारियों और बूथ स्तर के एजेंटों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे मतदाता सूची को सही और अद्यतन रखने में अहम योगदान देते हैं। अगरतला की विशेष सीबीआई अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रगतिशील इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को 6 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों को आपराधिक साजिश रचने, लोगों से धोखाधड़ी करने और त्रिपुरा जमाकर्ता हित संरक्षण कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. In Karnataka, the Congress Legislature Party meeting in Vidhan Sauda has elected D.K. Shivakumar as its new leader after the designation of Siddaramaiah. His name was proposed by outgoing Chief Minister Siddaramaiah and Dr. G. Parameshwar. After adopting the resolution of AICC General Secretary, K.C. Venugopal made the official announcement. Later briefing the media persons in Bengaluru, Mr. Venugopal said D.K. Shivakumar will visit the governor to stake claim to form the government. He also announced that the swearing-in ceremony will be held on 3rd of June. The Khet Bachao Abhiyan to promote balanced and judicious use of fertilizers will be launched across the country on 1st June and will be carried out throughout the month. Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Shivraj Singh Chauhan, chaired a high-level meeting regarding the preparations of the campaign in New Delhi yesterday. He said that the campaign should need a comprehensive national drive connecting farms, farmers and villages. The minister said the focus of the campaign will be on balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in view of weather-related challenges, active participation at panchayat level and delivering the benefits of the schemes directly to the villages. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi yesterday on a five-day visit to India. Union Minister of State for External Affairs, Kirti Vardhan Singh, received him at the airport.

आज गगन में पूनम की रात है और साथ में तारों की बारात भी है, क्योंकि मिलन होगा चांद और चांदनी का, ऐसे में दोनों की मुलाकात है। दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आज अंजू आपके साथ, लेकर आई हूं कार्यक्रम गीत सुहाने। और रहिए इस घंटे मेरे साथ, सुनेंगे बहुत ही सदाबहार गीत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अच्छा सुनो, जहां हमें कोई नाम से ना पुकारे, जहां कोई हाल ना पूछे, जहां कोई हमें नाम से ना पुकारे और जहां कोई हाल ना पूछे, चलो उस अजनबी शहर की तरफ कदम बढ़ाते हैं।

लोग पूछते हैं हमसे हमारी दीवानगी की हद, लोग पूछते हैं हमसे हमारी दीवानगी की हद, हम मुस्कुराकर कहते हैं कि उनसे पूछो जिन्होंने मोहब्बत नहीं की।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

समय हुआ है 1:30 और 2 सेकंड। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ अंजू।

उसने पूछा कि बताओ मोहब्बत क्या है, उसने पूछा कि बताओ मोहब्बत क्या है, मैंने कहा कि किसी की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढ लेना और खुद को खोकर किसी और के वजूद में खो जाना, यही प्यार है।

एक सुकून सा मिलने लगा है तेरी बातों में, जैसे कोई खोया हुआ तारा मिल गया हो रातों में। एक सुकून सा मिलने लगा है तेरी बातों में, जैसे कोई खोया हुआ तारा मिल गया हो रातों में। बस यूं ही बातें करते करते हम दिल हार बैठे हैं, सच कहें तो अब हमें तुमसे प्यार हो गया है यही मान बैठे हैं।

चेहरे पढ़ लेने का हुनर सीख लिया है हमने। लोगों के दिलों की हर बात हम यूं ही पढ़ लेते हैं। आंखों को क्यों छुपाए फिरते हो तुम हरदम, बिन देखे ही तेरी हर बात को हम यूं ही समझ लेते हैं।

दूसरे कारण का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से मिलूंगी, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। म्यांमा के उपराष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये तकनीक देश भर के अधिक हवाई अड्डों तक विस्तारित होगी, इससे सुरक्षा मजबूत और यात्रियों के यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। नागालैंड में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए दीमापुर सरकारी कॉलेज में कल तीन नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के तहत शुरू की गई हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने की भी संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. In Karnataka, the Congress Legislature Party meeting in Vidhana Sauda has elected D.K. Shivakumar as its new leader after the resignation of Siddaramaiah. His name was proposed by outgoing Chief Minister Siddaramaiah and Dr. G. Parameshwar. After adopting the resolution, AICC General Secretary K.C. Venugopal made the official announcement. Later briefing the media persons in Bengaluru, Mr. Venugopal said D.K. Shivakumar will visit the governor to stake claim to form the government. He also announced that the swearing-in ceremony will be held on 3rd of June. The Khet Bachao Abhiyan to promote balanced and judicious use of fertilizers will be launched across the country on 1st of June and will be carried out throughout the month. Union Minister for Agriculture and Farmers' Welfare, Shivraj Singh Chauhan, chaired a high-level meeting regarding the preparations of the campaign in New Delhi yesterday. He said that the campaign should be made a comprehensive national drive connecting farms, farmers and villages. The minister said the focus of the campaign will be on balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in view of the weather-related challenges, active participation at panchayat level and delivering the benefits of the schemes directly to the villages. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi yesterday on a five-day visit to India. Union Minister of State for External Affairs, Kirti Vardhan Singh, received him at the airport. Earlier yesterday, the President of Myanmar visited Gaya in Bihar and prayed at Mahabodhi Temple. He is accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. This is the first visit of the President U Min Aung Hlaing into India in his current capacity. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Mr. Hlaing in a social media post. Dr. Jaishankar appreciated the Myanmar President's positive sentiment towards deepening and the long-standing bilateral cooperation.

समय हो गया है 2:11 और 4 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का, जिसमें आप सुनते हैं बहुत ही मधुर गीत। और मैं हूं एक बार फिर से आपके साथ अंजू। बहुत ही सुहाने गीत, बहुत ही प्यारे गीत रहेंगे इस कार्यक्रम में, और आप भी कहीं मचाएगा। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

लोग पूछते हैं मुझसे मेरी दीवानगी की वजह, लोग पूछते हैं मुझसे मेरी दीवानगी की वजह, मैं तो बस मुस्कुराकर तुम्हारा ही नाम लेती हूँ।

जी हाँ, ये आकाशवाणी है और आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम है रात सुरमई और मैं हूँ आपके साथ अंजू। सुनो, आज बादलों से सिफारिश करके ये मौसम को रुकवाया है। आज बादलों से सिफारिश करके ये इस मौसम को रुकवाया है ताकि तुम्हें जी भर के देख सकूं जो खुदा ने तुम्हें मेरे पास भिजवाया है।

ए हवा, जरा रुक और मेरे साथ साथ चल। कोई रास्ता नहीं, फिर भी तू मेरे साथ साथ चल। ले चल मुझे वहां जहां यादें उसकी महकती हों। ए हवा, कुछ देर मेरे साथ चल।

वादा निभाने का हुनर तो सीख लेते, वादा निभाने का हुनर तो सीख लेते, क्योंकि दिल तोड़ने की कला में तो तुम माहिर निकले।

जो कभी कहते थे कि धड़कन है हम तुम्हारी, जो कभी कहते थे कि धड़कन है हम तुम्हारी, आज वही मेरे दिल के टुकड़े करके चलते बने।

दवा की चाहत में हम तुम्हारे पास आए थे, दवा की चाहत में हम तुम्हारे पास आए थे, पर क्या पता था कि सबसे गहरा दर्द तो हमें तुमसे ही मिलना था।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही लेकर आएंगे आपके साथ मेरी दोस्त रेखा, रूपा, और मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलूंगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर। अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केन्द्रित होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव। और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। इससे पहले कल दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेंग जाय और किम वॉन हो को हराया। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में यह महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

साथियों, अगर पुराने फिल्मी गीतों की बात करें, युगल गीतों की, तो खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल सिर्फ किसी के चेहरे की तारीफ ही नहीं, बल्कि मोहब्बत की पाकीजगी, हसीन वादियों और दिल के जज्बातों को बयां करने के लिए किया जाता था। तो क्यों ना कुछ ऐसे ही गीतों को, नगमों को याद किया जाए आपके साथ, आपके अपने चैनल पर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आप ही का पसंदीदा चैनल, आपका अपना चैनल, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हुआ है सुबह के 3:11 और 55 सेकंड। आप हैं हमराही कार्यक्रम में और आपके साथ आपकी दोस्त हूं मैं, आप ही की हम सफर, रूपा धवन। बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। और आइए आगाज करते हैं इस गीत के साथ हमराही कार्यक्रम का, जिसे हमने शामिल किया है बेमिसाल फिल्म से किशोर साहब और लता जी के स्वरों में।

साथियों, चाहे डूबता हुआ सूरज हो, उगता हुआ सूरज, आसमान में चांद और तारों की छटा, गुलाब की पंखुड़ी पर ओस की छोटी सी एक नन्ही बूंद, सभी कुछ अपनी खूबसूरती की कहानी को बयां करती है। ऐसे ही एक अजनबी हैं जो बात कर रहे हैं अपनी बहारों की मलिका से। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं।

खूबसूरत, वाकई इस एक शब्द में कितनी कशिश है ना। लेकिन आज के दौर में जब हम किसी को बहुत सुंदर कह देते हैं तो वो भले ही दिल को ज्यादा छूती नहीं, लेकिन पुराने जमाने के खूबसूरत शब्द में जो हुआ करती थी कशिश, वो कशिश आज के जमाने में नहीं। खासकर तब जब ये शब्द ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के युगल गीतों में रफी साहब, किशोर दा या लता दीदी की आवाज में हमारे कानों में घुलता था। यकीन नहीं आता, तो चलिए सुन लेते हैं किशोर साहब और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

समय हुआ है 3:31 और 53 सेकंड सुबह के, और जनाब कार्यक्रम हमराही सुन रहे हैं आप अपने ही चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और आज हमराही लेकर आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। तो बात कर रहे हैं आज हम उन गीतों की जो मोहब्बत की पाकीज़गी लिए हुए हैं, दिल के जज्बातों को बयां करने के लिए, हर शब्द को जो रूह से उतर जाता था उस गीत में इस्तेमाल किया जाता था, तारीफ के पुलों को। जी हाँ, हम उन गीतों को सुन रहे हैं आज हमराही में, जो खूबसूरती के साथ साथ अपने दिल के अनेकों जज्बातों से महसूस कराता था। सुनते हैं एक ऐसा ही नगमा

जिसे हम शामिल कर रहे हैं कारवां फिल्म से। और वैसे भी दोस्तों, जब हम पुराने युगल गीतों की बात करते हैं तो आनंद बख्शी साहब या मजरूह सुल्तानपुरी, उनके लिखे बोलों को हम अक्सर याद करते हैं, जहां खूबसूरत शब्द सिर्फ एक तारीफ नहीं। ऐसा ही एक बेहद हसीन नगमा हम शामिल कर रहे हैं, जिसमें हसीन वादे की बात की गई है। कारवां फिल्म का ये नगमा आप सभी के लिए।

क्या बात है, सुन रहे हैं ना आप। इसे कहते हैं शब्दों का जादू। पुराने युगल गीतों में एक और खास बात थी, प्रेमियों के बीच की वो खट्टी मीठी नोकझोंक, जहां नायक नायिका के खूबसूरती की कस्में खाता था और नायिका शर्माकर मुंह फेर लेती थी।

सचमुच रूप चाहे चेहरे का हो या दिल का, जब वो सुरों में ढलकर हमारे कानों तक पहुंचता है तो जिंदगी थोड़ी और खूबसूरत हो जाती है। आज के इस दौर में जहां सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा है, ठहर कर इन पुराने युगल गीतों को सुनना किसी सुकून से कम नहीं है। हमारा तो यही कहना है ना? सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा नगमा, जिसमें नायक को जब दिल से प्यार हो जाता है नायिका के साथ, तो वो उसके साथ हमेशा रहना पसंद करता है, चाहे फिर उंगली में अंगूठी की जगह छल्ले की जगह लेकर ही क्यों ना रहे।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम राही अपने दोस्त रूपा के साथ। आपका पसंदीदा चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम राही में आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत या दिल के जज्बातों को बयां करते कुछ ऐसे शब्दों से जिसका युगल गीतों में बेहतर प्रयोग किया गया। जाने से पहले बस इतना कहेंगे कि अपने आसपास की हर छोटी चीज में खूबसूरती ढूंढिए, क्योंकि जिंदगी खुद में बहुत खूबसूरत है। आइए चलते हैं एक ऐसे ही प्यारे से गीत की ओर, जहां बात कर रहे हैं उनकी जुल्फों की और वो कहां जा रही हैं।

4:10 पर अरुणिमा के साथ फिर से रहूंगी आपके साथ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, तब तक के लिए विदा दीजिएगा मुझे यानी रूपा धवन को। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि कल से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहां पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। इससे पहले कल दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये तकनीक देशभर के अधिक हवाई अड्डों तक विस्तारित होगी, इससे सुरक्षा मजबूत और यात्रियों के यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. In Karnataka, the Congress Legislature Party meeting in Vidhan Sauda has elected D.K. Shivakumar as its new leader after the resignation of Siddaramaiah. His name was proposed by outgoing Chief Minister Siddaramaiah and Dr. G. Parameshwar. After adopting the resolution, AICC General Secretary K.C. Venugopal made the official announcement. Later briefing the media persons in Bengaluru, Mr. Venugopal said, D.K. Shivakumar will visit the governor to stake claim to form the government. He also announced that the swearing-in ceremony will be held on 3rd of June. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire network of Akashwani and Doordarshan, the AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister of State for External Affairs, Kirti Vardhan Singh, received him at the airport. Earlier yesterday, the President of Myanmar visited Gaya in Bihar and prayed at Mahabodhi Temple. He is accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and the business leaders. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Mr. Hlaing. In a social media post, Dr. Jaishankar appreciated the Myanmar president's positive sentiment towards deepening the long-standing bilateral cooperation. The Khet Bachao Abhiyan to promote balanced and judicious use of fertilizers will be launched across the country on 1st of June and will be carried out throughout the month. Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan chaired a high-level meeting regarding the preparations of the campaign in New Delhi yesterday. He said that the campaign should be made a comprehensive national drive connecting farms, farmers and villages. The minister said the focus of the campaign will be on balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in view of weather-related challenges, active participation at panchayat level and delivering the benefits, the schemes, directly to the villages. Vice Admiral Sanjay Vatsayan assumed charge as the chief of the Western Naval Command yesterday, succeeding to one of the Indian Navy's most significant operational appointments. Prior to this role, he served as the Vice Chief of the Naval Staff at Naval Headquarters in New Delhi. Following the change of command, he paid tribute to fallen soldiers at the God of Stambh, Pillar of Honour at the Naval Dockyard in Mumbai. An alumnus of the National Defence Academy, he was commissioned into the Indian Navy on 1st of January 1988. He is a recipient of the Param Vishisht Seva Medal,

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार मेरा, यानी आपकी दोस्त रूपा धवन का। आप सुन रहे हैं आप ही का अपना चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जैसा कि हमने वादा किया था अभी कि अरुणिमा लेकर आपके साथ फिर से रहेंगे, तो आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ अरुणिमा लेकर। समय हुआ है 4:11 और 39 सेकंड सुबह के। तो दोस्तों, सुबह की ताजा हवा के साथ हैं हम आपके मनपसंद कार्यक्रम के साथ। और वैसे भी किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी में धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। बहारों की महफिल हो तो ऐसी महफिल में हवा के झोंके रुका नहीं करते।

साथियों, अक्सर जब हमारे सामने मुश्किलें आती हैं तो हमारा पूरा ध्यान इस बात पर चला जाता है कि क्या क्या गलत हो रहा है। लेकिन जानते हैं, सकारात्मक सोच इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी परेशानियों को अनदेखा कर दें। जी हाँ, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन परेशानियों के बीच भी हम इस बात पर भरोसा रखें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और जो आने वाला पल होगा वो इससे बहुत ही बेहतर होगा। तो कुछ कुछ हमें दिल की भी तो सुननी चाहिए ना।

आप हैं अपने दोस्त रूपा के साथ हमराही के सफर पर। जी हाँ, हमराही के सफर से हम निकल चुके हैं, हम आ गए हैं अरुणिमा के पड़ाव पर। सोचिए जरा, एक आधे भरे हुए पानी के ग्लास को देखकर दो तरह के लोग बात करते हैं। एक कहता है ये आधा खाली है, इसमें निराशा है। दूसरा मुस्कुराकर कहता है अरे वाह, ये तो आधा भरा हुआ है। बस यही है आशा, यही है सकारात्मकता। ग्लास में पानी उतना ही है, बदला क्या? सिर्फ हमारा देखने का नजरिया। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो आपको बंद दरवाजों के पीछे भी कोई ना कोई राह ऊंचे नीचे रास्तों से मिल ही जाएगी।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आप हैं रूपा के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अरुणिमा के सफर पर। जी हाँ, अरुणिमा का सफर है और वक्त है 4:30:53। सुनते हैं एक और ऐसा ही कुछ नगमा जो हमें आपसे मिलकर महसूस हो रहा है।

जी हाँ, जब मुलाकात इतनी हसीन हो तो लबों पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। उस खुशी की इंतहा नहीं होती जब हमारे दिल के जो करीब होते हैं तो उनसे जब मुलाकात होती है तो सहसा ही मुस्कुराहट का आना सहज सी स्वाभाविक सी बात है। हर दिन को और हर दिन की शुरुआत को एक नई उम्मीद के साथ हमें करना चाहिए, अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान सजाकर, क्योंकि आपकी एक मुस्कान किसी उदास चेहरे पर रौनक ला सकती है। उस रौनक का आलम यह होगा कि कुछ ना कुछ तो गाने का मन भी जरूर करेगा।

परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, अपनी सोच को पंख दीजिए, हमेशा सकारात्मक रहिए, फिर देखिए आपके देखने का नजरिया जब बदलेगा तो ये दुनिया भी एकदम से बदल जाएगी।

जी हाँ, हम मानते हैं कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों में हम कैसा महसूस करेंगे ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। अपनी सोच को हमें बदलना होगा। जब हम अपनी सोच को बदलेंगे तो हमारी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी, और जब हमारी सोच बदलेगी तो हमारा नजरिया खुद ब खुद बदल जाएगा। बस नजर प्यार भरी होनी चाहिए।

देखा, सिर्फ देखने के नजरिया ने ही दुनिया को बदल के रख दिया। प्यार से देखिए और दुनिया में उजाला ही उजाला हो जाएगा। फिलहाल अरुणिमा की महफिल यहीं तक। भोर सुहानी में फिर से आपके साथ रहूंगी। अब रूपा को विदा दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि कल से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। सरकार ने कल से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया। मंत्रालय ने कहा कि कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय वस्त्र उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहां पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में सैनिकों की तरह कार्य करने वाले बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों की प्रशंसा की। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के साथ आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये तकनीक देश भर के अधिक हवाई अड्डों तक विस्तारित होगी, इससे सुरक्षा मजबूत और यात्रियों के यात्रा अनुभव में

उठिए, किस पूरब की खिड़की से उस रब ने नूर बहाया है। जरा आंखें तो खोलिए जनाब, एक और खूबसूरत सवेरा आया है। नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात और एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सभी को नमस्कार। आपकी दोस्त और हम सफर आपके साथ है रूपा धवन, भोर सुहानी लेकर। आप सुन रहे हैं आज का सबसे शांत और रूहानी शो। हर रोज की तरह इसी वक्त आपके साथ होता है भोर सुहानी, 5:11 पर आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ। तो चलिए, सोच विचार कैसा, आज के दिन की शुरुआत भी प्रभु के नाम से करें और उन्हीं के साथ, उन्हीं के हाथ पर छोड़ दें हम आज का दिन भी।

दोस्तों, सुबह का ये जो वक्त होता है ना, जब आसमान का रंग गहरे नीले से धीरे धीरे संतरी होने लगता है, बस ये वक्त मानो आंखों में बसाने का दिल चाहता है इस समय को। ये वक्त कुदरत की सबसे हसीन पेंटिंग जैसा होता है। ठंडी हवा के झोंके जब चेहरे को छूते हैं तो ऐसा लगता है मानो जिंदगी खुद आकर हमारे कान में कह रही हो, चलो उठो, एक नई शुरुआत करते हैं। और वाकई इस वक्त से तो जो भी अगर देखेगा इसे तो दिल से लगाव हो जाएगा, दिल से इसका प्रेमी हो जाएगा।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।